0: क्या चीज हुई और फिर सनातन धर्म क्या चीज हुई। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सत्य है, धर्म तो राइचियसनेस हो गया और सनातन हो गया जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है और जो सच है। तो जाहिर से बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है या इनमें कुछ डिफरेंस है?
1: मेरे विचार से कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक चीज है जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने अपने आप से एक बनाई हुई चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता है उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोले तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है। सनातन धर्म सनातन धर्म जीने का एक ऐसा आयाम है, हमारे अस्तित्व या अस्तित्व का ही आधार है ऐसा हम मान सकते हैं। चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, पक्षी हो, जानवर हो, पौधा पेड़ पौधे हो, ये सभी अपने अस्तित्व का जो संचालन करने का जो नियम है, मूलभूत जो नियम है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म।
0: परफेक्ट मतलब सीधी सी बात हमें यह समझ में आ रही कि जो एक ऐसा नियम कानून कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें तो इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, इस प्रकृति की जो व्यवस्था है वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट? ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा?
1: सनातन धर्म एक्चुअली ये, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, एक संस्कृत शब्द है
0: जी।
1: इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं, जैसे फंडामेंटल ज्ञान, आई मीन तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास और एक सम्माननीय व्यवस्था, इन सबको हम सनातन के एक भिन्न भिन्न, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म
0: जी।
1: इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल पहचान देता है, स्पिरिचुअल पहचान देता है। एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है, सभी जीवों के अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर की अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, कि इन इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये मतलब अर्थ निकलता है। जी
0: करेक्ट बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया और बहुत ही साधारण सा भाषा में। तो जाहिर से बात है इस शब्द को अगर हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर,

0: क्रिया व्यवस्था बन के खड़ी होती है। बहुत सुंदर रमन जी, सनातन धर्म, अब हम लोग ने सनातन को समझा, धर्म को समझा और उनको मिलाया, अब इसमें कर्म और धर्म को इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस व्यवस्था में? चलिए, धर्म को तो हमने फिर भी समझा था, अभी कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना कि इस व्यवस्था में कर्म की क्या महत्वपूर्ण है, कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है?
1: वैसे कर्म धर्म दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सनातन धर्म में। एक दोनों को ही एक फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है जो मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और जीवन के परिणामों को गवन करता है। ये दोनों कर्म और धर्म, धर्म और कर्म दोनों करता है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कर्म चाहे वो विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो, वो कोई ना कोई परिणाम देता है। व्हाट एवर वी डू उसका वो एक रिएक्शन देता है या उसका एक रेसिप्रोकेशन उसका होता है। कर्म का जो भी काम करें हम, चाहे हम कभी कभी हम विचार से भी अगर कुछ करते हैं, जैसे किसी के साथ क्रोध होना भी एक किसी विचार ही एक टाइप का विचार है, दैट ऑल्सो उसका एक परिणाम यह है कि वी गेट इनटू, उसके बाद हम खुद बाद में सोचते हैं कि हमने नहीं करना चाहिए था या हमारा टेंशन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें, हर चीज का एक, हर कर्म का एक परिणाम होता है ये। और इसीलिए सनातन धर्म में, इसीलिए क्योंकि ये कर्म, हम वी कीप ऑन डूइंग कर्म, ये अतीत और फ्यूचर को, हाँ भूत और भविष्य, इनफैक्ट ये अतीत और प्रेजेंट को का जो एक इसका जो रिजल्ट जो देता है वो हम, हमें वर्तमान में इसका दिखाई देता है। वर्तमान हमारा ये निर्धारित करता है। तो व्हाट वी कॉल इन हिंदी में, जैसा एक सेइंग है, जो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा या पाएगा। तो इसीलिए ये, क्योंकि कर्म किसी न किसी एक परिणाम देता है, तो हर व्यक्ति को ये हमें सिखाता है कि सनातन धर्म सिखाता है कि वी हैव टू बी नो, अपने जो भी कर्म करें वो अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो जितना अपने उस हिसाब से हमको कहने, हम तो ये कहा जाता है कि भाई आपके पुनर्जन्म में ऐसा होता है, ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत भी उसका एक परिणाम आपको मिल जाता है। तो इन सब के वजह से, क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है, तो हमारे कर्म जो है हमेशा एक अच्छा एक कर्म होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बहुत प्यार से बताया, उसी चीज़ को मैं एक बार बहुत छोटे से मैं सिंपल रिपीट करना चाहता हूँ मेरे अपने फ़ायदे के लिए, कि मैं उसको याद रख सकूँ, कि हम जैसे काम करते हैं तो कई बार तो उनके फल जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा भविष्य में मिलते हैं, या कई बार तो बिल्कुल वर्तमान में ही मिल जाते हैं। तो सामने के सामने है साहब, जो काटा, जो आपने बोया वही काटा, तो जब ये सामने दिखता है तो उसको मानने में फिर परेशानी ही क्या, आइए ना इसको मान लेते हैं। बहुत सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके सामने हाजिर होता हूँ।

0: और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इवन भागवत गीता में कभी निकल करके आता है कि आत्मा अजर है अमर है चासी, आत्मा अजर है और अमर है, और वह केवल एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता। तो इट इज बिलीव, इट इज द फॉर्म बिलीफ ऑफ सनातन धर्म। से भागवत गीता के सेकंड चैप्टर के 20th, शायद 20th श्लोक में है, ये
1: जी
0: कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भवित्वा न भूय है, अजो नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
1: सुंदर
0: आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता रहा हूं, और ना ही एक एक बार अस्तित्व में आने के बाद वो कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित शाश्वत अमर और अजर है, शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती है। दिस इज दी कंसेप्ट और दिस इज दी बिलीफ ऑफ सनातन धर्म।
1: जी
0: यही सनातन धर्म माना गया है कि पुनर्जन्म में उनका इसका सनातन धर्म में का विश्वास है,
1: जी
0: ऐसा ही समझाया गया है।
1: बहुत सुंदर, अमेजिंग। सो जाहिर सी बात है, बहुत क्लियरली हमें आज ये बहुत साधारण शब्दों में ये चीज समझ में आ रही है कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको सनातन में कैसे समझाया गया है। बिल्कुल ठीक। तो बस एक छोटा सा भजन यहाँ सुने और फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो पूछते हैं रमन जी से।

0: और अमन जी, आपने पुनर्जन्म के बारे में हमें बताया कि सनातन धर्म इसको कैसे समझाता है। अब सनातन धर्म मोक्ष के बारे में क्या कहता है, उसके पाने का रास्ता क्या बताता है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए।
1: सनातन धर्म में मोक्ष मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है, मेन जो हमारा फाइनल अल्टीमेट, हाँ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मोक्ष एज पर सनातन धर्म। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र जो है ये हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं, सनातन धर्म मानता है और क्योंकि हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि हर प्राणी का जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म रिसाइकल होता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, निरंतर ये चक्र चलता रहता है। इस दुख, इसको अगर दुख मानते हैं, इसको इफ वी कैन समझते हैं कि ये इस तरह बार बार जन्म लेना, कष्ट
0: मतलब
1: सहना,
0: पेनफुल होता है, फिर से मर गए, फिर
1: पेनफुल
0: पेनफुल
1: हो रहा है, तो इससे मुक्ति इससे मुक्ति पाना ही जो है हमारा मेन लक्ष्य जो है वो सनातन धर्म में बताता है। जब व्यक्ति का आत्मा अपने वास्तविक रूप से पहचान लेती है और उसके बाद जब व्हेन इट रीचेस द अल्टीमेट, दैट इज व्हाट इज मोक्ष, एंड वी ऑल उसी के लिए हम स्ट्राइव करते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे हम कई मार्ग भी इसके लिए चुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग है, नॉलेज के थ्रू होता है, कर्म के थ्रू होता है और मेडिटेशन, ये कुछ कुछ कुछ कुछ एक सनातन धर्म में बताए गए हैं, कुछ मार्ग हैं, कुछ रास्ते हैं, तो इनकी को हम फॉलो करके हम फाइनली मोक्ष की ओर जाने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कीप स्ट्राइविंग और जीवन मुक्त लिबरेट होने की कोशिश करते हैं ये सब चीजें करके, ये है इसका सम्मान।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, बहुत ही आराम से हमें तीन रास्ते तो सामने दिख ही रहे हैं, कर्म का रास्ता है, योग का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है, धर्म, तो जाहिर से बात है इनमें से किसी को भी अपनाकर हम मोक्ष की तरफ चल सकते हैं। अब वो हमारी विलक्षणता पर, हमारी शिद्दत पर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर, हमारी चाहत पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से मोक्ष की तरफ जाएं। बहुत सुंदर। अब अगर आज के समय की बात करें, देखिए सनातन तो किसी समय से था, किसी समय तक रहेगा, चलता ही जा रहा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें जब हम और आप हैं, तो इस धर्म को, सनातन धर्म को कोई भी एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे, और अगर उसे समझ, वैसे तो आज के प्रोग्राम में आप ही की बात सुनकर बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी और वो उसको अपनाना चाहे, तो क्या करें हम?
1: क्या करें, इट्स बेसिकली बहुत ही एक ट्रिकी सवाल है
0: जी।
1: क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू साउंड नो नेगेटिव, इट्स क्वाइट, कुछ कोशिश ही करके ही इसको चेंज किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है आज के दौर पे, ये मुझे लगता है, आई विश आई एम रॉन्ग। हम इसको सनातन धर्म को समझा अपनाया कैसे जा सकता है, इसके लिए हमें मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, करना पड़ेगा, जैसे उपनिषद है, रामायण है, और ऐसे चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। लोगों के पास इसके लिए कितना टाइम है आज, और उसको अच्छी तरह समझाने वाला कौन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य अगर कोई चीज करने की ठान लेता है तो वो करता है, करना कर देता है
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम से कम अपना कर्तव्य जो है रोजमर्रा जिंदगी का, जो हमारा जो कर्तव्य है, उसी को हम ईमानदारी से पालन करें, वो दैट में भी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सनातनी। बाकी हम लोग तो योग और मेडिटेशन तो आजकल जगह जगह सब लोग इंटरेस्टेड भी हैं और करते भी हैं, हाँ तो हो भी रहा है, इसका भी एक ये भी एक माध्यम है, और आत्म रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता भी है, एक सेल्फ रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता है योग और मेडिटेशन के द्वारा। छोटी छोटी चीजें जैसे दूसरों का हर्ट नहीं करना, अहिंसा, दया, क्षमा, ईमानदारी, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कैन लीड अस टू टूवर्ड्स जो है सनातन होने के एक और हमको शायद ले जा सकता। ये मेरा आई मीन इट्स मेरी स्मॉल हम्बल सोच।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सर। बहुत ज़्यादा गूढ़, जैसे आपने कहा उपनिषद ग्रंथ वगैरह का हम अध्ययन करें, पहली बात तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरेस्ट की बात भी हो जाती है, फिर वो बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं, उनको

जूझते हुए फ्रस्ट्रेट होकर अचानक से घूम जाएं और हमें लगे कि नहीं चलिए अब सनातन को अपनाया जाए क्योंकि शांति प्राप्त करनी है, तब ये सब चीजें जो बहुत सरल भाषा में आपने बताई

0: यही
1: बस
0: मेथड जो आपने बोले हैं जी।
1: यही यही है जो, क्योंकि ये कुछ कुछ चीजें जो है बहुत सरल हैं। हमें क्योंकि झूठ नहीं बोलना ये तो बचपन से सिखाया जाता है, सत्य बोलना बचपन से सिखाया जाता है, दूसरे किसी प्राणी को तंग नहीं करना ये भी सिखाया जाता है, घर घरों में सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है। ये दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम विच हैज बिकम द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और इनको सही मायने में उसको और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसके बारे में और जानकारी लेना, और थोड़ा इसका वाइडन, इसको थोड़ा सा हरिजन को थोड़ा सा वाइडन करना, दीज आर ऑल द स्मॉल थिंग्स टुवर्ड्स स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स यू नो इसके ओर जाने का, एक सनातन के ओर जाने का एक स्मॉल चीज है।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मुझे इस चीज पे ध्यान आता है, कई बार बचपन से हम सुनते आए कि गायत्री मंत्र इसीलिए बनाया गया था कि साहब बहुत बड़ी बड़ी बड़े मंत्रों का उच्चारण आप ना कर सकें, तो चलिए एक सिंपल सा गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, आपको वही लाभ मिल जाएगा जो बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने से मिलेगा। तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि साहब और कुछ नहीं सही तो गायत्री मंत्र ही पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही जाएगा, पवित्र तो आप इससे भी होंगे और पवित्र आप उससे भी होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये छोटे छोटे मेथड्स, प्रोसीजर्स, व्यवस्थाएं अपनाने से भी हम सनातन धर्म को पा सकते हैं। जाहिर से बात है हम ये सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं, सनातन धर्म को पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम शांत होना चाहते हैं, साफ सुथरे पवित्र और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी जिंदगी को जिए, शांति से जिए, अच्छी तरीके से जिए, मतलब खुश रहें, परेशानी ना हो। अब आपने जैसे सनातन धर्म को समझा, आपने सनातन धर्म को अपनाया, उसकी जो भी आप प्रैक्टिसेस जो आपने हमें बताई वो आपने की, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कुछ आपको फील हुआ कि मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए ना हमारे साथ।
1: हाँ बिल्कुल, इसके हर चीज का जैसे पहले भी होता है कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, एक उसका एक परिणाम होता है। तो ये जैसे स्मॉल छोटी छोटी चीजें जो हम अपने डेली रूटीन में भी जो करते हैं उसको आप, जैसे मैंने पहले एक क्रोध का बताया था कि जब हम क्रोध भी करते हैं तो उसका एक कभी हमको खुद को बाद में खराब लगता है कि मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, ऐसा क्यों किया। और उसी तरह जो हम कभी अच्छी चीजें करते हैं तो उससे भी हमको सुकून मिलता है। हम कुछ नहीं, छोटे से किसी रास्ते में जाते हुए किसी प्राणी को जस्ट हेल्प ही कर दिया, उसको मतलब किसी से बचा दिया, कोई बच्चे पत्थर मार रहे हैं तो ये एक दूसरे प्राणी की ओर जो हमारे एक वो दर्शाता है, एक लव दर्शाता है, और वो भी करके आते हैं तो हम बाद में लगता है कि आज हमने ये किया। तो ये सब चीजें उसी तरह जैसे हमको शुरू से एक चीज बताया गया है, मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी को उपकार ना करें कम से कम उसको अपकार ना, किसी को डोंट डू एनी हार्म टू एनीबॉडी। आप अगर उपकार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके वजह से किसी को एक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और हम उस ऑफिस में जब रहते थे हम कोशिश यही करते थे कि हमारी वजह से किसी का मन ना दुखे, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, ये हम बहुत इस चीज को हम उसके ऊपर ध्यान रखते थे। ये और इससे जो है स्लोली आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा आपके समक्ष वो रहने लगता है, और अगला भी अगर आप जैसे आप व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरा भी आपके साथ व्यवहार करने लगता है, उसके ऊपर भी उसका एक असर पड़ता है। ये एक दूसरे के साथ इस तरह असर पड़ता है, हमें ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करने में ऐसा असर हमें भी ज्ञात हुआ, और दूसरे भी इस चीज को हमारी वजह से उनके ऊपर भी इसका एक इन्फ्लुएंस हमने महसूस किया कई बार।
0: ओके ऑफ कोर्स, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसा हम महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके परिणाम भी हमें हाथों हाथ मिलने भी लगते हैं, और बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं। बड़ी प्यारी बात कही। तो लीजिए थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक प्यारे से भजन के लिए रुकते हैं।

0: बहुत सुंदर रमन जी, किसी व्यक्ति को सनातन धर्म को और ज्यादा गहराई में समझना हो तो कौन कौन से ग्रंथ या कौन से लिटरेचर आप सजेस्ट करोगे कि हम पढ़ें, अध्ययन करें, कुछ करें, किस तरीके की किताबें या ग्रंथ?
1: बस ग्रंथ इसमें तो जो मेन चीज आपको बताने वाली जो चीजें हैं वो है वही मूल ग्रंथ जो है, हमारे जो मूल ग्रंथ है वेद है, भागवत गीता है, उपनिषद है, इवन रामायण और महाभारत से भी हमको कई इसके और इसके बारे में हमको ज्ञात हो सकता है होता है। लेकिन कई कई किताबें ऐसे हैं अगर आप खोजें तो गोरखपुर की गीता प्लस वालों का यहाँ से कई चीजों का प्रकाशित उनका है, तो वो भी जो है आजकल सर्फिंग करने में आपको, क्योंकि शुरुआत एक बेबी स्टेप से ही हमको करना पड़ता है। इमीडिएटली हम इमीडिएटली हम उपनिषद या तो हमें क्या भागवत या किसी और चीजों की कोशिश करेंगे तो हम आधे में टाइगर्स हो जाएंगे, आधे तक जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। हमें वो चीज जब चीज समझ में नहीं आएगा तो हम मन इधर उधर भटकने लगता है। तो स्मॉल छोटे पैमाने से शुरू करें, ये सब चीजें हमको सर्फिंग करने से मिल जाएगा। गीता गीता प्लस गोरखपुर वालों के बहुत सारे वो हैं, और विवेकानंद जी का जो लेख है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें ही हैं, हम अदरवाइज बुक अगर बोलें तो हम मूल ग्रंथ जो है उसी से हमको गूढ़ इसका एक
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ साहब। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा उपक्रम है जो किसी जमाने से चला आ रहा है, भारत की संस्कृति को उसने अभी भी पकड़ के रखा है। मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की है। अब उसमें सभी लोग आते हैं और के उसके सारे जितने पुराने गूढ़ लिटरेचर हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको अभी तक उन्होंने संजाया है, संजोया है, बचाया है। मुझे इस बात की सचमुच बहुत खुशी है। मैं कई मेरे पास उनकी बहुत सारी किताबें, पुस्तकें, बुक्स मौजूद हैं, खास करके पुराण, करीब करीब सारे पुराण मेरे उन्हीं के यहाँ के प्रिंटेड मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि आप गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर का भी बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं सनातन धर्म को समझने के लिए। बाकी जैसा विवेकानंद जी की कहा, लेखनी की बात कही रमन साहब ने, तो वो भी है, उपनिषद वगैरह भी हैं, महाभारत रामायण भी बताया रमन साहब ने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन साहब। एक बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सफाई साफ तौर पर हमें समझ में आया है कि सनातन धर्म दरअसल क्या चीज़ है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हम उसे अपना सकते हैं। बहुत बड़ा आयाम आज खुला है हमारे सामने। जाहिर सी बात है हमें थोड़ा और सीखने की आवश्यकता तो है, फिर भी इसकी शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ में हमारा हाथ पकड़कर चलाने के लिए रमन साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, पधारे, हमारे इस प्रोग्राम में अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा, आपका आभार है सर।
1: धन्यवाद समीर जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन विषयों के बारे में कुछ आपस में बांटूं, आपस में कहूं, मुझे इस लायक समझा। मैं आपको और एस एन रेडियो के जितने भी हमारे और साथी हैं, आपके और साथी हैं, उन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो सुनने वाले जो हमारे जो मित्र हैं उनको भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हम लोग सब व्हाट्सएप में है, नंबर है, आप बेझिझक हमें बताइए कि हम हमसे त्रुटि कहाँ हुई, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद समीर जी।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगर हर जोडियक साइन, हर राशि एक पेट होता। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा फनी, थोड़ा रिलेटेबल, और थोड़ा सा अरे ये तो मैं हूं वाला फील देने वाला। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हर जोडियक साइन एक पेट होता तो वो कैसा होता। सोचिए, अगर एरीज, टॉरस, जेमिनी ये सब इंसान नहीं पेट्स होते, तो उनका एटीट्यूड, उनकी आदतें कितनी इंटरेस्टिंग होती। तो चलिए एक इमेजिनरी पेट वर्ल्ड में चलते हैं। सबसे पहली राशि एरीज, द हाइपर पपी। एरीज एक छोटा सा पपी है, इतनी एनर्जी कि आप थक जाओ पर वो कभी नहीं। सुबह 6 बजे ही उठो उठो उठो, खेलते हैं। अगर बॉल फेंक दो तो वो बॉल लेके वापस आएगा, लेकिन कभी कभी खुद ही भूल जाएगा कि बॉल कहाँ है। एरीज पेट का रूल सिंपल है, एक्शन पहले, सोच बाद में। टॉरस, रॉयल कैट। टॉरस एक क्लासी कैट है, जिसे कंफर्ट सबसे ज्यादा पसंद है। सॉफ्ट कुशन, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट एस्थेटिक्स, और खाना टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर मूड नहीं है तो आप बुलाते रहो, वो सिर्फ आपको देखेगा और इग्नोर करेगा विद एटीट्यूड। जेमिनी, द टॉकिंग पैरट, बोलता तोता। जेमिनी एक तोता है जो सिर्फ बोलता नहीं, नॉन स्टॉप बोलता है। आप कुछ भी बोलो वो उसका रिप्लाई देगा, और फिर उसका भी रिप्लाई देगा, और कभी कभी खुद से ही बात करता रहेगा। कैंसर, इमोशनल टर्टल। कैंसर एक प्यारा सा टर्टल है, थोड़ा स्लो लेकिन बहुत इमोशनल। अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो तो अपने शेल में चला जाएगा, लेकिन प्यार मिले तो आपके पास ही चिपक के बैठ जाएगा। लियो, ड्रामा किंग लायन। लियो ऑब्वियसली लायन ही होगा। एंट्री ऐसी जैसे स्टेज पर आ रहा हो, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और अगर इग्नोर कर दिया तो ड्रामा गारंटीड है। वर्गो, परफेक्शनिस्ट रैबिट। वर्गो एक रैबिट है जो हर चीज परफेक्टली चाहता है। फूड भी अलाइन होना चाहिए, स्पेस क्लीन होना चाहिए, और अगर कुछ भी ऑफ हो गया तो वो खुद ही ठीक करेगा। लिब्रा, स्टाइलिश स्वान। लिब्रा एक स्वान है, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, और हमेशा बैलेंस में, लेकिन उनके डिसीजंस उसमें खैर टाइम लगता है। ये खाना या वो खाना, ये ड्रेस या वो ड्रेस, ये प्रोफेशन या वो प्रोफेशन, और वो बस सोचता ही रहेगा। स्कॉर्पियो, द मिस्टीरियस स्नेक। स्कॉर्पियो एक स्नेक है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। साइलेंट, ऑब्जर्वेंट, थोड़ा ज्यादा इंटेंस, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों से इनकी पटती भी नहीं, लेकिन जिस पर ट्रस्ट हो जाए उसके लिए सब कुछ, जान भी हाजिर है। सैजिटेरियस, द फ्री हॉर्स। सैजिटेरियस एक हॉर्स है जो बंधन बिल्कुल पसंद नहीं करता,
खुला मैदान, फ्रीडम और एडवेंचर। अगर आप इसे बांधने की कोशिश करोगे तो ये सीधा भाग जाएगा। केप्रिकॉन, द वाइज एलिफेंट। केप्रिकॉन एक एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग, काम, इंटेलिजेंट और फोकस्ड। हर चीज प्लान करके करेगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अक्वेरियस, एक यूनिक डॉल्फिन। जी हाँ, अक्वेरियस एक डॉल्फिन है, डिफरेंट, इंटेलिजेंट और थोड़ी क्वर्की। कभी आपको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वो खुद परफेक्टली क्लियर हैं अपने विजन में। और आखिरी राशि पाइसिस, द ड्रीमी फिश। पाइसिस एक फिश है जो अपनी ही दुनिया में रहती है, ड्रीमी, क्रिएटिव और हमेशा फुदकती हुई, और कभी कभी रियलिटी से थोड़ी डिस्कनेक्टेड, लेकिन दिल सबसे सॉफ्ट। दोस्तों, हर साइन अलग है, हर पेट अलग है और हर इंसान भी अलग होता है। किसी में एनर्जी ज्यादा है, किसी में इमोशन ज्यादा है, किसी में लॉजिक ज्यादा है और किसी में ड्रीम्स। ओ माय गॉड, अगर आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल मैं हूं, तो रिलैक्स, सबको लग रहा है। दुनिया इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सब अलग है, और अगर सब सेम होते तो लाइफ कितनी बोरिंग होती, साइमीज ट्विंस जैसे। इसीलिए अपने अंदर के पेट को समझो और दूसरों के पेट को एक्सेप्ट करो। मैं हूं आपकी दोस्त। अगली कहानी तक जरूर बताइएगा आपका जोडियक पेट कौन सा है और क्या वो आपसे मैच करता है। तब तक के लिए अपनी वाइफ को एंजॉय करिए और लाइफ को थोड़ा फन बनाइए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: बजट रोमांटिक्स। ये बंदा बोलता है, मैं तुम्हें चांद तारे ला दूंगा, और डेट पे बोलता है स्प्लिट कर लेते हैं, इक्वालिटी भी तो इम्पोर्टेंट है।

हेनरीज कैफे, जहां चाय से ज्यादा कहानियां उबलती थीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी गर्म चाय जैसी। पहले सिप में सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसे महसूस करोगे, अंदर कहीं गहरा उतरती चली जाएगी। शहर और उसकी दौड़, ये कहानी है एक शहर की। बड़ा शहर, भीड़ भरा, रोशनियों से जगमग, और फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला। यहां लोग भागते बहुत हैं, पर रुकते कम हैं। मिलते बहुत हैं, पर समझते कम हैं। और इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली थी, जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता था, और वहां था हेनरीज कैफे। ना कोई फैंसी लाइट्स, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुराना सा वुडन बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था हेनरीज कैफे, और उसके नीचे छोटी सी लाइन थी, यहां चाय के साथ थोड़ा सा सुकून फ्री है। आप सोचोगे ऐसा क्या खास है इस जगह में? खास ये है कि यहां लोग चाय पीने नहीं, अपने आप से मिलने आते थे। हेनरी, वो कौन था? ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, ना उसका पास्ट, ना उसकी कहानी। बस इतना पता था कि वो हर इंसान को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की दौड़ से बाहर खड़ा हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, और बस देख रहा हो, समझ रहा हो, बिना जजमेंट्स के। एक अजीब सी बात, हेनरी के कैफे में एक अजीब सी बात थी। यहां मेन्यू सिंपल था, चाय, कॉफी, थोड़ा सा खाना, लेकिन हर ऑर्डर के साथ एक सवाल फ्री मिलता था। जी हाँ, एक सवाल, और वो सवाल कभी सिंपल होता था, कभी गहरा, कभी वो सिर्फ इतना ही पूछता था, तुम ठीक हो? और लोग हंसते हुए कहते, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हेनरी के सवाल में कुछ ऐसा था कि लोग थोड़ी देर बाद रुक जाते थे और फिर धीरे से कहते थे, शायद नहीं। रोज शाम को तीन लोग वहां जरूर आते थे, जैसे तीन अलग कहानियां एक ही किताब के अलग पेजेस हों। राघव, कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, लेकिन आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन। वो रोज आता, चाय मंगाता और बस एक ही लाइन बोलता, यार समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। दूसरी मीरा, एक आर्टिस्ट, स्केचबुक हमेशा साथ होती थी, पर पेजेस अक्सर खाली रहते थे। उसके हाथ में टैलेंट था, लेकिन दिल में डर, डर कि लोग क्या कहेंगे। और तीसरी, शांति अम्मा, एक बूढ़ी माँ, जो रोज आती थी, एक ही कुर्सी पर बैठती थी और दूर देखते हुए चाय पीती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो शायद कभी आने वाला ही नहीं था। एक शाम जो अलग थी, उस दिन बारिश हो रही थी, शहर धीमा पड़ गया था और कैफे में सिर्फ तीन लोग थे। हेनरी ने चाय सर्व की और इस बार उसने एक अलग सवाल पूछा, अगर कल सब खत्म हो जाए। जी हाँ, अगर कल सब खत्म हो जाए तो आज क्या करोगे? सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं।

तो कल का वेट क्यों? अगले कुछ दिनों में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। राघव ने सच में रेजिग्नेशन दे दिया, डर के साथ, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। मीरा ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन प्लान की और पहली बार उसने अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखाई। शांति अम्मा ने फोन उठाया, नंबर डायल किया और बस इतना कहा, बेटा घर आ जाओ। एक दिन तीनों कैफे आए, लेकिन दरवाजा बंद था, बोर्ड हटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। एक छोटा सा नोट, दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ था, जिंदगी रुकती नहीं, बस कभी कभी हम रुक जाते हैं, जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर है, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था। विथ लव, हेनरी। तीनों वहां खड़े रहते हैं चुप। राघव बोला, ये कौन था? मीरा बोली, शायद एक इंसान। शांति अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं, वो एक एहसास था। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बहुत देर के लिए नहीं, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। वो आपको बदलने नहीं, बस आपको आपसे मिलवा देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आप किसी की लाइफ में हेनरी बन चुके हो। कभी एक सही वक्त पर बोला हुआ शब्द, कभी एक सही वक्त पर दिया हुआ साथ, और कभी एक छोटी सी स्माइल किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। तो आज जब आप अपनी चाय पियेंगे या अपनी रूटीन में बिजी होंगे, तो एक बार रुक कर खुद से जरूर पूछेगा, मैं सच में क्या चाहता हूं? और अगर जवाब मिले तो कल का वेट मत करना। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक दिलचस्प कहानी। आज का थॉट सिंपल है, कभी किसी के लिए हेनरी बन जाना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही सवाल पूछना ही काफी होता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। हमेशा बिजी रहने वाले लोग, ये लोग इतने बिजी होते हैं कि फ्री होने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए। कल मिलते हैं, कल बिजी हूँ। पर तुम तो घर पे हो।
1: हाँ, घर पे बिजी हूँ।

वर्ड ऑफ द डे गैडजुकरी। दोस्तों, सुबह हो शाम हो या रात के खामोश पल, अगर आपके साथ बातें हो जाएं तो हर वक्त थोड़ा सा और खूबसूरत लगने लगता है। और आज की बात थोड़ी हटके है, थोड़ी पुरानी है, थोड़ी सी फिल्मी भी है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है गैडजुकरी। सच बताऊं, पहली बार सुनोगे तो लगेगा जैसे किसी जादूगर का मंत्र हो, गैडजुकरी। चलिए इसको सीधी भाषा में समझते हैं। गैडजुकरी का मतलब होता है बहुत पुराने जमाने के शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्द जो आज हम रोज की जिंदगी में यूज नहीं करते, जैसे हे नाथ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, मेरा हृदय व्याकुल है। अब आप ही सोचो, अगर आज के व्हाट्सएप चैट में कोई लिख दे हे मित्र, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुरंत रिप्लाई आएगा, तू ठीक है ना, फीवर तो नहीं हो गया। आज हम लोग क्या बोलते हैं, और दोस्त क्या सीन है, सब चिल है, क्या कर रहा है। और अगर गैडजुकरी मोड ऑन हो तो यही मैसेजेस हो जाएंगे, आपका वर्तमान कार्यक्रम क्या है, आपका मन कैसा है। ये सुन के लगता है ना जैसे किसी ने मोबाइल हटा के सीधा इतिहास की किताब खोल दी हो। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्रश को इंप्रेस करेगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा रॉयल अंदाज में। वो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारी मुस्कान ने मेरे हृदय को छू लिया। लड़की ने देखा, 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, भाई तू ठीक है या किसी प्ले का रिहर्सल कर रहा है। गैडजुकरी एक अलग ही मैजिक होता है दोस्तों। जब आप कोई हिस्टोरिकल कहानी पढ़ते हो या कोई पुरानी फिल्म देखते हो तो वो पुराने शब्द आपको उस दुनिया में ले जाते हैं, जैसे आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हो। एक सिंपल लाइन, मैं तुम्हें याद करता हूं, और एक पुराने अंदाज में, तुम्हारी यादों ने मेरे मन को घेरा हुआ है। अब बताओ, थोड़ा गहरा फील हुआ या नहीं। कभी कभी पुराने शब्द दिल के ज्यादा करीब होते हैं, जैसे प्यार बोलने से ज्यादा प्रेम बोलने में एक अलग ही सॉफ्टनेस है। दुख की बजाय व्यथा, खुशी की बजाय आनंद, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये अपने साथ एक पूरी फीलिंग लेकर आते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसका भी ओवरडोज डेंजरस है। सोचो, घर पे मम्मी बुला रही हैं, बेटा खाना खा लो, और आप जवाब दो, हे मातेश्री, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हूं। मम्मी का जवाब, सीधा बोलना आ रहा हूं। ऑफिस या इंटर्नशिप में अगर गैडजुकरी चालू हो जाए तो बॉस बोले, फाइल कंप्लीट हुई, और आप बोले, हे प्रभु तुल्य अधिकारी, ये कार्य अभी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बॉस बोले, कल से मत आना भाई। तो दोस्तों, बात सिंपल सी है, गैडजुकरी एक स्टाइल है, एक फ्लेवर है, एक अंदाज है जो कहानियों को खूबसूरत बनाता है, बातों को गहरा बनाता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिए, आज किसी एक दोस्त को थोड़ा गैडजुकरी स्टाइल में मैसेज जरूर कीजिएगा, जैसे हे मित्र, आपका दिन मंगलमय हो, और फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। मुझे पक्का लगता है या तो वो कंफ्यूज होंगे, या फिर हंस पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टली कॉल करेंगे आपको चेक करने के लिए, आपकी तबीयत चेक करने के लिए। चलिए एक और सीन। नॉर्मल, फोन क्यों नहीं उठाया। गैडजुकरी स्टाइल, हे प्रिय, तुमने मेरे आह्वान को क्यों अनसुना किया। रिप्लाई, फोन साइलेंट था यार। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम सिंपल शब्दों में ही सब कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा प्यार से बोलेंगे ना, तो वही बात एक याद बन जाती है, एक मोमेंट, एक मेमोरी शायद। और शायद यही है गैडजुकरी का असली मतलब।
शब्दों को थोड़ा और खूबसूरत बना देना और थोड़ा और महसूस करवा देना। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए शब्द, एक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी बातों में थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा जादू और थोड़ा सा स्टाइल जरूर रखिए।

ಯಾ ಕಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋಳೆ ಕನೇ ಜೇ.

जोडियाक जंक्शन, जब 12 रास्ते एक ही मंजिल तक ले गए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी हटकर है। इसमें ना सिर्फ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें और उनके डिसीजंस सब कुछ एकदम हटके हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर हो और हर इंसान अलग रास्ते से चल रहा हो, तो क्या होगा? अगर एक दिन सभी रास्ते एक ही जगह पर आ मिले। एक अजीब सी जगह थी, ना मैप पर मिलती थी ना गूगल पर। नाम था जोडियाक जंक्शन, एक पुराना सा रेलवे स्टेशन जहां से वो लोग आते थे जो लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते थे, या फिर जो अपनी मंजिल ढूंढ रहे होते थे। उस रात वहां 12 लोग मिले, सब अलग, सब यूनिक और सब अपनी कहानी के साथ। अर्जुन हमेशा जल्दी में। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर आते ही बोला, ट्रेन कहाँ है, मुझे जल्दी है। उसे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके लिए लाइफ रेस थी, बिल्कुल एक एरीज की तरह। भावना कंफर्ट क्वीन। भावना ने पहले बेंच चेक की, ये कंफर्टेबल है भी या नहीं। उसके लिए सफर का मजा सुकून में था, बिल्कुल एक टॉरस की तरह। चिराग नॉन स्टॉप टॉकर। चिराग ने आते ही सबसे बात करना शुरू कर दी, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और बिना जवाब का वेट किए खुद ही बोलता रहा, बिल्कुल एक जेमिनाई की तरह। छवि दिल से जीने वाली। छवि थोड़ी इमोशनल थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बोली, ये जगह थोड़ी अजीब सी फील दे रही है, नहीं? बिल्कुल एक कैंसर की तरह। लक्ष्य अटेंशन मैग्नेट। लक्ष्य एंट्री ऐसे करता है जैसे हीरो हो किसी फिल्म का, गाइज रिलैक्स मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट, बिल्कुल एक लियो की तरह। विरेन परफेक्शन लवर। विरेन ने पहले ही

10 बार शेड्यूल देखा, फिर क्लॉक देखी और फिर बोला, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है, टाइमिंग सही है, बिल्कुल एक वर्गो की तरह। लीना कंफ्यूज्ड बट चार्मिंग। लीना दो टिकट्स हाथ में लिए खड़ी थी, ये वाली लूं या वो वाली, डिसीजन उसके लिए एक एडवेंचर था, बिल्कुल एक लीब्रा की तरह। समर एक साइलेंट ऑब्जर्वर। समर चुप था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सबको देख रहा था, जैसे सबकी कहानी समझ रहा हो, बिल्कुल एक स्कॉर्पियो की तरह। कबीर एक फ्री सोल। कबीर ने बोला, यार कोई भी ट्रेन आ जाए मैं तो चढ़ जाऊंगा। उसके लिए मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल एक सैजिटेरियस की तरह। देव फोकस्ड। देव सीधा खड़ा था, मैं यहां एक रीजन से आया हूं, एक टारगेट से, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा, बिल्कुल एक कैप्रिकॉर्न की तरह। अयान एक अलग थिंकर। अयान ने अचानक बोला, गाइस क्या हो अगर ट्रेन ही इल्यूजन हो। सब उसे देखते रह गए, बिल्कुल एक अक्वेरियस की तरह। मेहर ड्रीमिंग। मेहर आसमान देख रही थी, शायद हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं, बिल्कुल एक पाइसियस की सोच। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, ध्यान दीजिए जोडियाक जंक्शन पर आने वाली ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्ची मंजिल जानते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या सच में उन्हें पता था कि वो कहां जा रहे हैं। अर्जुन रुक गया, पहली बार शायद मुझे नहीं पता। भावना बोली, मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, मंजिल नहीं सोची। चिराग चुप हो गया, सच में पहली बार। हर किसी को रियलाइज हुआ कि वो बस चल रहे थे लेकिन पता नहीं था कि कहां जा रहे हैं। तब समर ने धीरे से कहा, शायद ट्रेन यहां आएगी ही नहीं। सब शॉक हो गए, क्या मतलब। समर बोला, शायद ये जगह ट्रेन के लिए नहीं है, ये जगह हमें रोकने के लिए है, ताकि हम सोच सकें, समझ सकें कि हम सच में क्या चाहते हैं। और उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, जोडियाक जंक्शन एक स्टेशन नहीं था, एक पॉज था। कोई ट्रेन नहीं आई, लेकिन सब वहां से चल दिए अपनी अपनी डायरेक्शंस में, लेकिन इस बार एक क्लियर माइंड के साथ। अर्जुन धीरे चला, भावना ने कंफर्ट के साथ एक पर्पस भी चूज किया, चिराग ने सुनना सीखा और हर किसी ने अपनी मंजिल खुद डिसाइड की। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर कभी ना कभी खड़े जरूर होते हैं, जहां हम रुकते हैं, कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं, मैं जा कहां रहा हूं। और शायद वही पॉज जरूरी होता है, क्योंकि बिना रुके सही रास्ता कभी नहीं मिलता। मैं हूं आपकी दोस्त और आज का सवाल बहुत सिंपल है, आप अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर हो या ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके हो। सोचिए और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है, और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं, जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता, चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए, अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवं अस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया, पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए

लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के दो स्कॉर्पियन 29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार? रेडियो के साथ

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: कुछ कहती हैं सब्जियाँ,
2: आज बच्चे खेल खेल में सब्जी बने हैं। उन्होंने मिलकर तय किया कि बबलू महाराजा कद्दू बनेगा, उसकी राजकुमारी मिर्ची बनेंगी चिन्नम्मा, मुन्ना राजकुमार करेला बनेंगे, सोनू राजकुमार प्याज बनेंगे, टमाटर बनेंगी पिंकी, पिंटू राजकुमार आलू बनेंगे और मुर्गन राजकुमार गाजर बनेंगे। सब्जियों की महासभा आरंभ होती है।
3: आज हम सब्जी खेलेंगे।
4: हाँ, सब्जी खेलेंगे।
5: चन्नम्मा तुम मिर्ची बनोगी,
6: पिंकी तुम टमाटर बनोगी।
7: अरे मैं क्या बनूंगी, मुझे भी तो बताओ। मैं भिंडी बन जाती हूँ।
8: मैं करेला बनूंगा।
9: बबलू तुम दही बनोगे, तुम मिर्ची बनोगे,
10: मैं मिर्ची बनूंगी,
11: तुम टमाटर बनोगे, गाजर बनोगे,
12: सब्जी बनोगे।

0: राजकुमारी मिर्ची।
1: हाँ पिताजी।
0: तुम जानती हो कि मुझमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, मैं कई रोगों से लोगों को बचाता हूँ। हाँ, मैं या तुम्हारे भाई तुमसे कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मिलकर रहें तो सबका भला होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, बेटी राजकुमारी मिर्ची, तुम कुछ कहो बेटी।
1: पिताजी, मैं स्वाद में तीखी हूँ, लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: उनकी त्वचा की रक्षा करती हूँ।
0: सही।
1: मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजकुमार टमाटर, करेला, आलू और गाजर क्या करते हैं। प्यास, तुम तो बताओ तुम क्या करते हो।
2: बहन मिर्ची, मैं स्वाद में बहुत सादी हूँ। मैं सभी सब्जियों के साथ घुल मिल कर रहती हूँ।
1: अच्छा।
2: और हाँ, मैं बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हूँ।
1: ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को बड़ा समझती हूँ।
2: अच्छा, बड़ा समझती हो।
3: हाँ, बड़ा तो मैं भी हूँ। मैं करेला हूँ। मैं कड़वा तो हूँ पर सेहत के लिए अच्छा हूँ।
4: तुम सब मुझे कैसे भूल गए।
5: अरे बताओ बताओ कौन हो तुम।
4: मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू।
3: आलू
6: आलू
1: आलू तो हमें बहुत पसंद है।
6: आलू के फायदे तो बताओ।
4: मैं सभी को शक्ति देता हूँ।
7: मुझे भी चाहिए शक्ति।
8: मुझे भी शक्ति। मुझे चाहिए।

0: ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इनसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: जी पिताजी, मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूंगी।
0: शाबाश।
2: हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
3: हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
0: ये हुई ना बात।
1: गाजर, आलू, करेला, तुम सब मेरे भाई बहन हो।
2: हाँ मिर्ची, हम
3: भाई बहन हैं।
4: तभी अचानक से राजकुमारी मिर्ची गिर पड़ती है।
1: ओ, मैं तो गिर गई।
2: अरे मिर्ची, तू चोट लगेगी।
4: सभी भाई बहन उसे मिलकर उठाते हैं।
0: देखा बेटी, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कितना चाहते हैं। चाहते हैं ना?
1: जी पिताजी।
0: सभी ने मिलकर तुम्हें उठाया?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, देखो बेटी, मिलकर रहने से सभी का फायदा होता है। होता है कि नहीं?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, प्यार फैलता है, एकता बढ़ती है। बढ़ती है ना एकता?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, तो इसलिए बेटा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। मैं खुद पर घमंड करती थी, असली प्यार तो मिलजुल कर रहने में है।
0: हाँ।
1: मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूंगी।
0: ये हुई ना बात। शाबाश बेटी।
5: तो सुना आपने बच्चों, सभी सब्जियों के कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं। इसीलिए अब से ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बात ये है बच्चों कि हमें है सभी सब्जियां खाना।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: शिक्षक जो गढ़े बचपन को,
7: ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा करता है कि बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास में अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
5: साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है।
8: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की सातवीं संतान थे।
9: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
5: साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा।
8: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा, अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना। भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
10: माँ, ये चिट्ठी।
8: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
9: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
10: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
9: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
10: अच्छा,
9: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
10: अच्छा,
9: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसे कि आशा की जाती है।
10: हाँ
9: ठीक है।
10: बहुत
9: अच्छा।

0: तो शिक्षक मित्रों, ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है। जरा सोचिए कि यदि आप बालक थॉमस एडिसन के शिक्षक होते तो किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते और उसकी सूचना बच्चे के अभिभावकों को किस प्रकार देते। साथियों, आप भी शिक्षक हैं। आपने सुना कि एडिसन की माँ, जो स्वयं शिक्षिका थी, उन्होंने किस प्रकार अपने बच्चे के किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर क्यों ना हम भी यथासंभव बिना खींचे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें।
1: उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
2: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा।
0: तो सुना आपने दोस्तों, रेल के डब्बे में ही प्रयोगशाला, जिसका अंतिम परिणाम दुर्घटना थी। जी हाँ, बच्चा कौतुक और रोमांच से भरा होता है। वह जरूर नए नए प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीटना समाधान नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी शिक्षक माँ ने किस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया।
2: उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
2: मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
0: तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, एडिसन की माँ स्वयं शिक्षिका थी, लेकिन अक्सर अभिभावक शिक्षक नहीं होते, है ना? तो कितना अच्छा हो यदि बच्चे के जीवन में एडिसन की माँ की तरह ही हमारी भी सकारात्मक भूमिका हो जाए।
1: थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
2: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे किसी के लिए जीना है। कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसे मुझे निराश नहीं करना है।
0: साथियों, हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन को मुख्य रूप से बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया।
2: बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
2: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
2: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार।
2: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा,
2: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह,
2: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
2: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
1: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
2: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
1: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
2: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
4: और अब सुनते हैं एक अरबी लोक कथा जिसमें अपराधी के विरुद्ध गवाही दे रहा है एक दरख्त।
5: पुराने जमाने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। काजी ने पूछा,
6: तुम्हारे पास कोई गवाह है?
5: आदमी ने कहा,
6: नहीं। बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं।
5: दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला,
7: हुजूर, ये शख्स बहुत कसमें खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
5: काजी ने जब उस आदमी को इस तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि उसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया,
7: हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है, इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपए की अशद जरूरत थी, ये बहुत परेशान था, इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया, मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने जिंदगी भर की कमाई जो सिर्फ 100 रुपए थी, अपनी कमर से खोलकर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे एक महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए।
5: काजी ने पूछा,
6: तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे?
7: एक दरख्त के नीचे।
6: जब तुम्हारा कहना ये है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे, तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है?
5: काजी ने दूसरे शख्स से पूछा,
6: तुम क्या कहते हो? क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है?
8: ये झूठ बकता है। मैंने न उस दरख्त को देखा है और न ही उस जगह को जानता हूँ। मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं।
5: काजी ने उसकी बात सुनकर कहा,
6: अच्छा तुम अभी यहीं बैठो।
5: फिर दावा करने वाले शख्स से कहा,
6: तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो।
5: काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा,
7: काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा।
5: काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा,
6: ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो।
5: मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया,
6: वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं?
5: उसने जवाब दिया,
6: अभी नहीं।
5: काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई, उससे कहा,
7: काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है।
5: वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया,
7: हुजूर, दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है।
6: तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया।
5: काजी ने फिर ये फैसला सुनाया,
6: मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं।
5: दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला,
8: काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया?
5: काजी ने जवाब दिया,
6: बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज न देते कि वो अभी वहां ना पहुंचा होगा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी

अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थी रानी गाइडनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं।

0: अत्याचार जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसे आपको करना पड़ेगा जरूर।
1: क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बंद करो ये गाना।
2: अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे बात छोड़ दो।
1: अरे तुझे चौप, कान खोल कर सुन लो, कल से ये तमाशा, ये मजमा, ये नाच खाना बंद। अब यह जमीन हमारी है, तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार
0: नहीं।
1: अब ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चलाएगा इधर। ओके,
3: जानवर लेके?
4: अरे ये तो हमारी जमीन है,
2: इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको?
4: अरे भला फिर हम क्या खाएंगे, अपने जानवरों को क्या देंगे?
2: ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर।
4: अरे हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे।
1: चलो भागो यहाँ से, हट जाओ।
5: भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे।
0: हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल।
5: हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े।
2: हाँ जादोनाग भैया, हम लड़ेंगे, हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे।
4: कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे, हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर।
2: हाँ हम उन पर हमला करेंगे, हम उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, ये जंगल हमारा है।
5: ठहरो ठहरो ठहरो, गुस्से से बात और बिगड़ सकती है, पहले हम उनसे ऐसा न करने के लिए कहेंगे। हाँ हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे।
6: लेकिन लेकिन जादव भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कल कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे।
5: नहीं गाइडिंग लू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी, हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे।
6: जादो भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो?
5: तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग लू, हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे।
4: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: यही है जादो ना।
6: अरे अरे कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को?
1: हटो पीछे। नहीं मोंटी, ये ले।
4: क्यों मार रहे
5: हो? कायर, इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को, हिम्मत है तो मुझे मार।
2: यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो तो, देखो कैसे आंखें दिखा रहे हैं, देखो देखो इसे।
1: सिपाहियों, अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो पीटो भगाओ इधर से। इसके साथियों को भी ले चलो। जा तो ना, चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू।

0: बच्चों, 1931 में जादोनांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन ल्यू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था, नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी।
1: भैया जादोनांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
2: कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
1: सब लोग अपनी औरतों बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे।
2: हम
1: अंग्रेजों को मजा चखाएंगे, उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं।

0: लगता है पहाड़ी के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों तैयार हो जाओ।
1: तैयार है।
0: इससे पहले कि वो इधर आए हम उन पर हमला कर देंगे।

0: इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों, गाइडन लियू को सब प्यार से रानी गाइडन लियू कहते थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे।
1: सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार एक हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट में जमा कर दें, चाहे ये लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। कंपनी सरकार ने टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स ना देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो,
2: अब तो हद हो गई है। ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ से निकाल कर ही दम लेंगे।
3: हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इन्हें टैक्स कहाँ से देंगे?
4: टैक्स भी किस बात का, हमारा देश, हमारी धरती, फिर कैसा टैक्स?
3: और क्या, हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दे तब ना।
4: रानी, रानी, खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं। जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे, तलाशी लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो, हम सब संभाल लेंगे।
2: नहीं नहीं
5: रानी, भूलना मत, जीते जी इस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। हम जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे।
4: नहीं खोलेंगे। और खबरदार, किसी ने टैक्स दिया तो
6: नहीं, नहीं, कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
0: बच्चों, इस तरह रानी गाइडन लियू और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे। गाइडन लियू ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स न देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडन लियू के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। अफरा तफरी, लड़ाई, गोलियां शुरू हो गईं।
1: सिपाहियों, यस सर, पकड़ लो इसको,
7: यस सर,
1: भाग ना पाए,
7: ठीक है,
2: छोड़ो मुझे। कायरों की तरह क्यों पकड़ते हो? हिम्मत है तो पहले लड़ाई करो।
8: अरे चल यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म, अब जेल में करना लड़ाई।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे।
8: सिपाहियों,
2: छोड़ो,
8: जो भी बच गया है सबको पकड़ के बांट दो, बहुत परेशान किया है हमको।
2: तो मुझे ले चलो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, छोड़ो इन्हें।
8: अच्छा,
2: छोड़ दो।
8: अच्छा, इनको यही छोड़ दूं? वाह, ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारें, हमसे लड़ाई करें। ओ, पकड़ जाओ, डाल दो इसको काल को घड़ी में।
0: इस तरह रानी गाइडन लियू ने अपनी परवाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इस नौजवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने 14 साल काल कोठरियों में बिताए, जहां उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। 1939 में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया तो गाइडन लियू के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन लियो को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अठहत्तर वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन लियो को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में 1 रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडन लियो ज़िलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडन लियो भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी।
7: अरे रामू काका।
9: नमस्ते टीचर जी।
7: नमस्ते, कैसे हो? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए।
9: बस ठीक हूँ।
7: अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही। वो तो अच्छी भली 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी।
9: क्या बताऊं टीचर जी, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी।
7: अरे
9: कमला ने दिन रात उसकी सेवा की। अब उसकी माँ की तो तबीयत ठीक हो गई, मगर उसका स्कूल छूट गया बेचारी का।
7: अरे
9: अब वो बड़ी भी हो रही है, उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूँ टीचर जी।
7: कैसी बातें करते हो रामू काका। इसका भी एक हल है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
9: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय,
7: जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है। बस लड़की का 5वीं पास होना जरूरी है, और तुम्हारी बेटी तो 5वीं पास कर चुकी है।
9: जी।
7: लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं, उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता।
9: अब वो तो ठीक है टीचर जी, सिर्फ दाखिले से क्या होगा? खाना पीना, कपड़े, किताबें।
7: अरे तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका, क्योंकि ये सब मुफ्त में दिया जाएगा।
9: क्या? हाँ। मुफ्त में दिया जाएगा।
7: और जब तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना।
9: अच्छा। हाँ। तो क्या टीचर जी, मेरी कमला फिर से पढ़ सकेगी ना?
7: हाँ, और एक दिन आत्मनिर्भर भी बनेगी।
9: अच्छा, धन्यवाद टीचर जी, मैं कल ही उसका दाखिला करवाता हूँ।
7: अरे कल क्यों, आज।
9: अच्छा टीचर जी, आज ही करवाता हूँ।
7: पढ़े बालिका करे उजियारा, खुशहाल बने संसार हमारा।

बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं। 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की। आओ सुने पिंकी के बलिदान की कथा।

0: चलेंगे
1: चलो चलो चलो चलो चलो
0: आज तो बहुत मजा आया
1: जम्मू चलो
0: चलेंगे।
2: अरे पिंकी आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली।
0: अरे सहेली किसकी है
3: भाई, मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था,
4: पर हमको तो नहीं आता था।
0: अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई।
3: अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई, कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती। क्यों?
2: ये तो ठीक है, अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा।
0: हाँ।
3: अच्छा चलो चलो घर चले।
5: चलो चलो बच्चों चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक दो तीन, अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो।
0: धीरे धीरे
6: धीरे धीरे। अरे हरीश सभी आ गए बस में,
5: देखता हूँ उस्ताद शायद आ गए सब। अरे ठहरो ठहरो,
3: रुको रुको ड्राइवर भैया, शंभू चढ़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, रुको भैया।
5: अरे घबराओ नहीं पिंकी, जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे भाई बस।
3: आओ चलो चलो चलो आओ इधर बैठो।
5: आराम से चलो चलो चलो चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई ड्राइवर साहब अब चलाओ गाड़ी।
6: हाँ जी अभी लो।
5: ठीक है मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही।
3: अच्छा सुनो मैं गीत गाती हूँ और तुम सब ताली बजाना।
2: हाँ भाई पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना।
0: अरे बुद्धू गाने के साथ साथ बजानी
2: है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है।
0: चलो पिंकी शुरू हो जाओ।
3: बजे समय का।

0: बस अपने रास्ते की ओर बढ़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है। पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है। फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की।
1: ड्राइवर भैया, भैया देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है।
0: लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी
1: अरे अरे नेहा देखो देखो आग, हे भगवान, आग लग गई थी बैटरी पर। हां बैटरी पर, ये देखो आग, हां अमित अमित

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी में जुट गए होंगे। लेकिन साथियों, कुछ बातें याद रखें जो विशेषज्ञ बताते हैं कि जब तक 100 मिलीमीटर बरसात ना हो तब तक हम अपने खेतों में बुवाई नहीं करना चाहिए। आज का अगर मौसम को देखा जाए, खासतौर पर झाबुआ जिले के मौसम को देखा जाए, तो अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और बरसात तो होना ही नहीं है। और 1 जून से अभी तक कुल वर्षा जो हुई है वो 27.3 मिलीमीटर हुई है। तो कुछ खास बातें हैं, यानी कि अभी से हमें इंतजार करना होगा, कुछ हमें तैयारी इसके पूर्व जो होती हैं, बुवाई के पूर्व जो होती हैं, उसकी हमें तैयारी करना चाहिए, मेड़ बंधान करना चाहिए, पानी को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, आसपास जो तालाब सूखे पड़े हैं उनका फिर से द्वारा रिचार्ज कराना चाहिए, यानी खुदाई करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, कुओं की साफ सफाई करना चाहिए। चूंकि पथरीला इलाका है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ पर एक सी जमीन हमें करवा लेनी चाहिए। तो ये खास बातें हैं, जब तक हमें बोनी का सही समय नहीं आता है, जब तक बरसात अच्छी नहीं होती है, तब तक हमें इन खास बातों पर, इन पर अपने खेत पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। खासतौर पर यदि देखा जाए झाबुआ जिले में तो सोयाबीन, मक्का, इस तरीके की खेती अधिकतर हमारे किसान साथी करते हैं। अगर आपको बता दें कि लगभग भारत में 3.6 मिलियन हेक्टेयर से 3.1 मिलियन टन उत्पादन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में सोयाबीन पैदावार करने वाले प्रमुख प्रांत हैं ये। अकेले मध्य प्रदेश में 80% से अधिक क्षेत्रफल है जहां पर सोयाबीन उगाया जाता है, लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन केवल 20 से 25 हजार हेक्टेयर पर ही उगाया जाता है। प्रजातियों की बात करें तो उसमें PK 472 जो 120 से 125 दिनों में पक्के तैयार हो जाती है, इस पर उपज जो रहती है 30 से 35 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से रहती है। दूसरा बीज जो रहता है वो PS 564 रहता है, इसकी अवधि रहती है 115 से 120 दिन। इसमें उपज प्रति हेक्टर देखा जाए तो इसमें 25 से 30 क्विंटल रहती है। तीसरी जो उपज रहती है वो PK प्रजाति जो रहती है PK 416 रहती है, जो कि 115 से 120 दिन में आ जाती है। प्रति क्विंटल उपज की बात करें तो ये भी 30 से 35 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से पैदावार होती है इसकी। PK 327 जो अवधि रहती है 100 से 110 दिन की रहती है। इसमें उपज की अगर बात करें तो इसमें उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। पूसा 16 110 से 115 दिन में तैयार होती है, 25 से 35 क्विंटल प्रति क्विंटल जो रहती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होती है। PS 1042 120 से 125 दिन में आती है ये फसल और 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज होती है। JS 335 जो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है, इसकी उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। JS 7244 गौरव के नाम से जाना जाता है, 106 से 110 दिन में तैयार होती है, 20 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होती है। PK 262 120 से 135 दिनों में तैयार होती है और 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये

उत्पादन होता है। बुवाई का समय आपको पता है कि मैदानी क्षेत्रों में 20 जून से 10 जुलाई तक रहता है, पर्वतीय क्षेत्र में 25 मई से 15 जून तक रहता है। चूंकि बारिश अभी ज्यादा नहीं हुई है तो हमें इंतजार करना है। बीज दर की हिसाब की बात करें तो 75 से 80% अंकुरण वाला लगभग 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर में बोना चाहिए। पंक्ति दर पंक्ति पौधे की दूरी जो रहती है 45 × 5 सेंटीमीटर रखें। बीज 4 सेंटीमीटर गहरा ना बोएं। बीज उपचार अरहर में देखिए तो बीज उपचार करके ही अपने बीज को देखना है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी साथियों, हमें जो कार्यक्रम के माध्यम से बतानी थी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक रिपोर्ट सुनते हैं और जानते हैं, खासतौर पर देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन से, मौसम के परिवर्तन से हमारी कृषि पर कितना असर पड़ा है, इस पर एक रिपोर्ट हम सुनते हैं। लेकिन विराम के बाद बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों बहनों, जलवायु परिवर्तन अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हमें जीवन को बनाए रखना है तो अब धरती को सुरक्षित करना होगा, और अगर हम अभी भी नहीं चेते तो परिणाम काफी दुख भरे हो सकते हैं। तो आइए इसी के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: भीषण गर्मी में आसमान को तकती हमारी निगाहें अमृत तुल्य बारिश का इंतजार कर रही है, जिसमें गर्मी से राहत मिल सके। पिछले कुछ सालों में लगातार तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। इस साल यानी 2022 में पिछले 12 सालों के मुकाबले ज्यादा गर्म हवाएं चली, जिसमें 54% हीट वेव केवल 5 राज्यों में चली है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। इसके पीछे कई कारण है और सबसे बड़ी वजह है तेजी से वन क्षेत्रों का कम होना। आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में 0.5% ही हरियाली में इजाफा हुआ है, जिसमें हमें तेजी लाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित कर रहा है। हालांकि हम प्लास्टिक प्रबंधन पर काफी जोर दे रहे हैं, लेकिन तकरीबन 12% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पा रहा है। इन सारी वजहों से तापमान में जो इजाफा हो रहा है, उसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। इस साल बड़े तापमान के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। इस कमी को देखते हुए सरकार ने गेहूं निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो खेती में नुकसान की आशंकाओं को कम कैसे करें।
3: देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के अलावा, केवल मानव स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि धरती पर, खेती पर, खेती से जुड़े जितने भी देश हैं, जिनकी इकोनॉमी है वो कृषि से संबंधित है, कृषि पर निर्भर है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वो कृषि से ही अपना जीवन पालन कर रही है, उन पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और बहुत अधिक रूप से पड़ने लगा है। पिछले 4-5 साल से हम किसानों को इस बारे में जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से बचने के लिए किस तरह के उपाय करना शुरू कर दें। उसके लिए मिट्टी को बचाना जरूरी है, मिट्टी की बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाना बहुत आवश्यक है, और इसमें रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, पुनर्योजी कृषि, प्राकृतिक खेती, ऐसे जितने भी तमाम विविध तरीके हैं खेती के, जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य बनाया जा सके, वो तरीके किसानों को इस्तेमाल करने होंगे। नहीं तो इसका जो है बहुत अधिक प्रभाव जो है वो इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उससे कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण फूड हो गया है, भोजन सबके लिए आवश्यक है।
2: हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक अब इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि किस तरह से भविष्य में इन समस्याओं से निपटा जाए। हालांकि कुछ हद तक प्राकृतिक खेती अपनाकर भी परेशानियों से बचा जा सकता है।
3: इस बार जो गर्मी पड़ी है और तापमान में जो अंतर आया है थोड़े समय के लिए, उसी से जो है गेहूं में जो पिछले 3 साल पहले जो वैज्ञानिकों ने अपना वो दिया था कि मॉडलिंग के बेसिस पे कि गेहूं में लगभग 5-10% उसमें यील्ड की कमी होगी, उपज की कमी होगी प्रति एकड़, अगर जो है तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है वो बढ़ोतरी हुई तो। किंतु इस बार उदाहरण हमारे सामने है, हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों किसान, जो कि खासतौर पर और मध्य प्रदेश के किसान, जहां गेहूं जो है वो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में बोया जाता है, वहां जहां 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर जहां पे उपज होती थी अच्छी वैरायटीज़ की, उनकी उपज जो है वो 17 से 18 क्विंटल तक पहुंच गई। तो इससे न केवल सरकार को जो है वो गेहूं पे जो एक्सपोर्ट निर्यात का जो निर्णय लिया गया था तुरंत बैन लगाना पड़ा।
2: दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ता प्रदूषण न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है, बल्कि खेतों में पैदा हो रही फसलें भी इनसे प्रभावित हो रही है। सामान्यतः तापमान के हर एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम हो सकता है। इसीलिए इसके समाधान की शुरुआत हमें आज और अभी से शुरू करनी होगी, ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी डॉक्टर और विशेषज्ञ द्वारा कितनी महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि जो उपज आज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, उसका कारण है ये जलवायु परिवर्तन। यदि हम इसको नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में बहुत भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमारा विशेषज्ञ द्वारा मानना है। खासतौर पर उन्होंने सलाह दी है कि हमें अपने वृक्षों को लगाना चाहिए और अपने प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुख करना चाहिए, तभी हम इस जलवायु जैसी भयानक समस्या से निपट सकते हैं। कार्यक्रम में और भी चर्चा होगी, लेकिन साथियों इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। गीत के बाद पशुधन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, खासतौर पर पर्यावरण को सुधारने में बहुत अहम जिम्मेदारी निभाता है, तो उसकी देखभाल में इस मौसम में, चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है, कैसे कर सकते हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

पशुपालन अपने आप में काफी संजीदा व्यवसाय है। इसमें पशु को हर मौसम में सुरक्षा तो देनी ही होती है, साथ ही मौसम के हिसाब से उनके आहार में भी परिवर्तन करना होता है। ये छोटे छोटे प्रयास पशु को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। इस समय गर्मी का मौसम खत्म होने को है और बारिश का मौसम दस्तक देने वाला है। ऐसे में पशु

0: पालकों को चाहिए कि वो बरसात शुरू होने से पहले पशुओं को बाह्य परजीवियों जैसे किल्ली, जू, चीचड़ी से सुरक्षा दें। इसके लिए क्या कदम उठाएं? जानते हैं।
1: भाई आप जानते हो कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है किसानों को चिचड़ियों की। और चिचड़ियों का इलाज जो है वो एक चिचड़ियाँ जो मानी जाती है मैनेजमेंटल डिजीज़ है। और चिचड़ियों का इलाज जब किसान भाइयों को करना होता है तो उसमें किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये चिचड़ियों का जो एक लाइफ साइकिल होता है वो 4 हफ्ते का होता है। तो 4 हफ्ते में ही उसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे आज चिचड़ी आई है तो उस समय वो उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद वो भूल जाते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही 1 हफ्ते में आप दवाई लेंगे तो उस टाइम पे जो अडल्ट चिचड़ियां हैं जो बड़ी हैं वो मर जाएंगी, लेकिन जो उनके जो अंडे हैं वो रह जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो अगले हफ्ते में फिर से वो हैच होकर वो नई चिचड़ियों का रूप लेंगे। और ये जो साइकिल है, कम से कम किसान भाइयों को जो चिचड़ी का टीका है या दवाई है वो उनको 1 हफ्ते के बाद रिपीट करनी होती है, और टोटल 4 हफ्ते का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसीलिए आपने किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखना है कि चिचड़ियों के जो इलाज है उसका इलाज के लिए आपको पूरा 1 महीने का जो इसमें 1-1 हफ्ते का अंतराल है उसमें इलाज करवाना है। और ना कि सिर्फ इतना ही, आप जैसे कि मैंने कहा ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, तो इसमें आपने क्या करना है कि जब आप चिचड़ियों का इलाज कर रहे हैं उस समय पे जो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका शेड है उसका जो फर्श है उसकी सतह पे कोई कहीं सुराख वराख ना हो, ताकि जो अंडे हैं और चिचड़ियाँ अगर गिरेंगी तो वो वहाँ उन सुराखों के बीच में ना घुस जाएं उस समय। और फर्श को आप पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का घोल बना के पानी में उसे आप साफ कर सकते हैं। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मौसम में नमी ज़्यादा रहेगी तो उस समय में आपने अपने शेड में कुछ जैसे कूलर या इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, और वेंटिलेशन को आपने प्रॉपर रखना है ताकि चिचड़ियाँ जो हैं वो पनप ना पाएँ। और जो मल मूत्र का रिसाव है उसको आपने ध्यान से रखना है, और मल मूत्र का निकास जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि चिचड़ियाँ जो हैं वो पनप ना पाएँ। और बरसात में आपने सबसे ज़्यादा अपने शेड को साफ सुथरा रखना है, और हो सके तो आप डेली अपने शेड की सफाई करें, क्योंकि सफाई से बहुत सारी बीमारियों को हम रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बरसात में दूसरी बीमारी की, थनेला।
0: बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को थनेला रोग होने की आशंका भी बनी रहती है। जैसा कि इसका नाम है, इसका सीधा संबंध पशु के थन से है। थनेला रोग एक संक्रामक रोग है और एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इस रोग के फैलने का प्रमुख कारण है साफ सफाई का अच्छी तरह से नहीं होना। इसके लिए अनियमित तौर पर दूध दोहने और गंदे हाथों से दूध दोहने की वजह से भी पशुओं में थनेला रोग हो जाता है। किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आने से भी ये रोग होने की आशंका रहती है। इस रोग से बचाव के लिए क्या करें पशुपालक, जान लेते हैं विशेषज्ञ की सलाह।
1: थनेला में हम अक्सर देखते हैं कि किसान जो है वो पहचान नहीं पाता। सबसे पहले किसान को देखना होता है कि उसके जो पल्ला है, जो थन है, वो हल्का हल्का जब दूध निकाल रहा होता है उस समय हल्का हल्का गर्म रहता है, तो उसे हमें पता लगता है कि थनेला की शुरुआत जो है वो हो रही है। क्योंकि ये एक इन्वायरमेंटल और मैनेजमेंटल डिजीज़ है, तो इसमें भी आपको रख रखाव जो है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साफ सफाई जो है वो शेड की आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि थनेला जैसे रोग ना हो। और आपने ध्यान रखना है कि जब आप गाय का दूध निकाल रहे हैं तो उससे पहले चारा ना खिलाएं ताकि उसके बाद चारा खिलाएं। इससे क्या होगा कि पशु जो है वो खड़ा रहेगा और थन जो है, थन की जो नली है वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिससे जीवाणु जो है वो थन की नली में घुस नहीं पाएंगे और आगे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना, थनेला को रोकने के लिए हमेशा लाल दवाई का यूज़ करें जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के आप दूध निकालने से पहले आप थनों को धो लें, और फिर दूध निकालने के बाद भी आप उसे एक डिप कर सकते हैं। तो किसान भाई क्या करें कि जब आप लाल दवाई का यूज़ करें तो एक मग में आप उसे घोल बना लें और 1 लीटर पानी में, और थन को आप डिप कर सकते हैं।

0: दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, डिवर्मिंग मानसून से पहले और मानसून के बाद अनिवार्य है, और इसीलिए इस से आप ना चूके, आप हमेशा टाइमली अपने जानवरों की डिवर्मिंग करें, ताकि इसे जानवर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और अब बाकी कई अन्य रोगों से जानवर को मुक्ति मिल जाती है। और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब बरसात आ रही हो उससे पहले आप FMD का टीका करवा लें, गलगोटू का टीका करवा लें, BKU ब्लैक वाटर का टीका करवा लें। ये टीकाकरण आप ज़रूर करवाएं मानसून से पहले, क्योंकि बरसात में हम देखते हैं कि नमी होती है, तो नमी के कारण बहुत से जीवाणु के पनपने का एक ज़्यादा बहुत से जीवाणु जो हैं वो पैदा होने लग पड़ते हैं। तो इसलिए आपने उन चीज़ों में इन मौसम में आपने खासकर से ध्यान रखना है कि अपने जो शेड है उसकी साफ सफाई हो, वेंटिलेशन प्रॉपरली हो, हवादार हो।
1: आइए अब आपको दिखाते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर, ताकि आप उसके अनुसार सही तरह से प्रबंधन कर सके, अपने पशुओं की सही तरह से देखभाल कर सके।
2: HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।
1: हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, और कहें भी क्यों ना, डॉक्टर्स भी तो बच्चे को गाय का दूध पिलाने की ही सलाह देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गाय के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएं, और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं आज के हमारे युवा उद्यमी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं।

0: भारत की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी की तलाश में नहीं भटक रही, बल्कि ऐसे कदम उठा रही है जिससे और युवाओं को अपने कारवां में शामिल कर सके। युवाओं की आधुनिक सोच अब नया भारत गढ़ रहा है, जिसमें उनके छोटे छोटे प्रयास देश को और सशक्त बना रहे हैं। हमारे आज के युवा उद्यमी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। गाजियाबाद के रहने वाले असीम सिंह रावत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर करीब 15 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें वो भारतीय गौवंश को संरक्षण दे रहे हैं और गाय के दूध व गोबर से कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। इस समय उनके पास करीब 1000 गायें हैं, जिनमें ऐसी गाय भी शामिल है जो दूध देने में सक्षम नहीं है, लेकिन असीम उन गायों की भी सेवा कर रहे हैं।
1: बाय एजुकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लगभग 15 साल का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मैंने हेता स्टार्ट करी, दो गायों से, दो लोगों से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और अब 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं, 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, 1000 के आसपास भारतीय गौवंश है, और लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग इस समय बना रहे हैं, देसी गाय के दूध से, गौमूत्र से, गोबर से। संस्था का मिशन ये है कि 1000 गौवंश, जिसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, मिल्किंग काउस भी हैं, ये सभी को हम अच्छे से पाल सकें एंड टू एंड विदाउट एनी डोनेशंस। और उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए और उनको वर्ल्ड वाइड सेल करिए। प्रोडक्ट्स में हम लोग बेसिकली दूध से बने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो दूध एक मेन चीज़ है, उसमें खोया हो गया, पनीर हो गया, आपके लड्डू हो गए, घी हो गया, आपका मक्खन हो गया, फिर गौमूत्र पे आ जाते हैं। तो गौमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट संस्था बनाती है, इसमें बहुत तरह के अर्क हो गए। ये ध्यान रखना है कि गौमूत्र से जब भी आप प्रोडक्ट्स बनाएं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक मेडिसिन है और मेडिसिन को मेडिसिन के तरह ही यूज़ किया जाना चाहिए। अर्क के अलावा पंचगव्य बहुत सारी मेडिसिन बनाती हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए, ये भी आयुर्वेद से डिराइव्ड हैं, पंचगव्य से डिराइव्ड हैं, जो भी काउ रिलेटेड चीज़ें हैं वो संस्था बनाती है। गोबर से भी लगभग 10 से 15 उत्पाद संस्था बनाती है, जैसे मूर्तियाँ हो गई, उपले हो गए, जीवामृत हो गया। गौधारित कृषि भी हम लोग करते हैं, हेता नंदीशाला बुलंदशहर में, वहाँ पर 5-6 तरह के मिलेट्स उगा लेते हैं, राइस है, वीट है, लकड़ी बना लेते हैं, गोबर की उपले बना लेते हैं। और हेता उत्तराखंड में हम लोग बद्री गायों पे काम करते हैं, वहाँ पर भी पंचगव्य कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और बद्री गाय का घी, छाछ आदि भी वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ओवरऑल 3 लोकेशन हैं संस्था की इस समय, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ आपको 2022 में, हेता गाजियाबाद है, हेता उत्तराखंड है, हेता बुलंदशहर है जी।
0: मात्र 2 लोगों से शुरू की गई उनकी ये कंपनी आज 80 लोगों के पार तक पहुंच गई है। वो बताते हैं कि गायों को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां थी वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत की गाय इतनी निर्बल नहीं हो सकती है जो पशुपालक को मुनाफा ना दिला सके, बल्कि भारतीय गौवंश अपने साथ पशुपालक के पूरे परिवार का पोषण करने में सक्षम होती है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए असीम ने अपना हेता डेयरी फार्म शुरू किया, जिसमें ज्यादातर वे गाय हैं जो दूध देने में सक्षम नहीं है, लेकिन असीम मुनाफे के लिए गौ पालन नहीं करते, बल्कि गौवंश की रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। उनके यहाँ दूध, गोबर व गौमूत्र से करीब 100 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उनके प्लांट में बनने वाले उत्पाद पर्यावरण के हिसाब से भी बेहतर है और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी। इस समय वो अलग अलग नस्ल की गाय का दूध, नस्ल के हिसाब से कई तरह का घी, पनीर, खोया, मक्खन, च्यवनप्राश, शहद, दलिया, आटा, बासमती चावल, पंचगव्य से बनी दवाएं, हेयर ऑयल, गोबर से बने कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। उनके ये उत्पाद ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। इसके लिए असीम सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। असीम के स्टार्टअप की एक और अच्छी बात है, और वो ये है कि वो फार्म में पल रही नंदियों पर भी खास ध्यान देते हैं, जिनके लिए असीम ने हेता नंदीशाला खोल रखी है। असीम अपने पशुओं को देने वाला चारा भी खुद ही उगाते हैं, जिसमें मोटे अनाज भी शामिल है। असीम के ये प्रयास उन युवाओं के लिए बेहतर उदाहरण है जो कृषि और पशुपालन को कम आंकते हैं और शहरों का रुख करते हैं।
2: जीमेल का
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मुख्य बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं। खासतौर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर असर हमें हमारे किसान साथियों को झेलने को मिल रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जंगल हुआ करते थे और उसको किस तरीके से उसको काटा जा रहा है। उससे जो आज हम देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज जो जो विशेषज्ञ बताते हैं, पहले जो फसल उत्पादन प्रति हेक्टर ज्यादा होती थी, आज वो दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें हमें रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ साथ में चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है और इस बरसात के मौसम में पशुपालन का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं और हम कार्यक्रम में, चूंकि युवा हमारे देश का भविष्य होते हैं और युवा पीढ़ी ही अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो अपनी जॉब को छोड़कर बीटेक भी करने के बाद वो कृषि के क्षेत्र में उतर रहे हैं, बहुत सारी संभावना है। आइए सुनते हैं इस स्टार्टअप इंडिया को, किस तरीके से युवा आगे बढ़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, लेकिन विराम के बाद बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ। सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनों रेडियो अपनी बात है।

0: जय आदिवासी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमारा पहला विषय है बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती, तो आइए जानते हैं कि ऐसे में जबकि गर्मियां अब जारी है, कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश भी शुरू हो गई है, जो किसान हैं हमें बताएं डॉक्टर राकेश कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो इस मौसम में ली जा सकती है।
3: जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको हम बरसात की मौसम भी बोलते हैं
2: जी।
3: और इस मौसम में जो मुख्य रूप से सब्जियां लगाई जाती है वो खासकर बेल वाली सब्जियां, घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, ऐसी सब्जियां लगाई जाती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च और हम लोबिया, इसके अलावा हम ओकरा का भी इस समय खेती करते हैं। हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों में लाल चौलाई और हरी चौलाई की हम इस समय खेती करते हैं मुख्य रूप से
2: जी।
3: और इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे हम राउंड द ईयर में पालक और धनिया, इनकी भी खेती हम इस समय कर सकते हैं।
2: तो बहुत सारी वैरायटीज है, कई सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छी उपज हासिल कर सके, इसके बारे में विस्तार से आज हम जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो सकती है, यही वजह है कि वैज्ञानिक अच्छी जल निकास वाली जगहों पर ही सब्जियां बोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेड़ बनाकर खेती करना भी जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बरसात के दौरान बेल वाली सब्जियों में खीरा, तोरी और करेले की खेती की जा सकती है। इन सब्जियों को सीधे जमीन पर ना लें, क्योंकि बारिश का पानी सब्जियों को दागदार बना देता है, जिससे बाजार भाव पर असर पड़ता है। इसलिए इन्हें बोने के बाद बांस और रस्सियों की मदद से मचान बना लें। बरसात में भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, लोबिया, बीन्स और चौलाई जैसी फसलों में खरपतवार की समस्या काफी ज्यादा रहती है। इससे फसल की बीमारी भी ज्यादा लगती है और कीट भी, इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अलग अलग फसलों की बात करें तो भिंडी को लगभग सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा ग्रीन भिंडी 5, पूसा A4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभनी क्रांति, आजाद भिंडी और अर्का नामिका के नाम लिए जा सकते हैं। लोबिया की खेती के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु सही मानी जाती है। पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अर्का, गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन लोबिया की बेहतर किस्में हैं। प्याज के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जो ना बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी। आमतौर पर सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। इसकी N53, पूसा रेड, पूसा रतनार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट और भीमा डार्क रेड इस मौसम की अच्छी किस्में हैं। मैदानी हिस्सों में जून जुलाई के दौरान खरीफ मिर्च बोई जा सकती है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, मिर्च की रोपाई जरूर कर लें। वहीं बैंगन को लंबे गर्म और बरसाती मौसम की जरूरत होती है, इसे भी सभी तरह की मिट्टी

0: जी हाँ, तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि इस समय कौन कौन सी फसलें ली जा सकती है, कौन कौन सी किस्में अच्छी रहती है, साथ ही फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। लेकिन आइए हमारे दूसरे विषय का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पीके जैन, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि शिक्षा व स्वरोजगार, जैसा कि आज का हमारा विषय है, इसके बारे में हमें पहले समझाएं कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सदियों से हमारे जो अन्नदाता किसान है वो खेती किसानी करते आए हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जानकारी है कि वो किस तरह से खेती करे। लेकिन ऐसे में अगर किसी तरह से शिक्षा, कृषि शिक्षा हासिल कर ली जाए तो वो किस तरह से इनके लिए उपयोगी हो सकती है?
1: देखिए, कृषि क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि, 20 साल पहले जो कृषि थी उसमें आज में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि की हम बात करते हैं तो एक प्रतिस्पर्धी कृषि हो गई है। प्रतिस्पर्धी से मतलब है कि किसान के पास जो संसाधन है उनको किस तरह से उच्चतम उपयोग किया करके ज्यादा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान ये भी बात आजकल चाहता है कि कैसे से अधिकतम उसको आय प्राप्त हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि जो बाजार की जो कंडीशन है जहां उसे मूल्य मिलते हैं उसकी भी काफी परिवर्तन आ गया है। वो एक प्रतिस्पर्धी हो गई है, कौन से बाजार में बेचना है उसके लिए एक स्किल, एक जानकारी की जरूरत होती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में काफी चेंजेज आ गया है। हम देखेंगे जब हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि कृषि में किस तरह के लोग इसमें काम करते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी कृषि में ज्यादातर कम शिक्षित लोग है और यह अशिक्षित लोग है जो कृषि के व्यवसाय में काम करते हैं। वो अपने खेत पे उनका प्रबंधन, खेत का प्रबंधन करते हैं, तो इसलिए काफी, और क्योंकि हमने अधिक से अधिक तम आय प्राप्त करनी है, अधिक से अधिक तम लाभ प्राप्त करना है, तो इसलिए कृषि को एक इनोवेटिव कृषि बनानी है, नवोन्मेष कृषि बनानी है। इसके लिए हमें कृषि के जो इन्वॉल्व लोग हैं, कृषि में जो शामिल लोग हैं, उनको एक तरह से हमें कहें कि उनका उत्थान करना है, उनको मानव संसाधन कृषि क्षेत्र में निर्माण करना, इसके लिए कृषि की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से साल दर साल जो कृषि है उसके तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है और अब तो कई तरह की नई तकनीकी भी आने लगी है, और ऐसे में इन चीजों के बारे में किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी है। कृषि में जहां अल्पशिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में उच्च शिक्षा हासिल करके भी युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और जो कृषि है उसे उद्यमिता की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में कृषि शिक्षा उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
2: कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की दक्षता और क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा को लेकर विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। देश के युवा अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों से शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की शुरुआत महसूस की गई। 1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि शिक्षा का ही नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।
0: जहाँ तो रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरह से जो कृषि शिक्षा है उसका विस्तार लगातार होता जा रहा है। डॉक्टर जैन, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे में जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं और इसे एक रोजगार के अवसर के तौर पर देख रहे हैं, उनके लिए किस तरह की संभावनाएं हैं?
1: कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा संभावना है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें और रोजगार की हम बात करें तो एक हम जॉब भी हम दूसरी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य जो संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो उद्यमी बनने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं कृषि क्षेत्र में। तो उसके लिए जो हमारे ग्रामीण युवा है तो उनको हमें कृषि क्षेत्र में बनाए रखने के लिए और उनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि उनको कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव सेक्टर बनाना है, उसको आर्थिक रूप से एक आकर्षित एक क्षेत्र बनाना है। और उसके लिए हमें जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार करके उनको उद्यमी बनने की शिक्षा हम दे।
0: बिल्कुल डॉक्टर जैन, इसके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनसे जुड़ सकते हैं आज के युवा और स्वरोजगार के जो अवसर है वो उन्हें मिल सकते हैं।
3: इसी के साथ साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 94-25-41-36-03। इसी के साथ साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। तो चाय की चुस्कियों के साथ, दिल से निकली हुई बातों के साथ शुरू करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड, और दिल से स्वागत करते हैं आचार्य राजकुमार बिरला जी का। तो आचार्य राजकुमार बिरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
2: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ज्योतिष के ऊपर में कुछ ऑथेंटिक डिस्कशन होगा और इससे हमारे श्रोता और हमारी पब्लिक जो भी सुन रहे हैं उनको लाभ होगा।
1: बिल्कुल सर, हम भी इसीलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप 20 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1,00,000 से ज्यादा कुंडलियां देख चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मैं आपको जानती हूं तो मैं ये वाउच कर सकती हूं कि जो भी नॉलेज आज हमारे साथ साझा होने वाली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं सर आपके सफर से। मैं आपको थोड़ा सा बचपन में ले जाना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी और हमारे श्रोतागण भी जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर शुरू कैसे हुआ, किस तरह से आप ज्योतिष में आए, इस प्रैक्टिस में आए, क्या कोई एक मोमेंट था, एक लम्हा था जिसने आपको पुश किया, या ये आपकी चॉइस थी जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जैसे जैसे उम्र होती गई, क्या जर्नी रही सर आपकी?
2: वैसे तो मैं कहूंगा कि ज्योतिष हमेशा उस इंसान को ढूंढती रहती है जो इसकी कदर करता है, और अपने आप ज्योतिष ही उस इंसान के अंदर में ये नेचर में या उसकी माइंड में ये थॉट लाती है कि इसकी तरफ उसकी जिज्ञासा, उसका इंटरेस्ट ग्रो होता है। पर मेरे साथ ये उल्टा था
1: जी।
2: 90 से लेके 95 तक का जो मेरा एक 5 साल का एक पीरियड था, ये हमारी लाइफ का एक बहुत टफ पीरियड था। और उस पीरियड के अंदर में इंडिया के टॉप मोस्ट उस समय के जो एस्ट्रोलॉजर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप मान लीजिए कि 95 में एक एक एस्ट्रोलॉजर जिसकी फीस 15,000 से 20,000, 25,000 रुपए थी, उस सबको हमने कांटेक्ट किया था। कि ये हमारी सोच थी उस समय कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास में कोई मैजिक स्टिक होती है और वो उसको घुमाते हैं और घुमाने से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो बता देते हैं।
1: राइट।
2: इस सोच के साथ में 5 साल हम भटके।
1: 95
2: के अंदर में एक परिवर्तन हुआ लाइफ में कि मुझे थोड़ी सी नफरत होने लग गई थी इन लोगों से। और मैं इनको एक्सपोजर करने के लिए कि यार ये लोग करते क्या है, मैं इस थॉट के साथ में मैंने ज्योतिष को सीखना स्टार्ट किया।
1: वाओ।
2: मेरे पापा का एक इसमें बहुत स्ट्रांग कंट्रोल रहा है और वो हमेशा पंचांग देखते रहते थे, तो मुझे लगता था कि बेसिक तो मेरे को यही सिखाएंगे, तो मैंने वहां से शुरुआत करी। और 98 तक मैं बुक वॉर्म था, किताबी कीड़ा की तरीके से आप कह सकते हो कि मैं इस किताब से पढ़ा, उस किताब से पढ़ के मैं सीखता रहा, ये करता रहा। 98-99 में मुझे ऐसा लगा कि यार इस तरीके से तो ज्योतिष हो नहीं सकती है। कि अगर मैं कुंडली आएगी और मैं किताब खोलूंगा और उसको पढ़ूंगा फिर मैं प्रिडिक्शन लिखूंगा, तो इससे तो क्लाइंट के ऊपर में या किसी भी तरीके से अगर किसी की मैं कुंडली प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है
1: जी।
2: 2000 के अंदर में एक गुरुजन से मिलना हुआ और उन्होंने जब मेरी कुंडली, मेरा हाथ देखा, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो उन्होंने कहा ये बिजनेस नहीं करेगा, इसको मेरे पास भेज दो, ये ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा नाम करेगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उन्होंने मुझे आईकास्ट में एडमिशन करवाया और वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आईकास्ट में जब पढ़ने जाते हैं तो पहले 6 मंथ जो होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। बोरिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे गणित होती है, ज्योग्राफी होती है, साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, कर्म सिद्धांत होता है। अब एक यंग एज के जिसको हम जेन जी कहते हैं उनको हम ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोलेंगे, यार इस उम्र में आके वापस ये सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको बोरिंग लगेगा। बोले यार मैं सीखने तो ज्योतिष आया था और पढ़ ये सब रहा हूँ। तो उस पाथ को जब मैंने पास आउट किया तब मेरे को लगा कि यार मैं जिस ज्योतिष को मैं सीख रहा था या मैं जो ज्योतिष को समझता था एक्चुअल में वो ज्योतिष है ही नहीं, वो तो एक रोड साइड की जो ज्योतिषी होती है वो है, एक्चुअल ज्योतिष कुछ और है। एक्चुअल ज्योतिष का मकसद है कि आप मानव के शरीर पे पड़ने वाले पंचभूता जो अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश तत्व है उसको उसके कर्म सिद्धांत से कनेक्ट करते हुए उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को आप रीड कर सकते हो और उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में उसको गाइड कर सकते हो कि भैया तेरी बॉडी में तेरे नेचर में पर्टिकुलर एलिमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसको तेरे को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है।
1: तो बहुत ही खूबसूरत
2: जी। आयुर्वेद भी यही बोलता है, आयुर्वेद भी ये बोलता है कि इंसान पंचभूता से कनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी भी एक ही बात कहती है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर 5 एलिमेंट्स।
1: बिल्कुल सर। इसको अगर आपने जब शुरुआत की अपने शुरुआती दौर में, तो जब आपने आईकास्ट में पढ़ाई की तो किस तरह से कर्म सिद्धांत को समझाया गया, क्या हमारी भगवद गीता से उसे जोड़ के समझ सकते हैं आप किस तरह से, बिकॉज आप कर्मा यू नो प्योरिफिकेशन पे भी काम करते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस बिजनेस लव रिलेशनशिप्स एंड कर्मा पे बहुत फोकस है आपके काम में, तो ये जो आपकी जो फील्ड्स हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स हैं वो आपने कैसे चूज की और कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो रूट कॉज है, उसी से सब कुछ शुरू होता है और उसी तक जाके सब कुछ खत्म होता है। तो कैसे जो हमारे श्रोता हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं वो अगर कुछ भी नहीं करें तो ये अगर कर लें तो शायद जीवन थोड़ा सा और सुधर सकता है, तो अगर कर्म सिद्धांत को थोड़ा इलैबोरेट करें सर और आपकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें।
2: देखिये भगवद गीता ही एक बेस है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए अगर उसको अपने कर्मों को एलोबरेट करना है, उसको अपने कर्मों को समझते हुए इस जीवन का मोटिव पाना है। तो भगवद गीता जिसने नहीं पढ़ी मैं कहूंगा कि उस इंसान ने सिर्फ जो एक थोपी हुई जिंदगी है, मतलब जैसे जन्म मिला, माँ बाप ने बड़ा किया, पढ़ाई करवा दी, शादी करवा दी, बच्चे हुए, वापस उनके बच्चे हुए, बस ये एक जो साइकिल है ये थोपा हुआ साइकिल है, उसको बस एक मनुष्य की योनि के निर्णय जी करके वो चलता बनेगा। और जिसने भी भगवद गीता को पढ़ करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया

0: गया, उसने कर्म समझा कि हर कर्मा का एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ऐसी हर कर्मा का एक एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन भी होता है, और हम कहते भी हैं कि कर्मा रिटर्न्स बैक, जिसने जो बोया है वो उसी का पेड़ काटेगा। ठीक है, तो लोग बाग आज छल कपट करके अपने आप को कुछ समय अवधि के लिए अपने आप को खुश कर लेते हैं कि बहुत मैंने पैसा कमा लिया, उसका पैसा मेरे पास आ गया, या मैंने किसी को ऊपर चढ़ते हुए नीचे गिरा दिया और मैं ऊपर चढ़ गया। तो ये एक सम्बिंग पीरियड तक होता है। जैसे ही आपके संचित कर्म मतलब क्या, जो कर्म आपने पास्ट लाइफ में किए थे, जो कर्म आप इस लाइफ में कर रहे हो, वह सब आपके संचित कर्मों के अंदर में एड ऑन होते जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो किताब है उसके अंदर में सारे कर्म लिखे जाते हैं और उनके जो रिजल्ट होते हैं वो हमारी ज्योतिषी भाषा के अंदर में जो जज का ओहदा मिला है शनि को
1: जी,
0: वो उसके रिजल्ट देते हैं कि तुमने अच्छा किया है तो तुम अच्छा भुगतोगे और तुमने बुरा किया है तो तुम जन्म में बुरा भी भुगतोगे। तो हम हर इंसान को, मैं एक बात बोलता हूँ, तुम दुनिया के हर कैमरे से बच सकते हो, एक कैमरा ऐसा है जो शनि भगवान का है, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और वही कर्मों के राजा हैं, वही कर्मों को कंट्रोल करते हैं, वही आपके कर्मों को हमेशा देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि इसने इच्छित रूप से या अनिच्छित रूप से जो कर्म किया है उसमें इसको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए।
1: राइट,
0: अब बात करिए अपने कर्मों की, तो मैं इस कर्म की डेफिनेशन को एक शॉर्ट में, क्योंकि कर्म तो बहुत लंबे जाएंगे क्योंकि ये बहुत डीपली बैठ रहे हैं
1: जी,
0: मतलब आप अगर कुछ चीज सोच भी रहे हैं तो ये भी आपका एक कर्म है, पर ये डीप मैटर हो जाता है। अभी सिर्फ बात करते हैं, तीन
1: थॉट भी कर्म है। ओ वाओ,
0: करेक्ट करेक्ट
1: जी।
0: अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को उस इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं उसका बुरा करने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप किसी का पॉजिटिव सोचते हैं, भला सोचते हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी का भला करने के लिए सोच रहे हैं तो उसका भला भी होगा, आपका भी भला होगा। तो मेनली जो तीन तरह के जो कर्मों के सिद्धांत बताए हैं, जो वो है संचित कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए, जिसका घड़ा, जिसका एक मटका लेकर के हम इस जन्म में आए हैं, वो हमको भुगतने ही भुगतने, उसको दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी उपाय नहीं ठीक कर सकता, वो आपको भुगतने ही भुगतने। इसके बाद में सेकंड स्टेप में आते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या, वह कर्म जो आप इस जीवन में करोगे
1: जी,
0: और यही वो कर्म होते हैं जिससे आप जो आपको संचित कर्म मिले हैं उसके रिजल्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं, पर हटा नहीं सकते। अच्छा। अगर आपका एक्सीडेंट लिखा है, एक टाइम पीरियड आ रहा है कि आपको मार्केश की महादशा है, बादकेश की महादशा है और मार्केश का प्रत्यंतर है, तो यह सब चीजें एक इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई घात होने वाली है।
1: अच्छा।
0: अब अगर आप क्रियामान कर्म अच्छे कर रहे हैं, आप जैसे सपोज करें महामृत्युंजय के जाप कर रहे हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि एक्सीडेंट तो होगा पर छोटी मोटी खरोच, छोटी मोटी चोट लग करके आप बच जाओगे पर जीवित रहोगे। पर अगर आपको सब चीजें नेगेटिव चल रही है और आप तो कहते हो कुछ नहीं होता ये चीज, और जैसे सामने आपको बोल दिया है रोड पे गड्ढा है, आप कहते हो मेरी तो, मेरे पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, गड्ढा वड्ढा क्या होगा, अरे भाई जैसे ही तुम फुल स्पीड में होंगे उस गड्ढे से तुम्हारी स्टीयरिंग बिगड़ेगी और तुम ऑफ द ट्रैक चले जाओगे।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो यहाँ पे जो सेकंड जो मेन क्रियामान कर्म है, यही आपके वो कर्म है जो हम आपको गाइड करते हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है कि आप ऐसे अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करो। आपके जीवन में अगर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है तो इस अग्नि तत्व को कम करने के लिए जल तत्व को कैसे आप बढ़ाओगे, इस तरीके से ही हम एनर्जी को बैलेंस करने की बात करते हैं। और इसी के आगे जब हम जाते हैं वो है हमारा प्रारब्ध। वो प्रारब्ध ये है कि हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अगर मैं अच्छी सोच लेके चलता हूँ, मैं दीन दुखियों का भला कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, तो नेचुरल वो सब दुआएं मेरे जो आगामी कर्म, जो मेरे संचित कर्म जो बनने वाले हैं पास्ट जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो मेरे को एक अच्छी गोल्डन लाइफ को इंडिकेट करते हैं।
1: Right.
0: तो हम बहुत बार आपको सुनने में मिलता होगा कि देखो मैं तो इतना भगवान को मानता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, पर मैं इतना दुखी हूँ, और वो सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं करता है, वो तो भगवान को अगरबत्ती भी नहीं लगाता है और वो ऐश कर रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत बार हम ये महसूस करते हैं जी,
0: है ना। तो इसको आप समझे, ये आपके कर्मों का या किसी ग्रह का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आपसी पर्सनल ग्लिच नहीं है जो आपको वो नुकसान दे रहा है. यहाँ आपके सब कर्मों का ही एक लेखा जोखा है कि पास जिंदगी में आपने बुरे कर्म किए थे तो भी आप बुरे कर्म भुगत रहे हो. अगर आप अपने कर्मों को चेंज करते हो क्रियामान कर्मों से तो उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उनको बैलेंस कर सकते हो और अपना फ्यूचर अपना प्रारब्ध बढ़िया बना सकते हो जो आपको लेटर ऑन मिलता है.
1: जी जी बिल्कुल. इन्हीं बातों से हम आगे और आपसे जानेंगे कि एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं. जैसे आपने फाइव एलिमेंट्स की बात करी तो इस गीत के बाद हम उस पे आएंगे और जानेंगे राजकुमार बिरला जी से. चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जो तुम तोड़ो पिया, फिल्म मीरा.

0: आप बहुत आई थिंक एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपने शुरुआती हमारे इंटरव्यू से हमें बताया है. तो मैं एग्जाम्पल से जानना चाहूंगी, जैसे किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई एलिमेंट कम है या ज्यादा है, तो आप उसे किस तरह की कुछ रेमेडीज देते हैं? और जो बाय एंड लार्ज लोग हैं, जैसे जो हमें सुन रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं डेली लाइफ में जो लोग कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को बैलेंस में रख सकते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें?
1: जी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का है, तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके समझाता हूँ कि कैसे. पहले तो हम वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल कॉज क्या है.
0: जी,
1: तो जब हमारे पास में किसी पर्सन की कुंडली आती है, तो हम उसके पास्ट और प्रेजेंट को उससे मैच करने की कोशिश करते हैं. कि हम समझने की कोशिश करते हैं वाकई में जो इसकी कुंडली दिखा रही है वही सच है, या इस इंसान ने अपने आप को बदल लिया, या ये इंसान किसी इन्फ्लुएंस के अंदर में आकर के, जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपकी जो मित्रता है वो सात्विक लोगों से है तो आप सात्विक नेचर की तरफ बढ़ोगे, अगर आपकी मित्रता तामसिक लोगों से है तो वो आपको तामसिकता की तरफ बढ़ा देगी. तो हम उसको रूट कॉज निकालने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स वो बता रहा है बाकी नहीं, ये उसका चार्ट पे इंडिकेट करता है या जस्ट ये एक टाइम समिंग पीरियड के लिए है, या इसको कोई पास्ट लाइफ के कोई ऐसे श्राप या ऐसे कोई पाप मिले हैं जो इसको भुगतने हैं. क्योंकि मैं एज एस्ट्रोलॉजर उसके कर्मों से अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ और मैं ही उसको समाधान बता रहा हूँ, तो मैं भी वहां पे कहीं ना कहीं एक कर्ता के रूप में उसकी लाइफ में आ रहा हूँ.
0: बिल्कुल.
1: तो यहाँ मुझे अपनी, जहाँ मुझे अपनी टेंशन होती है उतनी मुझे क्लाइंट की भी होती है कि अगर इसकी लाइफ सुधर गई तो इसका पुण्य मुझे मिलेगा, और अगर इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ी और इसने ही मुझे दुखी होकर के कुछ गलत बात बोली या कोई, जैसे अपन कहते हैं ना, बद्दुआएं देना,
0: बद्दुआ निकली. जी जी,
1: है ना. जैसे आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं, कोई जना 5 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, मेरे पास में मैजिक स्टिक है, मैं आपकी मैजिक स्टिक से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और जब वो चीज नहीं होती है तो आपकी निश्चित बात है आपकी बद्दुआ मिलेगी. क्योंकि उस इंसान ने वो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैसे कमाए हैं या कैसे इंतजाम किया, ये उसको पता है.
0: बिल्कुल.
1: तो जब हम एक्चुअली में, जब हम होरोस्कोप में चेक करते हैं कि यार वाकई में ही इसके खुद के कर्म खराब थे और ये सजा भुगत रहा है, तो सबसे पहले तो हम जो कर्म खराब थे उन फिल्टर्स को लगा करके उस एरिया को उस इंसान के कर्मों से पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं कि तू जो अपने आप क्रियामान कर्म करेगा इस पर्टिकुलर प्लेनेटरी एलिमेंट्स के साथ में करेगा. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी के कुंडली के अंदर में सूर्य बहुत ज्यादा खराब है, खराब बोले तो इन द सेंस वो पीड़ित है, वो राहु के साथ में है, वो शनि केतु के साथ में है ना, या बहुत ज्यादा उसका जो षटबल है वो वीक हो रहा है, उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है. तो ऐसी स्थिति के अंदर में साफ पता चलता है कि इसको कहीं ना कहीं पिता से सपोर्ट मिलना चाहिए. अगर इसके पिता इसके लिए सपोर्टिव हो जाए, या ये अपने पिता को डेली ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे, ये अपने पिता को डेली रेस्पेक्ट देना शुरू कर दे और उनके हाथ इसके सर पे आ जाएगा, तो ये इंसान अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर ले, ये अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करना शुरू कर देगा. इसका जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान ही रहेगा, वो ईगो में कन्वर्ट नहीं होगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खराब सूर्य का मतलब है ईगो होना. जी,
1: ईगो होना, और ईगो होना मतलब वो इंसान सिर्फ अपनी ईगो, मैं शब्द के आगे आके मर जाता है कि मैं ही क्यों करूं. यही मैं हर रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल का हो, चाहे ऑफिसर्स के साथ में हो, वहां पे वो मैं की वजह से हर रिलेशनशिप खराब हो रहा है.
0: बिल्कुल.
1: तो हम ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं कि भैया अपनी जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी क्या होगी, अग्नि तत्व.
0: जी,
1: इस अग्नि तत्व को न्यूट्रलाइज करो, सूर्य को डेली ऑथेंटिक वे में जो एनर्जी से, अपनी एनर्जी को उस पानी में डाल करके आप सूर्य को चढ़ाएं और उसको नमन करें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, उसके साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य कवच का पाठ करें, जिससे आप सूर्य भगवान को सिर्फ न सिर्फ जल चढ़ा के ठंडा कर रहे हैं, उनको हैप्पीज भी कर रहे हैं, उनको खुश भी कर रहे हैं कि भाई मैं आपको नमन करता हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप मेरे जीवन में शीतलता लाना, आप मुझे समझ और सद्बुद्धि देना.
0: बिल्कुल.
1: ऐसे एलिमेंट्री को पकड़ते हुए हम करते हैं. कोई जना कहता है कि भाई मेरे लाइफ के अंदर में कोई भी चीज स्मूथ नहीं होती है, तो जब जैसे ही ये वर्ड आता है स्मूथ नहीं होती है, इट मींस कहीं ना कहीं उसके एक लॉन्ग टर्म कार्मिक पैटर्न बिगड़ा हुआ है. उसको जिंदगी में परिश्रम के अलावा उसको सफलता नहीं मिलेगी.
0: जी.
1: और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जैसे भी जितने भी ये लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे जिंदगी में स्टेबल सफलता नहीं मिलती है, तो आप देखेंगे इनकी कुंडली के अंदर में सबसे ज्यादा शनि प्लेनेट का एक इन्फ्लुएंस होता है जो उनको बोलता है कि शनि शनि चलो मैं सफलता दूंगा, पर वो उतावलेपन के अंदर में कभी भी शनि शनि नहीं चलते हैं, धीरे धीरे नहीं चलते हैं, वो रातों रात अमीर बनने के लिए चाहते हैं। और जहां पे भी पेशेंस वर्ड का नाम आता है, जहां पे भी पेशेंस की बात होती है कि आप में कितना धैर्य है, वहां पे कनेक्शन हो जाता है शनि से।
0: बिल्कुल।
1: तो हम एक ही बात चेक करते हैं कि भैया तेरे अंदर में पेशेंस कितना है, क्या तू टिक करके बैठने वाला इंसान है या तू चलता फिरता इंसान।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यही एक सब तरीके हैं जिसमें हर प्लेनेट की एक एनर्जी है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी लाइफ के अंदर में अर्थ एलिमेंट ग्रो करना है कि वाटर एलिमेंट ग्रो करना है कि फायर एलिमेंट ग्रो करना है, एयर एलिमेंट ग्रो करना है कि इसको वाटरी एलिमेंट से कनेक्ट करना है।
0: बिल्कुल,
1: तो पंचभूता को बैलेंस करने की बात।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। सर आगे चलते हैं, क्योंकि हम कुंडली की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जो 12 हाउसेज हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब एक बहुत ब्रीफली हमें बता सकें कि फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक एक नॉलेज पहुंचे कि हाँ कुंडली ये होती है। इलैबोरेटली ऑफकोर्स हम नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज वो बहुत बड़ा एक सागर है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है, बट जस्ट एक बेसिक जो हमें जो बिल्कुल आज पहली बार ज्योतिष के बारे में सुन रहे हैं उनके लिए अगर हम बताना चाहें कि कुंडली होती क्या है और वो क्या क्या कैरी करती है, तो अगर वो साझा कर सकें। और इसी से मेरा अगला सवाल है कि अगर कुंडली ही सब कुछ है तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि आप कर्म करो, कर्म सिद्धांत कहाँ पे बैठता है, इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट आया है और जन जन्मांतर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रीविल बड़ी है या डेस्टिनी बड़ी है, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: जी आपने जो 12 हाउसेस की बात करी है, अगर मैं ये 12 हाउसेस पे आप और मैं अगर एक महीने तक भी अगर डिस्कशन करेंगे तो यह खत्म नहीं होता, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर मैं कहूंगा कि इन 12 हाउसेस को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले चार त्रिकोण को समझना होगा। चार त्रिकोण क्या, जैसे भाव नंबर 1, भाव नंबर 5 और भाव नंबर 9, ये हो गया आपका धर्म त्रिकोण। ठीक है, जब किसी इंसान की कुंडली में धर्म त्रिकोण के जो ये 3 हाउसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो ऐसे इंसान अगर अपनी लाइफ को धर्म से संबंधित कामों में, अब धर्म क्या, मैं धर्म ये नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए हो तो आपका धर्म क्या हुआ, बिजनेस करना, धंधा करना।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, तो यहाँ पे उस धर्म की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एक स्पिरिचुअलिज्म, सिर्फ एक भगवान, ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आपका धर्म हाउस एक्टिव है तो आप सुबह से शाम तक सिर्फ अगरबत्ती लेके भगवान के सामने बैठे रहोगे आपका काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ कर्म की बात हो रही है, आपका जो धर्म है वो क्या है, बिजनेस करना। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ सेकंड त्रिकोण की, उसको कहते हैं हम अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण मतलब हर चीज का अर्थ, सिर्फ पैसा नहीं। कि मुझे अगर कोई भी मेरे को बात कही गई है, मुझे उसका अर्थ निकालना है, मुझे उसका मतलब निकालना है, मुझे उस अर्थ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। तो ये जो अर्थ त्रिकोण वाला जो होता है, जिसको हम लोग फाइनेंस से कनेक्ट करके, आजकल जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इसको फाइनेंस से कनेक्ट कर दिया गया है, वो होता है हमारा 2, 6 और 10 का त्रिकोण।
0: ठीक है,
1: सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और 10th हाउस।
0: राइट,
1: तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंसान पैसे के पीछे भागेगा, काम के पीछे भागेगा, धन कमाएगा। पर यहाँ ये सिर्फ ये नहीं है, अर्थ का मतलब है हर जिंदगी के उसका एक मूल तत्व, उसका एक अर्थ समझना जो आपको एज जिम्मेदारी, एक जवाबदारी के रूप में मिला है, उसको आपको एक्टिव करके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी।
0: राइट,
1: इसके बाद में थर्ड जो त्रिकोण आता है वो है 3, 7 और 11, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। तो ये जो त्रिकोण है इसको कहते हैं काम त्रिकोण।
0: जी,
1: अब जब नाम आता है काम का तो लोग बहुत दिमाग में एक ही तरफ जाता है, काम, काम वासना वाला।
0: जी,
1: ये काम वासना वाला काम नहीं है, ये काम है क्रिया का, आपकी स्किल्स का, आपकी डेडिकेशन का, कि कैसे आप अपनी स्किल्स, अपनी इच्छा पूर्ति मैं कन्वर्ट करती हूँ, कैसे आप साझेदारी या जीवन साथी के साथ काम करते हुए अपनी लाइफ के मोटिव, अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी जो आप फुलफिलनेस की बात कर रहे हो उसको, डिजायर को पूरा करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं लास्ट फोर्थ जो हमारा त्रिकोण था वो है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण है 4, 8 और 12 का। अब मोक्ष का मतलब क्या, एक तरीके से आप ये समझते हो कि जिंदगी का त्याग, जिंदगी से मोक्ष मिल जाना या मेरी, पर मोक्ष कब मिलता है?

0: अनसीन पावर विच यू आर गेटिंग फ्रॉम गॉड और यूनिवर्स। तो जब आप इस फोर्थ हाउस में सबसे ज्यादा एक्टिव हो, फोर चार आठ और बारह जब आपका सबसे ज्यादा एक्टिव हाउस है इस कुंडली का, तो जिंदगी का मोटिव है कुछ ऐसी रिसर्च, कुछ ऐसा आध्यात्मिक खोज, कुछ ऐसी चीज की खोज करना जो आपसे पहले किसी ने नहीं करी है, आपको करके इस जीवन का मोटिव पूरा करना है। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक भटक रही है उस भेड़ चाल में। जैसे मैं कहूं कि एक डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर है, तो वो कहेगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने ताकि वो मेरे हॉस्पिटल को संभाले।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ वो अपने बेटे को उसके कर्मों से नहीं पकड़ रहा है, वो अपनी एक जिद को थोप रहा है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसी स्थिति में वो बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा पर वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करेगा। एक समय आने के बाद में उसको वो पाथ बोरिंग लगेगा कि यार मेरी जिंदगी का तो मोटिव ही नहीं है। फिर क्या होता है, जब जब सब कुछ काम हो जाता है तब जाके वो बोलता है यार अब मेरे को धर्म में जाना है, मुझे अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना है। फिर वो आध्यात्मिक योगा मेडिटेशन की तरफ भटकता है, अपनी मस्तिष्क की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, तो वहां जाकर के उसको फिर अपना मोटिव मिलता है। तो हम बाय बर्थ से अगर सपोज करो कि मैं अगर बच्चे को सीधा ये ना कहूं कि तुम्हें हमेशा फोर्थ क्लास का ही लेसन देना है, तुम्हें हमेशा फोर्थ क्लास का ही चैप्टर देना है, मैं इसको ये कहूं कि हर साल तुम्हें एक नया नया क्लास ज्वाइन करना है और नए नए चैप्टर को सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, और जब तुम ग्रेजुएशन में आ जाओगे तब तुम्हें किस फील्ड में जाना है तुम डिसाइड करो।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ हम बाय बर्थ से ही बच्चों को एक ही बात बोलते हैं, मैं डॉक्टर तुम भी डॉक्टर बनोगे, मैं इंजीनियर तुम भी इंजीनियर बनोगे, मैं लॉयर तुम भी लॉयर बनोगे।
1: बिल्कुल।
0: वापस ये पॉइंट आकर के कर्मों पर आके बैठ जाता है
1: जी,
0: कि आपकी डेस्टिनी ने, मतलब डेस्टिनी एज ए मदर आपको मिली और मदर डेली आपके सामने थाली लाके रख देती है खाने की कि बेटा खा ले। एक बार मदर हाथ से खिला देगी, दो बार खिला देगी, एक एज तक खिला देगी, पर एक एज के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको खुद खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मदर ने तो डेस्टिनी परोस के दे दी कि भैया खाने की थाली बना दी है खा ले, पर उसके बाद तो आपको खानी है ना। तो वो हाथ जब तक उस खाने को लेके आपके मुंह तक नहीं जाएगा, जब तक आप ये कर्म नहीं करोगे तब तक वो खाना आपके स्टमक में नहीं जाएगा और उसके न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगी।
1: बिल्कुल।
0: सेम बात होरोस्कोप कहती है कि अगर एक समय विशेष आपकी लाइफ में हम इंडिकेट कर रहे हैं, एक समय विशेष हम आपकी कुंडली में दिखा रहे हैं कि इस समय विशेष को आप अपनी लाइफ में प्रॉपर चैनल करते हुए, प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए अगर यूज करते हैं तो आप उस लाइफ को बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को एक शनि की महादशा है
1: जी।
0: आज स्थिति क्या हो रखी है मार्केट के अंदर में कि शनि राहु केतु मंगल के नाम से लोगों को हवा बना के डराया जाता है।
1: बिल्कुल। बहुत डराया जाता है जी,
0: जी जी। और जितना डराया जाता है उतना ज्यादा क्लाइंट पैसा निकालता है।
1: करेक्ट।
0: तो एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया कि डराओ और पैसा निकलो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका किसी पर्टिकुलर ग्रह से कोई पर्सनल ग्लिच या दुश्मनी है जो वो आपको ही परेशान करेगा? ऐसा नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: ग्रह का आपसे कोई पर्टिकुलर ग्लिच या दुश्मनी नहीं है, वो तो आपके कर्मों के अनुसार आपको किस हाउस में, किस राशि में, किस डिग्री में, किस नक्षत्र में मिला है, ये आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे उन्होंने डिसाइड किया। आपका जब बर्थ हुआ था उस समय जो स्काई का मैप था, जो आकाशीय मानचित्र था, वही तो आपकी कुंडली है
1: जी।
0: और वही कुंडली आपको मिली है कि आपको भुगतना है। अब आपको ये पता है कि यार शनि मेरे को नीच का मिला है, तो नीच का शनि है, तो क्या आप अपनी कुंडली से किसी ज्योतिषी तांत्रिक कोई उपाय किसे क्या उस शनि को निकाल के बाहर फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते, वो वहीं रहेगा जब तक आप जिंदा हो। आपको आपको उसके साथ में जीना आना चाहिए, आपको उसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: कि मुझे अगर शनि नीच का मिला है तो अब इस नीच के शनि के रिजल्ट्स मैं पॉजिटिव कैसे लाऊं, तो मुझे क्या करना है? सिंपल सी बात है, मुझे अपने कर्मों को उस ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां मेरे पास में अकाउंट में बददुआओं से ज्यादा दुआएं इकट्ठी हो जाए।
1: करेक्ट।

0: जितनी बुजुर्ग लोगों की सेवा करेंगे, जितनी बुजुर्ग लोगों की दुआएं इकट्ठी करेंगे, आपकी जो पास्ट लाइफ की जो एक कनेक्टिविटी थी फ्रॉम सिंस एंड प्रॉब्लम्स, वो कम होते होते अब वो न्यूट्रल होकर के एक टाइम पे वो पॉजिटिव पाथ में चली जाएगी। तो जब हम बात करते हैं डेस्टिनी और फ्री विल की, तो फ्री विल तो को हर इंसान को मिलती है, पर वो फ्री विल को भी एक यूज करने का तरीका होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इस इंडिया के एक टाइकून, मैं नाम नहीं लूंगा, एक टाइकून बिजनेस फैमिली को देख लीजिए। ठीक है, फादर ने एक बहुत डाउन टू स्टेप एक ग्रोथ करके एक टॉप इंडिया के टॉप मतलब इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को पहचान बना करके अपना सारा बिजनेस दो बच्चों को दिया।
1: करेक्ट,
0: सेम दिया, सेम चीज थी, सेम ब्रांड दिया, सबको इक्वली दिया।
1: करेक्ट,
0: एक इंसान ने उसको जवाबदारी और जिम्मेदारी से नियम अनुसार धीरे धीरे करके संभाला।
1: बिल्कुल,
0: और एक इंसान रातों रात अमीर होने के लिए अपनी जो अपन कहते हैं ना चद्दर से पांव ज्यादा फैलाने वाली बात, वो फैला करके अपने भाई से ज्यादा जल्दी अमीर बनने के लिए प्रोग्रेस करी।
1: करेक्ट,
0: तो जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर में क्या होता है कि जब आप कोई द्वेष भावना या किसी चीज से लेके चल रहे हो तो आपको रिटर्न बैक मिलता है। और एक ही फैमिली से जब हम कहते हैं कि आपका फ्री विल, तो आपको यही मिला था कि दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे।
1: बिल्कुल,
0: एक ही परिवार में पैदा हुए थे, दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे, पर एक का सिल्वर स्पून तो आज भी कायम है, दूसरे का सिल्वर स्पून जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों को, अपने लाइफ पाथ को, अपने प्लेनेटरी वॉइस को, लैंग्वेज को नहीं समझा, और वो चाह रहा था कि मैं प्लेनेट को चलाऊंगा, जबकि प्लेनेट कह रहे थे हम तेरे को चलाएंगे।
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हमें समझाया कि कैसे सच में अगर भगवान सब कुछ आपको दे देगा तो आप ना उनका स्मरण करेंगे, और फिर तो जीवन है ही क्या, फिर ये जीवन जीवन रहेगा ही नहीं, और आप क्यों ही कुछ करेंगे जीवन में। तो वो कर्म आपको कर्मठ बनाने के लिए, आपको उस पाथ पर लाने के लिए भगवान ने वो 1% अपने पास रखा है, और 99% आपको दिया है जिसमें आपकी बुद्धि है, आपके कर्म करने की शक्ति है, और आत्मा है, मोटिव्स हैं। तो अगर उन सबको हम सही तरीके से एक साथ इस्तेमाल करें और सही डायरेक्शन में बढ़ें तो वो 1% भी आपका हो सकता है आपके कर्मों से। और बाकी डेस्टिनी तो है ही, वो अपना रोल प्ले करती
0: इसमें
1: है।
0: जी, इसमें आपको एक छोटा सा एक शास्त्रों का एक श्लोक आता है
1: जी,
0: अहम ब्रह्मास्मि।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए कि भगवान ने तो बोला है मैंने हर इंसान को ब्रह्मा बनने की शक्ति प्रदान कर रखी है, उसको अपने सातों चक्रा और अपनी कुंडलिनी पे वर्क करना है।
1: ठीक
0: है, सब कुछ एनर्जी आपको दे रखी है, आपके पास में वो अवचेतना है जिससे आप उसको चेतना बना करके, आपसे एक लाख किलोमीटर दूर भी कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको आप अपनी टेलीपैथी से अपनी एनर्जी आप एक्सचेंज करके उसको अपनी याद दिलवा सकते हो। ठीक है, ये सब ऊर्जा भगवान ने आपको भी दी है। पर मैं अगर ये कह दूं कि भगवान ने तो मुझे ब्रह्मा बना रखा है, मैं तो ब्रह्मा हूँ और मैं तो इसको फ्री विल लेके चलता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। वो ऊर्जा एक दिन खत्म हो जाएगी, अगर दी भी है और अगर मैं उसको कंटिन्यू एक्टिव नहीं रखूंगा, जैसे सेल को मैं अगर चार्ज नहीं करूंगा तो वो सेल भी डिस्चार्ज होकर के खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मेरी अगर चेतना को मैं डेली एक्टिव नहीं करता हूं तो ये एनर्जी मेरी एक दिन आगे खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने आपको ताकत तो दी है, अब जब तक आप कर्म करके उस ताकत को एक्टिव नहीं करोगे, उसको इनलाइटेड नहीं करोगे, तब तक ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है, आप इंसान भी नहीं बन पाओगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक जानकारी आपके साथ हमें साझा हो रही है। हमारे श्रोतागण आज बहुत कुछ इस एपिसोड से लेके जाएंगे, मैं ये यकीन रखती हूँ, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आगे चलने के लिए। पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं, गीत सुन लेते हैं खूबसूरत सा, और फिर हमारे आखिरी सेगमेंट पर चलेंगे जहाँ पे मैं आपसे कुछ बेसिक रेमेडीज की बात करना चाहूंगी और एनर्जी एक्सचेंज की बात करना चाहूंगी कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं सर सबके बीच। पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, फिल्म सौतन।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, जैसे जिंदगी का कोई फलसफा हो। आगे चलते हैं राज सर, आप जब इतने सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, अगेन मैं वापस कहना चाहूंगी कि आपने 1,00,000 से भी ऊपर कुंडलियां आज तक देख ली हैं इन 2 दशकों में, तो इतने लोगों से जब आप कनेक्ट होते हैं, हर लेवल पे कनेक्ट होते हैं, तो आपकी एनर्जी कैसे डिप्लीट होती है और उसको आप कैसे बैलेंस्ड रखते हैं, और ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है जिसके बारे में आपने हमें बताया, वो किस तरह से वर्क करता है, और जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उन्हें क्या सोचना चाहिए इसके बारे में, किस तरह से इस चीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़ रहे हैं तो वो एक एक कॉर्ड कनेक्ट हो रही है, एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और उसको वैल्यू देना, उसको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बात करें।
1: जी मैम, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि आपने जो शब्द कहा इसमें मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट ये था कि पहले आपको ध्यान होगा ऑर्कुट चलता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑर्कुट चलता था, ये फेसबुक तो बाद में आया, ऑर्कुट चलता था ये, तो ऑर्कुट और उसी समय याहू के एक ग्रुप चलते थे, याहू पे ग्रुप हुआ करते थे चैट के,
0: राइट,
1: ये करीबन 2004-2006-2007 की बात है जब करेक्ट, समय ये होते थे,
0: करेक्ट,
1: तो उस समय मैं प्रैक्टिस करने के लिए इन ग्रुप्स के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में होते थे जिसके अंदर में मतलब थाउजेंड्स के अंदर में लोग भाग होते थे
0: जी,
1: तो हम मैं उसको फ्री ऑफ चार्ज उनको मैं कंसल्टेंसी और रीडिंग दिया करता था। और मेरे को जब मैं एक इंसान को मैं जैसे दे रहा हूं, आज मैंने आपको एक रीडिंग दे दी, कल आप दूसरा नाम बदल करके फिर आ जाते हो,
0: बताइए,
1: और फिर वही होती है, और जैसे ही मैं अपने सॉफ्टवेयर में डिटेल डालता हूं तो मुझे पकड़ में आ जाता है कि यार ये इंसान तो कल भी मेरे पास में आया था या कुछ दिन पहले भी आया था और ये अलग नाम से आया था,
0: बताइए।
1: आप अब मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, आप सोचो क्या वाकई में मैं सेम होनेस्टी से प्रिडिक्शन कर पाऊंगा इस चेतना के साथ में कि तुम मेरे साथ में छल कर रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: सेम सिचुएशन
0: जी,
1: सेम सिचुएशन हुई 2006-07 से लेकर के 2010 तक, जब मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें करीबन 60,000 आदमी उस समय कनेक्टेड थे और डेली मैं प्रिडिक्शन करता था
0: जी,
1: है ना, फ्री ऑफ चार्ज, मतलब मेरे को एक था कि रोज कम से कम 100 हॉरोस्कोप को मेरे को देखना है और मेरे को रोज मेरे को यहाँ करना है, और यही मेरे पास में एक डेटाबेस इकट्ठा करने का एक जरिया था
0: जी,
1: जिस आप हॉरोस्कोप की बात करते हैं, मेरा हॉरोस्कोप का डेटाबेस कलेक्शन जो है वो 1,00,000 से ज्यादा हॉरोस्कोप की जो डिटेल्स है ये सब मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जब हॉरोस्कोप रीड करे थे कस्टमर से मिलकर के, अब प्रोफेशनली जो मेरे पास में आई, मेरे पास में इसलिए मैं रिसर्च बेस पे जा सकता,
0: राइट,
1: तो जब मैं देखता हूँ, अच्छा वहां पे क्या, वहां पे भी फ्री ऑफ चार्ज देता था, ऐसा नहीं था वहां पे कोई चार्ज करते
0: जी,
1: तो आपको मैंने हॉरोस्कोप रीड कर दिया है, अब आपको एक नया प्रॉब्लम आ गया, कल फिर आप आए, अब आपके ही मैं कंटिन्यू रीडिंग दूंगा, तो जो पीछे जने बैठे हुए हैं और भी जो बाकी के 55,000-60,000 जो जने बैठे हुए हैं उनका क्या, तो इस कंप्लेंट को निकालने के लिए पता है मैंने एक ट्रिक लगाई थी
0: जी,
1: एक ट्रिक लगाई थी
0: जी,
1: कि कोई भी जना जिसको अर्जेंसी है, जिसको जल्दी और उसको ब्रीड करानी है, वो एक किसी भी गौशाला अनाथ आश्रम वगैरह की एक रिसिप्ट ला करके यहाँ पे मुझे या वो पेस्ट कर दे ग्रुप में या मुझे पर्सनली शेयर कर दे, मैं उसको पहला नंबर दूंगा।
0: वाओ वाओ,
1: ठीक है, आप विश्वास करेंगे उस 60,000 में से एक सिंगल आदमी
0: बताइए
1: ने नहीं किया
0: 60,000 जी,
1: उसमें लिखा क्या, अगर हम नकली इंटरनेट से अगर रिसिप्ट बना के दे देंगे तो क्या कर लोगे, ये रिप्लाई आए उस मैसेज के ऊपर, मैं आज भी ये मैसेज वहां पे पेस्ट है उस ग्रुप पे, उस पर रिप्लाई क्या आया, हम तो अगर फर्जी टिकट बना के दे देंगे, मैंने कहा तुम कर्म तो करो, तुम इतना भी कर दो,
0: इतना ही कर दो,
1: तो भी मैं तुम्हें फ्री रीडिंग दे दूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उस समय मेरे को एक एहसास हुआ कि मैं जो नॉलेज का एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ किन लोगों के साथ कर रहा हूँ, क्या ये लोग इसकी वर्थ भी रखते हैं, क्या
0: ये पात्र हैं, कुपात्र हैं कि सुपात्र हैं जी,
1: है ना, तो उस समय मेरे को ध्यान आया कि भली तू अपनी इच्छा से दे, पर एक बार देने की क्षमता तो रख, श्रद्धा तो रख, पर तभी मैं कुछ दूं। आजकल हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि मोस्टली जितने भी सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में, एप्लीकेशंस पे एक चल रहा है कि फ्री रीडिंग ले लीजिए, फ्री रीडिंग ले लीजिए, सब फ्री रीडिंग। जब आप एक एक्सपर्ट के पास में कंसल्टेंसी लेने जाते हो और इस नॉलेज से जाते हो कि सिर्फ 5 मिनट में जब तक फ्री मिल रहा है तब तक ही इससे बात करनी है, जैसे एक समय खत्म हुआ और मुझे निकल लेना है,
0: बिल्कुल
1: आप यहाँ पे अपने कर्मों को खराब कर रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सामने वाले ने अपने ज्ञान का एनर्जी एक्सचेंज किया था आपके साथ, आपने उसकी काबिलियत, आपने उसके ज्ञान, आपने उसके नॉलेज की वर्थ नहीं समझी, और आप अपने मकसद से इससे 5 मिनट फ्री लेने के बाद में दूसरे के पास सबक पड़े।
0: बिल्कुल,
1: अब एक ने आपको कहा आपका काम हो जाएगा, दूसरे ने कहा नहीं होगा, अब आप भी कंफ्यूज हो कि वो सही है या ये सही है।
0: करेक्ट,
1: आपको अगर अपने फ्यूचर पे अगर रियली वर्कआउट करना है तो आप क्षमता रखें कि अगर कोई इंसान अपने ज्ञान को, अगर आज मैं 25 साल से नॉलेज में रखता हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरे पीछे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पीछे भी कोई है, तो मैं उनको भी ध्यान में रखूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि यार सब फ्री में है, मिला हुआ है ज्ञान, उसको बांटते जाऊं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी जो मेन क्लासिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जो मेन किताब है क्लासिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी को हम कहते हैं, वो है वृत्त पाराशर होरा शास्त्र
0: जी।
1: उसके जो फर्स्ट अध्याय है उसके अंदर में पेज पे क्या होता है कि एक तो नक्षत्र मणि मत बनना, ठीक है, दूसरा ये ज्ञान उस इंसान को मत देना जिसको इसकी वर्थ नहीं पता हो, जिसको इस पे विश्वास ना हो, जो सिर्फ इसका उल्लास या मजाक करने आया है।
0: बिल्कुल, उल्लास ही है 5 मिनट में जानने की कोशिश करना। बिल्कुल
1: मैम, मुझे 15 मिनट मतलब एक होरोस्कोप से उसके पास्ट और प्रेजेंट को मैच करने, क्योंकि इंसान को भी समय चाहिए होता। मैंने बोल दिया 2011 में आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ था क्या, अब आप खुद 5 मिनट मेरे खा जाओगे 2011 को याद करने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि लोग क्या कहते हैं, अरे पास्ट छोड़ो फ्यूचर की बात करो। अरे भाई, जब मैं तेरा पास्ट नहीं रीड कर पा रहा हूँ, तेरा फ्यूचर क्या रीड करूंगा,
0: कैसे रीड करूंगा। यस यस यस,
1: ये फर्क होता है
0: जी,
1: कि हम जब क्वालिटी ऑफ रीडिंग देना चाहते हैं, जब हम किसी इंसान को रियली एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देना चाहते हैं, वहां पे इंसान उस चीज की वर्थ नहीं करता है, वो भटक रहा होता है उस पास्ट रीडिंग के लिए, जहां पे सिर्फ कुंडली खोली, लगन देखा और प्रेडिक्शन मार दिया।
0: करेक्ट,
1: ना दशा देखी, ना डिग्री देखी, ना कुछ देखा, पड़ा पट क्या काम है, ये वचन ठीक हो जाए।
0: जी जी जी,
1: तो ये है। अब आपने पूछा उपाय के बारे में
0: जी।
1: देखो मैम, दुनिया क्या सोचती है और दुनिया क्या करती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं
0: जी,
1: ठीक है। मैं अपना आपको से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
0: हाँ जी,
1: कि इन 20-25 सालों में मैंने एक चीज को समझा है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का आपसे कोई पर्सनल ग्लिच नहीं है, कोई पर्सनल आपसे प्रेफरेंस नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करेगा।
0: राइट,
1: ठीक है, जो कुछ है आपका, आपका यूनिवर्सल एक कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक बुक है, जिसके अंदर में आपको पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है, जो आपको भुगतना है भुगतना है।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरा एक ही बात कहना है, कोई ग्रह अच्छा नहीं, कोई ग्रह खराब नहीं, कोई भाव अच्छा नहीं, कोई भाव खराब नहीं, ये आपके ऊपर में है कि आप उस भाव को, उस ग्रह को कैसे यूज करते हो, कैसे उसको अपनी लाइफ पाथ में यूटिलाइज करते हो।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। अब सेम बात अगर मैं बोल रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप डेली शिवजी पर जाओ, चल चढ़ाना, आपका काम हो जाएगा, तो ये भी एक वह झूठ हो गया। जो मैं एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा बुरा नहीं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि शिवजी आपका सब कुछ कर देंगे।
0: करेक्ट करेक्ट
1: जी, तो मेरा एक ही मानना है, एक होती है हमारी निष्ठा, एक होती है हमारी किसी भगवान के प्रति आस्था, और उस निष्ठा और आस्था के अनुसार अगर मैं कोई डेली की जो हमारी दिनचर्या थी, सूर्य को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना, जीवन में जल तत्वों को न्यूट्रलाइज करना, तो ये तो हो गए मेरे दैनिक दिनचर्या के भगवान और आस्था के कनेक्शन, जो नेचुरल वे में मेरे कर्मों से जुड़ रहे हैं।
0: करेक्ट, बिल्कुल, यहाँ पे ज्योतिष उपाय जी,
1: ये हाँ, ये कोई ज्योतिषी उपाय नहीं हुआ,
0: नहीं है, ये दिनचर्या को बदलना है।
1: ये आपका एक भौतिक, आपके जिस परमात्मा को आपने पूजा है, जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, जिस परमात्मा को आप आपका परिवार मानते हो, उसको ग्रेटिट्यूड करने का तरीका है।
0: करेक्ट,
1: कि आपने जन्म दिया, मैं धन्यवाद हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ, स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। पर अब मैं कहता हूँ कि ज्योतिषी जाके बोलते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो ऐसे अगर शादी होगी होती तो दुनिया में कोई कुंवारा ही नहीं रहता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब यहाँ आती है बात कि संकल्प, आप कैसे उस चीज को आप शादी में कन्वर्ट करेंगे। उपाय कर रहे हैं, उपाय करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जल नहीं चढ़ाना, शादी नहीं होगी। मैं किसी भी इंसान को ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो शादी नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ जल चढ़ाने का मकसद तो बताओ, क्यों चढ़ा रहे हो, क्या चाहते हो। तो उसके पीछे हमारे शास्त्रों में संकल्प लेना बताया गया कि आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम, अपना गोत्र, आप जा रहते हो वहां का स्थान बताते हुए भगवान को धन्यवाद करो, उनको को अपनी कृतज्ञता दिखाओ कि मैं आज आपके श्री चरणों में आया हूँ, आई हूँ, और मेरी एक मनवांछित अभिलाषा है कि मुझे एक सुयोग्य पत्नी या सुयोग्य वर प्राप्त हो
0: जी।
1: और आप मेरे इस जल को स्वीकार करके मुझे आशीष प्रदान करें
0: जी।
1: ये बताओ तो सही, सिर्फ जल चढ़ा दिया, हाँ मैं तो 16 सोमवार का व्रत किया और जल चढ़ा दिया, तो इससे पति या पत्नी नहीं मिलने वाले।
0: बिल्कुल,
1: आपको भगवान को अपनी निष्ठा बतानी है, मैं किस कार्य विशेष को लेकर हूँ। तो वहां पे कोई भी उपाय, रेमेडी यूनिवर्सल नहीं हो सकती है, हर इंसान को अपना अपना काम करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार लोग आपने देखा होगा मंदिरों में दीपक लगे हुए होते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल
1: ठीक है। अब उस दीपक के अंदर में कितने तरीके तेल मिले हुए हैं उसको आप समझो। आपने छायादान का नाम सुना, छायादान?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो छायादान क्या होता है, कांसे की कटोरी में तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके उस तेल का दान करना। इसको हम शनि का दान के रूप में कहते हैं कि जिसको शनि लगा हुआ है, शनि की छाया
0: जी।
1: अब एक इंसान ने ये छायादान करके उस दीपक में, जो अखंड दीपक जल रहा है उसमें ये तेल डाला, ये बोल करके कि मैं शनि की शांति हेतु ये तेल डाल रहा हूँ।
0: करेक्ट।
1: एक इंसान ने उतारा करके उस दीपक में तेल डाला कि मेरे तमाम शारीरिक और शत्रुओं का संहार हो, और मैं ये उतारा करते हुए किसी के परिवार वाले ने करके दिया और जाके उसने वो तेल उसमें डाल दिया
0: जी।
1: दूसरा इंसान गया कि मैं अपने धर्म अनुसार आज शनिवार है तो मैं अपने घर से तेल लाया हूँ, भगवान आपके चरणों में चढ़ा रहा
0: हूँ।
1: अब यार तीनों जनों की निष्ठा अलग अलग थी पर मिक्सअप होके कहाँ गया, उस एक तेल के अंदर में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, अगर तुम पर्टिकुलर कोई निष्ठा से, कोई अपनी कोई इच्छा पूर्ति से या किसी कार्य विशेष के लिए कर रहे हो तो अपना इंडिविजुअल दीपक लगाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मीठे तेल के साथ में सरसों का तेल या कड़वा तेल मिक्स मत करो। एक जना मीठे तेल का,
0: जी जी जी,
1: एक जना मीठे तेल का दीपक लगा रहा है, तुम उसमें सरसों का या कड़वा तेल लाके नीम का तेल मिक्स करके चढ़ा रहे हो शत्रु के साथ, नाश है तू, तो ना उसका भला होगा ना तुम्हारा भला,
0: ना तुम्हारा भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यहाँ पे जो उपाय वाली बात करता हूँ, मैं उपाय के लिए एक ही बात कहता हूँ, यूनिवर्सल थंब रूल कुछ नहीं है, ज्योतिष में थंब रूल नाम की कोई चीज नहीं है
0: जी।
1: एक इंसान के लिए 6, 8, 12 हाउस में बैठे हुए प्लेनेट खराब हो गए, वही दूसरे इंसान के लिए जब ये राशि परिवर्तन हो जाएंगे, मतलब एक राशि में दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ये जब हो जाएगा तो वहां हो जाता है विपरीत राज्यों। तो वह विपरीत राज्य क्या होता है कि फकीर के घर में पैदा हुआ इंसान भी सक्सेस पाएगा। तो हम मोस्टली हम ये देखते हैं कि जितने भी ये राजनेता लोग हैं या ऐसे लोग जो विदेश में जाकर के अच्छी सक्सेस प्राप्त करें, उनकी कुंडली के अंदर में विपरीत राज्यों का अच्छा बना हुआ
0: जी।
1: तो एक को एक के लिए तो खराब हो रहा, दूसरे के लिए अच्छा हो रहा। तो यहाँ देयर इज नो थंब रूल, आप मुझे कोई भी एक रूल बता दो ज्योतिष का, मैं आपको उसका अदर साइड बता दूंगा कि मैम ये तो हेड है, ये इसका टेल है। एग्जांपल आपने कहा सूर्य, सूर्य उच्च का, सूर्य उच्च का मींस ए पर्सन हु हैव ए ह्यूज कॉन्फिडेंस लेवल, ए पर्सन हु हैव ए वेरी सेल्फ रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल शिप।
0: करेक्ट।
1: अब इसका बैक साइड क्या हो गया, एक पर्सन जो बहुत इगोइस्ट है, घमंडी है, और वह अपनी ईगो और घमंड के आगे सब कुछ अपना नाश कर देता अगर उसने अपनी ईगो घमंड को कंट्रोल नहीं किया तो।
0: बिल्कुल।
1: सूर्य वही है, सूर्य उच्च का उसके भी है, सूर्य उच्च का उसके भी है, एक ने उस सूर्य को यूज किया इंटेलेक्चुअल शिप में अपनी चेतना को जगाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। दूसरा आदमी, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ही क्यों करूं, वहां पे उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो आपको समझना है कि सबसे मेरा जो एक यूनिवर्सल उपाय जो मैं करता हूं या जो मैं अपने आप को करता हूं, मैं 5 मिनट आत्ममंथन करता हूं, अपनी हर उस परमात्मा, उस परम ब्रह्म, परम शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं, जिन जिन से मैं कनेक्टेड हूं, जिन जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन जिन्होंने मुझे इस राह से अपने आप को अग्रसर होने के लिए मुझे एनहांसमेंट किया, मुझे बताया कि भाई तू बिजनेसमैन नहीं करेगा, तू इस बात पे आ, यहाँ सक्सेस मिलेगी। तो जिसने भी मुझे किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का। सबसे बड़ा आपको जो हम जो भटक रहे हैं, हमारी आदि प्रॉब्लम्स की वजह है, हम हमारे पितृ पूर्वज कुलदेवी और सती को भूल जाते हैं। उन लोगों को हम कभी भी याद नहीं करते हैं और भटकते रहते हैं। हर एक ज्योतिषी बोल रहा है तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे कुल देवता का दोष। अरे कोई किसी पितृदेवता, किसी कुल देवता की तुमसे कोई पर्सनल ग्लिच नहीं थी, प्रॉब्लम एक ही है, तुमने उनको परेशान किया या तुम उनको भूल चुके हो, तुम उनको याद नहीं करते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तुम उनको नमन करो, तुम उनके नाम का दीपक लगा दो, उनको सिर्फ ये एहसास कर दिलवा दो कि भाई मैं कल भी आपको याद करता था, आज भी करता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, आपके 5 पकवान नहीं चाहिए उनको।
0: बिल्कुल,
1: आप भगवान को रोज भोग लगाते हो, आपके भगवान के बुक, वो आपके भोग के बुके नहीं है, वो आपके सिर्फ
0: भाव के
1: जो आप भाव के बुके हैं कि यार ये खाता बाद में, पहले मुझे भोग लगाता है।
0: जी
1: ये निष्ठा चाहिए होती है। तो सिंपल सा है, आत्ममंथन करें। मैं पब्लिक को देखता हूँ, एक ज्योतिषी ने बोला तुम 108 बार हनुमान चालीसा करना, दूसरे ने बोला तुम गीता पढ़ना, तीसरे ने बोला तुम दुर्गा के 108 नाम का जाप करना, चौथे ने बोला शिव जी का जाप करना। वो आदमी बेचारा घंटे दो घंटे तो पूजा पाठ में लगा
0: रहता करता है। जी जी,
1: अब उसमें क्या रहता है, वो कहता है मैं शिव जी को भी मनाऊंगा, मैं दुर्गा माता को भी मनाऊंगा, मैं हनुमान जी को भी मनाऊंगा, मैं सबको मनाऊंगा। तो यहाँ कोई मनता मनता नहीं है, एक मन जाता है दूसरा नाराज होता है।
0: जी,
1: क्योंकि उसका दिमाग क्या आ रहा है, यार शिव जी की तो पूजा हो गई, अब इसके बाद हनुमान जी की करूंगा, हनुमान जी के बाद में दुर्गा की करूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो कैलकुलेशन है सारा। जी,
1: वो घड़ी देख करके ये करूंगा,
0: भाव।
1: अरे ऐसा नहीं होता है।
0: जी,
1: तुम 5 मिनट सिर्फ किसी भी एक भगवान को पकड़ लो, बोल दो कि मैं तो सिर्फ आप ही की शरण में आ गया हूँ, मेरे को और कुछ नहीं पता है, जो कुछ करना है आपको ही करना। एटलीस्ट आपके बॉस को ये तो पता है कि भैया ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे ही इसको प्रमोशन दिलाना है।
0: बिल्कुल,
1: मैं एक ऑफिस में हर इंसान को चापलूसी करता हूँ, चपरासी या तू सर को बोलना ना यार मेरा प्रमोशन करा दे।
0: जी,
1: उसके ऑफिस ऊपर वाला या तू सर को बोलना ना मेरा प्रमोशन करा दे। तो सर एक दिन आके बोलेंगे यार ये इतनी चापलूसी की जैक लगवा रहा है, डायरेक्ट मेरे पास तो नहीं आया, क्यों करूं मैं इसका प्रमोशन।
0: बिल्कुल,
1: तो डायरेक्ट आप अपने परमात्मा से अंतर ध्यान करें, उनसे आत्ममंथन करें, उनको धन्यवाद दें, उनको ग्रेटिट्यूड करें। ये सबसे बड़ा है, 5 मिनट ही निकालें, पर निकालें उस 5 मिनट में सिर्फ आप हो और आपका भगवान।
0: करेक्ट, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये एपिसोड सर, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप अपना इतना समय निकाल के, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके हर मिनट की वैल्यू है और किस तरह आपने एक घंटा निकाला होगा हमारे लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इतनी सही, सटीक, सरल तरीके से सारी बातचीत साझा करी कि हर एक जो श्रोता आज हमें सुन रहा है, जिसको आज से पहले ज्योतिष के बारे में नहीं भी पता हो, वो आज कुछ हमें सुन के कुछ लेके जाएगा और अपने जीवन में कुछ चेंज कर पाएगा। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद राज सर आपका।
1: मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा लास्ट में, आपने इतना कुछ बोल दिया।
0: जी,
1: मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मैंने अगर अपना कुछ ज्ञान अगर आपके यहाँ शेयर किया है तो यही ज्ञान मुझे रिटर्न होकर के किसी न किसी रूप में और कुछ सीखने को मेरे को एनहांस करेगा। तो मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि अगर मैंने यहाँ कुछ शेयर किया है और इसमें से मेरे से कोई 2-4-5 जने भी रियल एस्ट्रोलॉजी को समझ सकेंगे, जो भटक रहे थे, जिनका विश्वास उठ गया था, वो उनका इसमें भला होगा।
0: बहुत बड़ा,
1: वही मेरा
0: सर आपका। जी,
1: वही मेरा पुरुषार्थ होगा, वही मेरा प्रारब्ध होगा।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है आप, और मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको एक्सप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जिंदगी अनप्लग्ड का आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आचार्य राजकुमार बिरला जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। कि उन्होंने हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल, इतनी प्रेरणादायक बातें साझा करी। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आपसे अब लेती हूं इजाजत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी को पूरी तरह से जीते रहिए। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ सिर्फ SN रेडियो पर। नमस्कार।

0: रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं, जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता, चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए, अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवं अस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रंस ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

साथ में चलते हो चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़िया चलती है, जब चैन से कोई सोता है, जिया ओ

0: दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाक तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

देवरन जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

கட்டாரி.

0: तो दिल मिल गए, दिए जल गए हजारों।
1: आज तू

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवरन साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

मौसम, ए, आ,

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुमारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: दुनिया, अरे किधर है रे तू?

महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। आइए, हो जाए यही गीत।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಳಗನೇ.

0: जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
0: सच भाई हुए।

ಮಾಮಾ ಸರಿಗಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಪಾಪ ಮಾಮಾ ಓ ಮಾಮಾ.

महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।
1: ओ, हो, हो, हो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है मगर रहा नहीं जाता। मोहब्बत हो गई है इस कदर आपसे, बिना याद किए रहा ही नहीं जाता। किसी ने पूछा, सफर मायने रखता है या मंजिल? मैंने कहा साथ। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर, SN रेडियोज और रेडियो टांडिया भील पर मैं हूं आपकी अपनी ही दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं हमारा सबका प्यारा सा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ ही तो है जो मुझे हर वक्त तहरीक देता है, यानी इंस्पायर करता है, हौसला अफजाई करता है। और इसी हौसले के साथ मैं हर बार लेकर आती हूँ आप सभी के लिए जज्बातों का एक अनोखा सफर। दोस्तों, अल्फाज तो एक जरिया है, असली मकसद तो उन छुपे हुए एहसासों को आपके दिलों तक पहुँचाना है। कभी थोड़ी सी खुशी, कभी हल्की सी नमी, तो कभी ढेर सारी यादें। आज इस सफर में सब कुछ शामिल होगा। हम बातें करेंगे, कुछ नज़में और कुछ गज़लें सुनेंगे और दिलों की दास्तान को लफ्ज़ों में पिरोएंगे। तो फिर क्या, अपने दिलों की धड़कनों की रफ्तार को थोड़ा सा थाम लीजिए और तैयार हो जाइए जज्बातों की इस हसीन लहर में डूबने के लिए। आइए मिलकर शुरू करते हैं ख्यालों का ये खूबसूरत सा कारवां, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही दोस्त आरती के साथ अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में आज आपके लिए लाई हूँ एक बेहद मशहूर गजल, जो ओरिजिनली तो मेहदी हसन साहब ने गाई है, लेकिन देखते ढूंढते ये वर्जन सामने आ गया। तो जरा देर ठिठक कर रुक कर बजा के देखा तो फिर वहीं रुक गई, एक लाइन दो लाइन और फिर वो चलती ही रही। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे प्रोग्राम की शुरुआत में अब यही बजेगी। गजल का मिसरा कुछ यूं है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, हर एक सांस में तेरी आहट छुपी है। तुम्हें जो लगा था कि सब खत्म हो गया, वहीं से कहानी हमारी शुरू है। जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। दोस्तों गौर फरमाइए, कह रहे हैं जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। जगा के नहीं रखेंगे, जाग देंगे। तुम्हारी नजरों से चाहे उतर जाऊं, मगर दिल से तुम गिरा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, काइंड ऑफ फ्यूजन म्यूजिक, तो आप भी सुनिए और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये फ्यूजन वर्जन।

दोस्तों, हमारे प्रोग्राम की दूसरी पायदान पर आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और पाकीजगी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहतरमा सुमन कल्याणपुर जी की। 1950 से 1960 की दहाई में उनके सुरों के सफर ने हर किसी को दीवाना बनाया। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत थी उनका क्लासिकल बेस और बेहद नरम और सुनहरी गायकी। और जब ऐसी आवाज को पर्दे पर बयां करने के लिए अदाकारा निम्मी जी मिल जाएं, तो जादू तो होना लाजमी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1961 की फिल्म शमा की। इस फिल्म में निम्मी जी ने शमा नाम की एक ऐसी यतीम लड़की का किरदार निभाया था जो दिल ही दिल में अपने कजिन और फिल्म के हीरो परवेज से बेइंतहा प्यार करती है। परवेज एक शायर है, लेकिन कहानी में तब एक मोड़ आता है जब परवेज को एक अमीर घराने की लड़की रोशन आरा यानी सुरैया से मोहब्बत हो जाती है। तब अपनी मोहब्बत पर किसी और का हक देखकर शमा खुद परवेज और रोशन आरा की शादी करवा देती है। अपने अंदर के इस गहरे दर्द और जलन को छुपाते हुए पर्दे पर निम्मी जी ने जो खामोश अदाकारी की है वो दिलों को रुला देती है। खयाम साहब और गुलाम मोहम्मद जी की मौसिकी से सजी और कैफी आजमी साहब के लफ्जों में ढली ये गजल शमा के उसी इसार यानी सेक्रिफाइस को बयां करती है। तो सुनिए सुमन कल्याणपुर जी की रूहानी आवाज में उस शमा का वो सारा दर्द जो ऐसा जला कि पिघल पिघल कर रूह तक पहुंच गया। गजल का मिसरा कुछ ऐसे है। दुनिया तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, वो मेहरबान नहीं तो कोई मेहरबान ना हो। फिर कहते हैं, अब तो वही सुकून मिलेगा मुझे जहां में, ये संग दिल जमीन ना हो आसमान ना हो जमीन।

आसमान हो, दिल गम से जल रहा है, जले पर धुआं ना हो, मुमकिन है इसके बाद कोई इम्तहान ना हो।

दोस्तों, जज्बातों का ये सफ़र अब एक ऐसे मकाम पर आ गया है जहाँ सुरों के शहंशाह की रूहानी आवाज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। जब भी सच्ची मोहब्बत और वफा की बात होती है तो दिल खुद ब खुद इम्तहान देने को तैयार हो जाता है। साल 1960 की शानदार तारीखी फिल्म बाबर का एक ऐसा नगमा जिसे बेमिसाल शायर साहिर लुधियानवी साहब ने अपने खूने दिल से लिखा और मौसिकार रोशन साहब ने एक बहुत संजीदा धुन में पिरोया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संगीत के मसीहा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सजी इस पुरसोज गज़ल की। पर्दे पर अदाकार थे सोहन कपिला और अदाकारा अजरा के बीच के उस पाक इश्क को रफ़ी साहब की आवाज़ ने तारीखी कर दिया। इस गज़ल की खासियत ही यही है कि जब रफ़ी साहब अपनी मखमली मगर कशिश से भरी अल्फाज में वहशत और खुलूस जैसे अल्फाज

आस को पुकारते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए रफी साहब की पाक साफ आवाज के साथ मोहब्बत की उस गहराई को नापते हैं। गजल का मिसरा कुछ यूं है, सलाम शौक पे रंजिश भरा बयान न दो, सलाम शौक पे रंजिश भरा बयान न दो, मेरे खुलूस को हिरसो हवस का नाम न दो, मेरी वफा की अकीदत का इम्तहान तो लो। फिर कहते हैं, न तख्त ताज न लालो जहर की हसरत है, फिर कहते हैं, मैं अपनी जान भी दे दूं तो एतबार नहीं, कि तुमसे बढ़ के मुझे जिंदगी से प्यार नहीं, यूं ही कहीं मेरी चाहत का इम्तहान तो लो, तुम एक बार मेरी मोहब्बत का इम्तहान तो लो। मोहम्मद रफी साहब, आपकी नजर।

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश को मशहूर एल्बम जो कि गुलाम अली साहब और आशा ताई ने बनाई थी, जिसका नाम है मेराज़े गज़ल, उसमें से लिया गया है। जब गुलाम अली साहब इसकी धुन बना रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर इसमें पूर्वी और अवधी लोक रंग डाला, जिसमें कागा और पवन यानी हवा जैसे खालिस देसी और मकबूल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त आशा ताई थोड़ा हिचकिचाई कि एक संजीदा गजल एल्बम में कागा और पवन जैसे अल्फाज कैसे लगेंगे। तब गुलाम अली साहब ने उन्हें समझाया कि नासिर काजमी साहब ने इन अल्फाजों के जरिए जुदाई के दर्द को बहुत सादगी से पेश किया है। जब आशा ताई ने सावन की मल्हार के साथ इस गजल की रिकॉर्डिंग शुरू की तो स्टूडियो का माहौल बहुत भावुक हो गया। गजल के खत्म होने पर सब म्यूजिशियंस की आंखों में आंसू थे। इसे मेराज़े गज़ल एल्बम की सबसे भीगी गज़ल कहा जाता है। जब आशा ताई अपनी मखमली आवाज़ में सावन के इस दर्द को पुकारती हैं तो गुजरा ज़माना आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। सुनिए इस खूबसूरत मिसरे को। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। और फिर मक्ता अर्ज किया है, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए। लीजिए आशा ताई और गुलाम अली साहब की आवाज़ में, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की बाजे बजी तुम याद आए। शौक फरमाए।

दोस्तों, आज के इस बेहद खूबसूरत सफर को मुकम्मल करने के लिए अब मैं आपको मौसीकी की और अदब के उस मकाम पर लेकर आई हूँ जहाँ लफ्ज खुद तारीख बन जाते हैं। जब हम सुनते हैं ये मिसरा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो हमारा जहन सीधे कभी कभी फिल्म और अमिताभ बच्चन की तरफ चला जाता है या मुकेश साहब की आवाज की तरफ चला जाता है। लेकिन आज अल्फाज से एहसास तक की इस आखिरी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अजीम शायर साहिर लुधियानवी साहब की वो मुकम्मल और असली नज्म जो उन्होंने अपनी मशहूर किताब तलखियां में लिखी थी। इसी नज्म के को जब आप सुनेंगे तब भी आपको इसमें सुनाई देगा कि साहिर साहब जब वो 18-19 साल के थे तो उन्होंने उनको एक पंजाबी लड़की से उनसियत हो गई थी, यानी लगाव हो गया था, जो कि उस वक्त की लाइलाज बीमारी तपेदिक की शिकार होकर गुजर गई। तो साहिर साहब को उसका आखिरी दीदार भी वो नहीं कर सके, मरघट में अंदर जा नहीं पाए, तो उस तड़प का बयान उन्होंने कुछ यूं किया था। ये एक बेहद लंबी, गहरी और फिलोसफिकल नज्म है जिसे राजेश सिंह ने अपनी बेहद रूहानी आवाज़ में बिना किसी फिल्मी तामझाम के उसके असल और मुकम्मल रूप में गाया है। साहिर साहब ने जब ये नज्म लिखी थी तो इसका मिजाज सिर्फ रुमानी नहीं था, बल्कि इसमें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों और समाज के तल्ख दौर का भी जिक्र था। फिल्म में तो सिर्फ मोहब्बत वाले हिस्से को फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से लिया गया था, लेकिन असली नज्म में साहिर साहब लिखते हैं कि इस दुनिया में भूख, गरीबी और बेबसी इतनी ज़्यादा है कि इंसान सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं जी सकता। राजेश सिंह ने इसे खालिस और मुकम्मल अदबी रूप से ही इसको अपनी आवाज़ दी है। ज़रा तल्ख मिसरा गौर फरमाएं। कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, जो देखती मुझे वो निगाहें भी जल गई, अंबर से रिश्ते गेसुए शब्दों भी जल गए, वो दीदा हाय मस्तो पुरफसून भी जल गए, मासूम कह कहूं का तरन्नुम भी मिट गया, झेपी हुई नजर का तबस्सुम भी मिट गया, ये दोपहर की धूप ये वीरान आसमां, तू ही बता कि अब मैं पुकारूं किसे कहां। दोस्तों, आपने इस नज्म का ये वर्जन शायद पहले ना सुना हो, पर आप जब आप इसे सुनेंगे तो सुनकर हैरान भी हो जाएंगे और आंखें नम भी हो जाएंगी। तो आइए सुनते हैं

मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा हम तेरी जुस्तजू है। गुजर रही है कुछ इस तरह ये जिंदगी जैसे, इसे किसी के सहारे की आरज़ू है। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहौल खार जारों से। न कोई ज़्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज़्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफर मगर ही हुई, कभी कभी मेरे दिल

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी में जुट गए होंगे। लेकिन साथियों कुछ बातें याद रखें जो विषय विशेषज्ञ बताते हैं कि जब तक 100 मिलीमीटर बरसात ना हो तब तक हमें अपने खेतों में बुवाई नहीं करना चाहिए। आज का अगर मौसम को देखा जाए, खासतौर पर झाबुआ जिले के मौसम को देखा जाए तो अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और बरसात तो होना ही नहीं है। और 1 जून से अभी तक कुल वर्षा जो हुई है वो 27.3 मिलीमीटर हुई है। तो कुछ खास बातें हैं, यानी कि अभी से हमें इंतजार करना होगा, कुछ हमें तैयारी इसके पूर्व जो होती हैं, बुवाई के पूर्व जो होती हैं उसकी हमें तैयारी करना चाहिए, मेड़ बंधान करना चाहिए, पानी को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, आसपास जो तालाब सूखे पड़े हैं उनका फिर से द्वारा रिचार्ज कराना चाहिए, यानी खुदाई करना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए, कुओं की साफ़ सफाई करना चाहिए। चूँकि पथरीला इलाका है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पर एक सी ज़मीन हमें करवा लेनी चाहिए। तो ये खास बातें हैं, जब तक हमें बोनी का सही समय नहीं आता है, जब तक बरसात अच्छी नहीं होती है तब तक हमें इन खास बातों पर, इन पर अपने खेत पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। खासतौर पर यदि देखा जाए झाबुआ जिले में तो सोयाबीन, मक्का, इस तरीके की खेती अधिकतर हमारे किसान साथी करते हैं। अगर आपको बता दें कि लगभग भारत में 3.6 मिलियन हेक्टेयर से 3.1 मिलियन टन उत्पादन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में सोयाबीन पैदावार करने वाले प्रमुख प्रांत हैं। ये अकेले मध्य प्रदेश में 80% से अधिक क्षेत्रफल है जहां पर सोयाबीन उगाया जाता है, लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन केवल 20 से 25 हजार हेक्टेयर पर ही उगाया जाता है। प्रजातियों की बात करें तो उसमें पीके 472 जो 120 से 125 दिनों में पक्के तैयार हो जाती है। इस पर उपज जो रहती है 30 से 35 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से रहती है। दूसरा बीज जो रहता है वो पीएस 564 रहता है, इसकी अवधि रहती है 115 से 120 दिन। इसमें उपज प्रति हेक्टर देखा जाए तो इसमें 25 से 30 क्विंटल रहती है। तीसरी जो उपज रहती है वो पी के प्रजाति जो रहती है पी के 416 रहती है, जो कि 115 से 120 दिन में आ जाती है। प्रति क्विंटल उपज की बात करें तो ये भी 30 से 35 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से पैदावार होती है इसकी। पी के 327 जो अवधि जो रहती है 100 से 110 दिन की रहती है। इसमें उपज की अगर बात करें तो इसमें उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। पूसा 16 110 से 115 दिन में तैयार होती है, 25 से 35 क्विंटल प्रति क्विंटल जो रहती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होती है। पीएस 1042 120 से 125 दिन में आती है ये फसल और 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज होती है। जेएस 335 जो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है, इसकी उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। जेएस 7244 गौरव के नाम से जाना जाता है, 106 से 110 दिन में तैयार होती है, 20 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होती है। पीके 262 120 से 135 दिनों में तैयार होती है और 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये उत्पादन होता है। बुवाई का समय आपको पता है कि मैदानी क्षेत्रों में 20 जून से 10 जुलाई तक रहता है, पर्वतीय क्षेत्र में 25 मई से 15 जून तक रहता है। चूंकि बारिश अभी ज़्यादा नहीं हुई है तो हमें इंतजार करना है। बीज दर की हिसाब की बात करें तो 75 से 80% अंकुरण वाला लगभग 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर में बोना चाहिए। पंक्ति दर पंक्ति पौधे की दूरी जो रहती है 45 गुणा 5 सेंटीमीटर रखें, बीज 4 सेंटीमीटर गहरा ना बोएं। बीज उपचार अरहर में देखिए, तो बीज उपचार करके ही अपने बीज को देखना है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी साथियों, हमें जो कार्यक्रम के माध्यम से बतानी थी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक रिपोर्ट सुनते हैं और जानते हैं, खासतौर पर देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन से, मौसम के परिवर्तन से हमारे कृषि पर कितना असर पड़ा है, इस पर एक रिपोर्ट हम सुनते हैं। लेकिन विराम के बाद बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान भाइयों बहनों, जलवायु परिवर्तन अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हमें जीवन को बनाए रखना है तो अब धरती को सुरक्षित करना होगा, और अगर हम अभी भी नहीं चेते तो परिणाम काफी दुख भरे हो सकते हैं। तो आइए इसी के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: भीषण गर्मी में आसमान को तकती हमारी निकाहे अमृत तुल्य बारिश का इंतजार कर रही है, जिसमें गर्मी से राहत मिल सके। पिछले कुछ सालों में लगातार तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। इस साल यानी 2022 में पिछले 12 सालों के मुकाबले ज्यादा गर्म हवाएं चली, जिसमें 54% हीट वेव केवल 5 राज्यों में चली है, जिसमे राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। इसके पीछे कई कारण है और सबसे बड़ी वजह है तेजी से वन क्षेत्रों का कम होना। आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में 0.5% ही हरियाली में इजाफा हुआ है, जिसमें हमें तेजी लाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित कर रहा है। हालांकि हम प्लास्टिक प्रबंधन पर काफी जोर दे रहे हैं, लेकिन तकरीबन 12% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पा रहा है। इन सारी वजहों से तापमान में जो इजाफा हो रहा है, उसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। इस साल बड़े तापमान के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। इस कमी को देखते हुए सरकार ने गेहूं निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो खेती में नुकसान की आशंकाओं को कम कैसे करें।
3: देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के अलावा, केवल मानव स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि धरती पर, खेती पर, खेती से जुड़े जितने भी देश हैं, जिनकी इकोनॉमी है वो कृषि से संबंधित है, कृषि पर निर्भर है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वो कृषि से ही अपना जीवन पालन कर रही है, उन पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और बहुत अधिक रूप से पड़ने लगा है। पिछले 4-5 साल से हम किसानों को इस बारे में जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से बचने के लिए किस तरह के उपाय करना शुरू कर दें। उसके लिए मिट्टी को बचाना जरूरी है, मिट्टी की बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाना बहुत आवश्यक है, और इसमें रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, पुनर्योजी कृषि, प्राकृतिक खेती, ऐसे जितने भी तमाम विविध तरीके हैं खेती के, जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य बनाया जा सके, वो तरीके किसानों को इस्तेमाल करने होंगे। नहीं तो इसका जो है बहुत अधिक प्रभाव जो है वो इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उससे कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण फूड हो गया है, भोजन सबके लिए आवश्यक है।
2: हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक अब इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि किस तरह से भविष्य में इन समस्याओं से निपटा जाए। हालांकि कुछ हद तक प्राकृतिक खेती अपनाकर भी परेशानियों से बचा जा सकता है।
3: इस बार जो गर्मी पड़ी है और तापमान में जो अंतर आया है थोड़े समय के लिए, उसी से जो है गेहूं में जो पिछले 3 साल पहले जो वैज्ञानिकों ने अपना वो दिया था कि मॉडलिंग के बेसिस पे कि गेहूं में लगभग 5-10% उसमें यील्ड की कमी होगी, उपज की कमी होगी प्रति एकड़, अगर जो है तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है वो बढ़ोतरी हुई तो। किंतु इस बार उदाहरण हमारे सामने है, हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों किसान, जो कि खासतौर पर और मध्य प्रदेश के किसान, जहां गेहूं जो है वो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में बोया जाता है, वहां जहां 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर जहां पे उपज होती थी अच्छी वैरायटीज़ की, उनकी उपज जो है वो 17 से 18 क्विंटल तक पहुंच गई। तो इससे न केवल सरकार को जो है वो गेहूं पे जो एक्सपोर्ट निर्यात का जो निर्णय लिया गया था तुरंत बैन लगाना पड़ा।
2: दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ता प्रदूषण

0: न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है बल्कि खेतों में पैदा हो रही फसलें भी इनसे प्रभावित हो रही है। सामान्यतः तापमान के हर एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम हो सकता है। इसीलिए इसके समाधान की शुरुआत हमें आज और अभी से शुरू करनी होगी ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी डॉक्टर और विशेषज्ञ द्वारा कितनी महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि जो उपज आज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है उसका कारण है ये जलवायु परिवर्तन। यदि हम इसको नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में बहुत भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमारा विशेषज्ञ द्वारा मानना है। खासतौर पर उन्होंने सलाह दी है कि हमें अपने वृक्षों को लगाना चाहिए और अपनी प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुख करना चाहिए, तभी हम इस जलवायु जैसी भयानक समस्या से निपट सकते हैं। कार्यक्रम में और भी चर्चा होगी, लेकिन साथियों इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। गीत के बाद पशुधन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, खासतौर पर पर्यावरण को सुधारने में बहुत अहम जिम्मेदारी निभाता है, तो उसकी देखभाल में इस मौसम में चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है कैसे कर सकते हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

0: पशुपालन अपने आप में काफी संजीदा व्यवसाय है। इसमें पशु को हर मौसम में सुरक्षा तो देनी ही होती है, साथ ही मौसम के हिसाब से उनके आहार में भी परिवर्तन करना होता है। ये छोटे छोटे प्रयास पशु को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। इस समय गर्मी का मौसम खत्म होने को है और बारिश का मौसम दस्तक देने वाला है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो बरसात शुरू होने से पहले पशुओं को बाह्य परजीवियों जैसे किल्ली, जू, चींचड़ी से सुरक्षा दें। इसके लिए क्या कदम उठाएं? जानते हैं
1: भाइयों, आप जानते हो कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है किसानों को चिचड़ियों की। और चिचड़ियों का इलाज जो है वो एक चिचड़ियाँ जो मानी जाती हैं मैनेजमेंटल डिजीज़ है, और चिचड़ियों का इलाज जब किसान भाइयों को करना होता है तो उसमें किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये चिचड़ियों का जो एक लाइफ साइकिल होता है वो 4 हफ्ते का होता है, तो 4 हफ्ते में ही उसका इलाज ज़रूरी है। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे आज चिचड़ी आई है तो उस समय वो उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद वो भूल जाते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही 1 हफ्ते में आप दवाई लेंगे तो उस टाइम पे जो अडल्ट चिचड़ियां हैं जो बड़ी हैं वो मर जाएंगी, लेकिन जो उनके जो अंडे हैं वो रह जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो अगले हफ्ते में फिर से वो हैच होकर वो नई चिचड़ियों का रूप लेंगे। और ये जो साइकिल है, कम से कम किसान भाइयों को जो चिचड़ी का टीका है या दवाई है वो उनको 1 हफ्ते के बाद रिपीट करनी होती है, और टोटल 4 हफ्ते का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसीलिए आपने किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखना है कि चिचड़ियों के जो इलाज है उसका इलाज के लिए आपको पूरा 1 महीने का जो इसमें 1-1 हफ्ते का अंतराल है उसमें इलाज करवाना है। और ना कि सिर्फ इतना ही, आप जैसे कि मैंने कहा ये एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, तो इसमें आपने क्या करना है कि जब आप चिचड़ियों का इलाज कर रहे हैं उस समय पे जो आपने हमेशा ध्यान रखना है जो आपका शेड है उसका जो फर्श है उसकी सतह पे कोई कहीं सुराख वराख ना हो, ताकि जो अंडे हैं और चिचड़ियाँ अगर गिरेंगी तो वो वहाँ उन सुराखों के बीच में ना घुस जाएं उस समय। और फर्श को आप पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का घोल बना के पानी में उसे आप साफ कर सकते हैं। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मौसम में नमी ज़्यादा रहेगी तो उस समय में आपने अपने शेड में कुछ जैसे कूलर या इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, और वेंटिलेशन को आपने प्रॉपर रखना है ताकि चिचड़ियाँ जो हैं वो पनप ना पाएँ। और जो मल मूत्र का रिसाव है उसको आपने ध्यान से रखना है, और मल मूत्र का निकास जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि चिचड़ियाँ जो हैं वो पनप ना पाएँ। और बरसात में आपने सबसे ज़्यादा अपने शेड को साफ सुथरा रखना है, और हो सके तो आप डेली अपने शेड की सफाई करें, क्योंकि सफाई से बहुत सारी बीमारियों को हम रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बरसात में दूसरी बीमारी की, थनेला।
0: बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को थनेला रोग होने की आशंका भी बनी रहती है। जैसा कि इसका नाम है, इसका सीधा संबंध पशु के थन से है। थनेला रोग एक संक्रामक रोग है और एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इस रोग के फैलने का प्रमुख कारण है साफ सफाई का अच्छी तरह से नहीं होना। इसके लिए अनियमित तौर पर दूध दोहने और गंदे हाथों से दूध दोहने की वजह से भी पशुओं में थनेला रोग हो जाता है। किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आने से भी ये रोग होने की आशंका रहती है। इस रोग से बचाव के लिए क्या करें पशुपालक, जान लेते हैं विशेषज्ञ की सलाह।
1: थनेला में हम अक्सर देखते हैं कि किसान जो है वो पहचान नहीं पाता। सबसे पहले किसान को देखना होता है कि उसके जो पल्ला है, जो थन है, वो हल्का हल्का जब दूध निकाल रहा होता है उस समय हल्का हल्का गर्म रहता है, तो उसे हमें पता लगता है कि थनेला की शुरुआत जो है वो हो रही है। क्योंकि ये एक इन्वायरमेंटल और मैनेजमेंटल डिजीज़ है, तो इसमें भी आपको रख रखाव जो है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साफ़ सफाई जो है वो शेड की आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि थनेला जैसे रोग ना हो। और आपने ध्यान रखना है कि जब आप गाय का दूध निकाल रहे हैं तो उससे पहले चारा ना खिलाएं ताकि उसके बाद चारा खिलाएं। इससे क्या होगा कि पशु जो है वो खड़ा रहेगा और थन जो है, थन की जो नली है वो ज़मीन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, जिससे जीवाणु जो है वो थन की नली में घुस नहीं पाएंगे और आगे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। जाएगा। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना, थनेला को रोकने के लिए हमेशा लाल दवाई का यूज करें जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के आप दूध निकालने से पहले आप थनों को धो लें, और फिर दूध निकालने के बाद भी आप उसे एक डिप कर सकते हैं। तो किसान भाई क्या करें कि जब आप लाल दवाई का यूज़ करें तो एक मग में आप उसे घोल बना लें और एक लीटर पानी में, और थन को आप डिप कर सकते हैं उस लाल दवाई के घोल में, और ये प्रक्रिया जो है आपने दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद करनी है। और ना कि सिर्फ इतना ही, आपने जब दूध निकालना है उस समय भी आपने अपने हाथ धोने हैं, और जब दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद दोनों समय पे आपके हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ बीमारियां दूध से फैलती हैं तो वो आप तक भी नहीं आ पाएंगे।
0: मानसून के आने से पहले पशुओं के लिए डीवॉर्मिंग कितनी जरूरी है, साथ ही इस समय किन बीमारियों से बचाव के टीके लगवाएं, जान लेते हैं।
1: किसान भाइयों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही बरसात आ रही हो उस समय जानवर की डीवॉर्मिंग, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, वो बहुत जरूरी हैं। डीवॉर्मिंग मानसून से पहले और मानसून के बाद अनिवार्य है, और इसीलिए इससे आप ना चूके, आप हमेशा टाइमली अपने जानवरों की डीवॉर्मिंग करें, ताकि इसे जानवर के जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और बाकी कई अन्य रोगों से जानवर को मुक्ति मिल जाती है। और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब बरसात आ रही हो उससे पहले आप FMD का टीका करवा लें, गलघोटू का टीका करवा लें, BKU ब्लैक वाटर का टीका करवा लें। ये टीकाकरण आप ज़रूर करवाएं मानसून से पहले, क्योंकि बरसात में हम देखते हैं कि नमी होती है, तो नमी के कारण बहुत से जीवाणु के पनपने का एक ज़्यादा बहुत से जीवाणु जो हैं वो पैदा होने लग पड़ते हैं। तो इसलिए आपने उन चीज़ों में इन मौसम में आपने खासकर से ध्यान रखना है कि अपने जो शेड है उसकी साफ़ सफाई हो, वेंटिलेशन प्रॉपरली हो, हवादार हो।
0: आपको दिखाते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर, ताकि आप उसके अनुसार सही तरह से प्रबंधन कर सके, अपने पशुओं की सही तरह से देखभाल कर सके।
2: HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन

बच्चे को गाय का दूध पिलाने की ही सलाह देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गाय के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएं और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं आज के हमारे युवा उद्यमी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं।

0: भारत की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी की तलाश में नहीं भटक रही, बल्कि ऐसे कदम उठा रही है जिससे और युवाओं को अपने कारवां में शामिल कर सके। युवाओं की आधुनिक सोच अब नया भारत गढ़ रहा है, जिसमें उनके छोटे छोटे प्रयास देश को और सशक्त बना रहे हैं। हमारे आज के युवा उद्यमी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। गाजियाबाद के रहने वाले असीम सिंह रावत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर करीब 15 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें वो भारतीय गौवंश को संरक्षण दे रहे हैं और गाय के दूध व गोबर से कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। इस समय उनके पास करीब 1000 गायें हैं, जिनमें ऐसी गाय भी शामिल है जो दूध देने में सक्षम नहीं है, लेकिन असीम उन गायों की भी सेवा कर रहे हैं।
1: बाय एजुकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लगभग 15 साल का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मैंने हेता स्टार्ट करी दो गायों से, दो लोगों से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और अब 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं, 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, 1000 के आसपास भारतीय गौवंश है, और लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग इस समय बना रहे हैं, देसी गाय के दूध से, गौमूत्र से, गोबर से। संस्था का मिशन ये है कि 1000 गौवंश, जिसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, मिल्किंग काउस भी हैं, ये सभी को हम अच्छे से पाल सकें एंड टू एंड विदाउट एनी डोनेशंस। और उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए और उनको वर्ल्ड वाइड सेल करिए। प्रोडक्ट्स में हम लोग बेसिकली दूध से बने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो दूध एक मेन चीज़ है, उसमें खोया हो गया, पनीर हो गया, आपके लड्डू हो गए, घी हो गया, आपका मक्खन हो गया, फिर गौमूत्र पे आ जाते हैं। तो गौमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट संस्था बनाती है, इसमें बहुत तरह के अर्क हो गए। ये ध्यान रखना है कि गौमूत्र से जब भी आप प्रोडक्ट्स बनाएं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक मेडिसिन है और मेडिसिन को मेडिसिन के तरह ही यूज़ किया जाना चाहिए। अर्क के अलावा पंचगव्य बहुत सारी मेडिसिन बनाती हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए, ये भी आयुर्वेद से डिराइव्ड हैं, पंचगव्य से डिराइव्ड हैं, जो भी काउ रिलेटेड चीज़ें हैं वो संस्था बनाती है। गोबर से भी लगभग 10 से 15 उत्पाद संस्था बनाती है, जैसे मूर्तियाँ हो गई, उपले हो गए, जीवामृत हो गया। गौ आधारित कृषि भी हम लोग करते हैं, हेता नंदीशाला बुलंदशहर में, वहाँ पर 5-6 तरह के मिलेट्स उगा लेते हैं, राइस है, वीट है, लकड़ी बना लेते हैं, गोबर की उपले बना लेते हैं। और हेता उत्तराखंड में हम लोग बद्री गायों पे काम करते हैं, वहाँ पर भी पंचगव्य कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और बद्री गाय का घी, छाछ आदि भी वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। तो ओवरऑल 3 लोकेशन हैं संस्था की इस समय, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ आपको 2022 में, हेता गाजियाबाद है, हेता उत्तराखंड है, हेता बुलंदशहर है जी।
0: मात्र 2 लोगों से शुरू की गई उनकी ये कंपनी आज 80 लोगों के पार तक पहुंच गई है। वो बताते हैं कि गायों को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां थी वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत की गाय इतनी निर्बल नहीं हो सकती है जो पशुपालक को मुनाफा ना दिला सके, बल्कि भारतीय गौवंश अपने साथ पशुपालक के पूरे परिवार का पोषण करने में सक्षम होती है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए असीम ने अपना हेता डेयरी फार्म शुरू किया, जिसमें ज्यादातर वे गाय हैं जो दूध देने में सक्षम नहीं है, लेकिन असीम मुनाफे के लिए गौ पालन नहीं करते, बल्कि गौवंश की रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। उनके यहाँ दूध, गोबर व गौमूत्र से करीब 100 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उनके प्लांट में बनने वाले उत्पाद पर्यावरण के हिसाब से भी बेहतर है और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी। इस समय वो अलग अलग नस्ल की गाय का दूध, नस्ल के हिसाब से कई तरह का घी, पनीर, खोया, मक्खन, च्यवनप्राश, शहद, दलिया, आटा, बासमती चावल, पंचगव्य से बनी दवाएं, हेयर ऑयल, गोबर से बने कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। उनके ये उत्पाद ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। इसके लिए असीम सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। असीम के स्टार्टअप की एक और अच्छी बात है, और वो ये है कि वो फार्म में पल रही नंदियों पर भी खास ध्यान देते हैं, जिनके लिए असीम ने हेता नंदीशाला खोल रखी है। असीम अपने पशुओं को देने वाला चारा भी खुद ही उगाते हैं, जिसमें मोटे अनाज भी शामिल है। असीम के ये प्रयास उन युवाओं के लिए बेहतर उदाहरण है जो कृषि और पशुपालन को कम आंकते हैं और शहरों का रुख करते हैं।
2: जीमेल का रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मुख्य बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं। खासतौर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर असर हमें हमारे किसान साथियों को झेलने को मिल रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जंगल हुआ करते थे और उसको किस तरीके से उसको काटा जा रहा है। उससे जो आज हम देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज जो जो विशेषज्ञ बताते हैं, पहले जो फसल उत्पादन प्रति हेक्टर ज्यादा होती थी, आज वो दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें हमें रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ साथ में चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है और उस बरसात के मौसम में पशुपालन का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं और हम कार्यक्रम में, चूंकि युवा हमारे देश का भविष्य होते हैं और युवा पीढ़ी ही अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो अपनी जॉब को छोड़कर बीटेक भी करने के बाद वो कृषि के क्षेत्र में उतर रहे हैं, बहुत सारी संभावना है। आइए सुनते हैं इस स्टार्टअप इंडिया को, किस तरीके से युवा आगे बढ़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, लेकिन विराम के बाद बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ। सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनों रेडियो अपनी बात है।

0: की राखी। जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमारा पहला विषय है बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती, तो आइए जानते हैं कि ऐसे में जबकि गर्मियां अब जारी है, कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश भी शुरू हो गई है, जो किसान हैं हमें बताएं डॉक्टर राकेश कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो इस मौसम में ली जा सकती है।
3: जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको हम बरसात की मौसम भी बोलते हैं
2: जी।
3: और इस मौसम में जो मुख्य रूप से सब्जियां लगाई जाती है वो खासकर बेल वाली सब्जियां, घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, ऐसी सब्जियां लगाई जाती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च और हम लोबिया, इसके अलावा हम ओकरा का भी इस समय खेती करते हैं। हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों में लाल चौलाई और हरी चौलाई की हम इस समय खेती करते हैं मुख्य रूप से
2: जी।
3: और इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे हम राउंड द ईयर में पालक और धनिया, इनकी भी खेती हम इस समय कर सकते हैं।
2: तो बहुत सारी वैरायटीज है, कई सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छी उपज हासिल कर सके, इसके बारे में विस्तार से आज हम जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो सकती है, यही वजह है कि वैज्ञानिक अच्छी जल निकास वाली जगहों पर ही सब्जियां बोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेड़ बनाकर खेती करना भी जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बरसात के दौरान बेल वाली सब्जियों में खीरा, तोरी और करेले की खेती की जा सकती है। इन सब्जियों को सीधे जमीन पर ना लें, क्योंकि बारिश का पानी सब्जियों को दागदार बना देता है, जिससे बाजार भाव पर असर पड़ता है। इसलिए इन्हें बोने के बाद बांस और रस्सियों की मदद से मचान बना लें। बरसात में भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, लोबिया, बीन्स और चौलाई जैसी फसलों में खरपतवार की समस्या काफी ज्यादा रहती है। इससे फसल की बीमारी भी ज्यादा लगती है और कीट भी। इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अलग अलग फसलों की बात करें तो भिंडी को लगभग सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा ग्रीन भिंडी 5, पूसा A4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभनी क्रांति, आजाद भिंडी और अर्का नामिका के नाम लिए जा सकते हैं। लोबिया की खेती के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु सही मानी जाती है। पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अर्का, गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन लोबिया की बेहतर किस्में हैं। प्याज के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जो ना बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी। आमतौर पर सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। इसकी N53, पूसा रेड, पूसा रतनार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट और भीमा डार्क रेड इस मौसम की अच्छी किस्में हैं। मैदानी हिस्सों में जून जुलाई के दौरान खरीफ मिर्च बोई जा सकती है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। मिर्च की रोपाई जरूर कर लें। वहीं बैंगन को लंबे गर्म और बरसाती मौसम की जरूरत होती है, इसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है।

0: जहाँ तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि इस समय कौन कौन सी फसलें ली जा सकती है, कौन कौन सी किस्में अच्छी रहती है, साथ ही फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। लेकिन आइए हमारे दूसरे विषय का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पीके जैन, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि शिक्षा व स्वरोजगार, जैसा कि आज का हमारा विषय है, इसके बारे में हमें पहले समझाएं कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सदियों से हमारे जो अन्नदाता किसान है वो खेती किसानी करते आए हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जानकारी है कि वो किस तरह से खेती करे। लेकिन ऐसे में अगर किसी तरह से शिक्षा, कृषि शिक्षा हासिल कर ली जाए तो वो किस तरह से इनके लिए उपयोगी हो सकती है?
1: देखिए, कृषि क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि, 20 साल पहले जो कृषि थी उसमें आज में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि की हम बात करते हैं तो एक प्रतिस्पर्धी कृषि हो गई है। प्रतिस्पर्धी से मतलब है कि किसान के पास जो संसाधन है उनको किस तरह से उच्चतम उपयोग किया करके ज्यादा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान ये भी बात आजकल चाहता है कि कैसे से अधिक तुम उसको आय प्राप्त हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि जो बाजार की जो कंडीशन है जहां उसे मूल्य मिलते हैं उसकी भी काफी परिवर्तन आ गया है। वो एक प्रतिस्पर्धी हो गई है, कौन से बाजार में बेचना है उसके लिए एक स्किल, एक जानकारी की जरूरत होती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में काफी चेंजेज आ गया है। हम देखेंगे जब हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि कृषि में किस तरह के लोग इसमें काम करते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी कृषि में ज्यादातर कम शिक्षित लोग है और यह अशिक्षित लोग है जो कृषि के व्यवसाय में काम करते हैं। वो अपने खेत पर उनका प्रबंधन, खेत का प्रबंधन करते हैं, तो इसलिए काफी, और क्योंकि हमने अधिक से अधिक तम आय प्राप्त करनी है, अधिक से अधिक तम लाभ प्राप्त करना है, तो इसलिए कृषि को एक इनोवेटिव कृषि बनानी है, नवोन्मेष कृषि बनानी, इसके लिए हमें कृषि के जो इन्वॉल्व लोग हैं, कृषि में जो शामिल लोग हैं, उनको एक तरह से हमें कहें कि उनका उत्थान करना है, उनको मानव संसाधन कृषि क्षेत्र में निर्माण करना, इसके लिए कृषि की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से साल दर साल जो कृषि है उसके तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है और अब तो कई तरह की नई तकनीकी भी आने लगी है, और ऐसे में इन चीजों के बारे में किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी है। कृषि में जहां अल्पशिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में उच्च शिक्षा हासिल करके भी युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और जो कृषि है उसे उद्यमिता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में कृषि शिक्षा उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
2: कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की दक्षता और क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा को लेकर विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। देश के युवा अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों से शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की शुरुआत महसूस की गई। 1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि शिक्षा का ही नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।
0: जहाँ तो रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरह से जो कृषि शिक्षा है उसका विस्तार लगातार होता जा रहा है। डॉक्टर जैन, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे में जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं और इसे एक रोजगार के अवसर के तौर पर देख रहे हैं, उनके लिए किस तरह की संभावनाएं हैं?
1: कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा संभावना है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें और रोजगार की हम बात करें तो एक हम जॉब भी हम दूसरी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य जो संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उद्यमी बनने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं कृषि क्षेत्र में, तो उसके लिए जो हमारे ग्रामीण युवा है तो उनको हमें कृषि क्षेत्र में बनाए रखने के लिए और उनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि उनको कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव सेक्टर बनाना है, आर्थिक रूप से एक आकर्षित एक क्षेत्र बनाना है और उसके लिए हमें जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार करके उनको उद्यमी बनने की शिक्षा हम दें।
0: बिल्कुल डॉक्टर जैन, इसके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनसे जुड़ सकते हैं आज के युवा और स्वरोजगार के जो अवसर है वो उन्हें मिल सकते हैं।
3: इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9425416603। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम खेती किसानी पर। किसान साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जैविक खेती के ऊपर। जैसा कि किसान साथियों ने अपनी समस्याओं को साझा किया है और साथ ही किस तरीके से उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, इन सब जानकारियों को लेकर रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM ने आप लोगों के सामने आज के इस कार्यक्रम को कुछ एक्सपर्ट की मदद से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके लिए एकत्रित करके रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM आपके लिए लेकर आया है। साथ ही हम चर्चा करेंगे उन्नत बीज की फसलों के ऊपर। किसान भाइयों के फोन आते रहे हैं हमारे पास, किस तरीके से उनकी जमीन में जो बदलाव आ रहे हैं इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। निरंतर हम किसान भाइयों के पास जाकर उनके खेतों पर जाकर उनसे चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारी जमीन में बदलाव आ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं हमारे किसानों की और किस तरीके से हम अच्छी किस्मों के बीज ला सकते हैं और उन्नत कृषि कैसे कर सकते हैं, नई तकनीकी से हम कैसे कृषि कर सकते हैं। अन्य जानकारियों को रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचाता रहा है। आइए इन जानकारियों को जानने से पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।

0: इस सुंदर से गीत के बाद आइए बढ़ाते हैं हम अपने खेती किसानी की चर्चा को।
1: हम देखिए खेती करने की जो हमारी जैविक खेती है वो ऐसी पद्धति है जिसके अंदर हम किसी भी जो हमारे रासायनिक खाद है उनका इस्तेमाल नहीं करते, या हमारे जो हैं जीवाणुनाशी हैं या कवकनाशी हैं या हमारे जो हर्बिसाइड हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एक इस तरीके से खेती करते हैं जिसमें जो है पोषक तत्व का प्रबंधन ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से करते हैं, जैसे गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, या हम रॉक्स एंड मिनरल्स को भी डालते हैं ग्राउंड करके, या रॉक फॉस्फेट को भी डाल सकते हैं। तो ऐसी पद्धति के द्वारा जो हम खेती करते हैं जहाँ पे पोषक तत्व का प्रबंधन ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से किया जाता है, क्रॉप रोटेशन के माध्यम से किया जाता है, और खरपतवारों का नियंत्रण जो है वो हम यांत्रिक विधि से करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन से करते हैं। तो ऐसी पद्धति को हम जैविक खेती कहते हैं, और इसका जो है आजकल क्योंकि समय की मांग है, बाजार में जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जैसे हमने बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का या हमारे बहुत से केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है और वातावरण में भी प्रदूषित हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए जैविक खेती जो है एक अच्छा हमारा पर्याय हो सकता है, प्रयास हो सकता है।
0: किसान साथियों, जैसे कि हमने सुना कि किस तरीके से हमारी भूमि में जो बदलाव आए हैं उससे निजात पाने के लिए हम किस तरीके से जैविक खेती कर सकते हैं, आइए बढ़ाते हैं अपनी इस चर्चा को थोड़ा और आगे।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: हरित क्रांति के दौरान देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी रासायनिक दवाएं छिड़की जाने लगी। इन रसायनों ने पैदावार तो बढ़ाई लेकिन मिट्टी को कमजोर और फसलों को जहरीला बना दिया है। इतना ही नहीं, ये कीटनाशक पर्यावरण को भी दूषित करने लगे। इन दुष्परिणामों का असर इंसान ही नहीं पशुओं की सेहत पर भी पड़ रहा है। आज जब देश उत्पादन के मामले में नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है, तब खेती में रसायनों का इस्तेमाल कम करने की बात की जाने लगी है। जैविक खेती इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार इस तरह की खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रसायनों की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर और जैविक खाद के उपयोग पर जोर दिया जाता है। इससे न सिर्फ जमीन की उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को ज्यादा मुनाफा होता है। सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर इलाकों में जैविक खेती और भी ज्यादा फायदेमंद है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों पर जैविक उत्पाद ज्यादा खरे उतरते हैं। दुनिया भर में जितने भी शोध हुए हैं उनमें से ये बात निकलकर सामने आई है कि जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होता है, लेकिन इसमें कमी भी है। जब आप जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो कम से कम 3 साल तक पैदावार कम होती है। यही वजह है कि इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे वैज्ञानिक रासायनिक और जैविक दोनों विधियों को मिलाकर खेती करने की सलाह देते हैं।
0: आइए जानेंगे किस तरीके से हम जैविक खेती कर सकते हैं, उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैविक खेती का सबसे मुख्य फायदा ये है, जो भी हमें कृषि उत्पाद मिलता है जैविक विधि से उगाए गए, चाहे हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, चाहे दूध है, चाहे मछली है, चाहे अंडा है, और जो हमारा कोई भी फसल का उत्पाद है, उत्पाद में जैसे हमारा ऑयल सीड भी है या पल्सी दाल भी है हमारी, या गेहूँ है, चावल है, कॉफी है, चाय है, ये सारे उत्पाद जो है बिना किसी रसायन के उगाए जाते हैं, तो इनमें कोई भी रासायनिक का जो अवशेष होता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से जो केमिकल डालते हैं हम, उनका कुछ अवशेष हमारे इन उत्पाद में रह जाता है, और जब इनको कंज्यूम करते हैं, चाहे हम खाएं चाहे जो पशु खाएं, तो कहीं ना कहीं वो उनके स्वास्थ्य को खराब करते हैं।
2: किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने से वह किस तरीके से हमारी फसलों में रह जाता है और किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर और पशुओं के स्वास्थ्य पर, दोनों पर एक बुरा प्रभाव डालता है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा विराम।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, आइए जानते हैं जैविक कृषि करने से हमारी भूमि में किस तरीके से उन भूमि में बदलाव देखे जा सकते हैं।
1: तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी उत्पाद होता है जैविक विधि से उगाए गए उत्पाद में कोई भी जो हमारा रेजिड्यू होता है किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का, वो नहीं होता है, और साथ साथ जो है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है।
3: अच्छा।
1: मिट्टी की गुणवत्ता कई तरीके से बढ़ती है, भौतिक संरचना में सुधार होता है जिससे पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसकी बल्क डेंसिटी जो है कम हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि केमिकल जो हमारे गुण हैं जिनको हम रासायनिक गुण भी कहते हैं मिट्टी के, विशेषकर जैसे न्यूट्रिएंट की उपलब्धता है या पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इनके में भी काफी सुधार होता है, और ऐसा देखा गया है यदि हम लगातार जैविक खेती करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है मिट्टी में वो बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है, और हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पिछले करीब 15-16 साल से लगातार बासमती धान गेहूं का फसल चक्र अपना के, हमने देखा कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जिसको हम आत्मा मानते हैं मिट्टी का, तो वो जो है मतलब काफी बढ़ गया है, और मिट्टी जो है हमारी पहले भुरभुरी थी, अब काली मिट्टी हो गई है, और इसके साथ साथ जो है हमारी जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि जीवाणु है मिट्टी के अंदर, चाहे हमारे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, ये सारे बढ़ जाते हैं, अर्थवर्म जो हम केंचुआ कहते हैं।
3: किसान साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना किस तरीके से जैविक खेती करने से हमारी मिट्टी में भिन्न भिन्न बदलाव देखे जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी मिट्टी को पुनः उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं, कार्यक्रम को जारी रखेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: हाँ देखिए, फल जो आम के लिए जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में तो मैं इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप नीम का जो ऑयल आता है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो काफी हद तक जो है आपके कीड़े रुक जाएंगे। आम के लिए ऑर्गेनिक यदि आम उगा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक आम की काफी डिमांड बढ़ रही है, हमारे देश में ही नहीं जैसा सुपर मार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आम की जो जैविक विधि से उगाए गए आम है उनकी काफी डिमांड बढ़ रही है। सो नीम का जो है आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम की पत्तियों को उबाल के उसका जो है हमारा अरक बनता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीड़ों को रोकने के लिए आम के अंदर।
2: जैविक पद्धति से उपजाए हुए फलों की मांग भी काफी है और इसके भाव भी काफी अच्छे मिलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे जैविक कृषि के माध्यम से हम अपनी मिट्टी में किस तरीके से सुधार ला सकते हैं। आइए थोड़ा और इस बारे में और थोड़ा और जानकारी लेते हैं।
1: कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की गली सड़ी खाद डालते हैं तो क्योंकि इससे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट यानी कि हमारा जीवांश पदार्थ जो मिट्टी के अंदर बढ़ जाता है तो वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी होने के कारण जो है मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है इसके साथ साथ हमारे जो जीवाणु है वो भी एक्टिव हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे हम कुछ भी खा ले अपने पेट के अंदर जो है अच्छा भोजन, लेकिन यदि हमारा पेट का जो है माइक्रोबायोम काम नहीं कर रहा तो हमारा जो है खाद्य पदार्थ खाया हुआ वेस्ट चला जाता है। इसी तरह मिट्टी के अंदर जो है जीवाणुओं का एक्टिव होना बहुत जरूरी है और जो हम जैविक खेती करते हैं उसमें जो है मिट्टी के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं, चाहे हमारे बैक्टीरिया है या फंगस है या हमारे और दूसरे जैसे दूसरे जो भी मित्र कीट है वो काफी एक्टिव हो जाते हैं और वो जो है इसको डिकम्पोज भी करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज न्यूट्रिएंट के होते हैं, चाहे हरी खाद डालें चाहे गोबर की खाद डालें, चाहे हम जो है कोई इस तरीके से और भी हरी खाद भी 2-3 तरीके की होती है जैसे मिट्टी के अंदर उगा के या मिट्टी के अंदर मिलाते हैं खेत उसी खेत के अंदर, लेकिन कुछ जो है हम हमारे मैंड पे या बंड पे उगाते हैं दूसिनिया वगैरह तो उसको जो है उसकी पत्तियों को टहनियों को काट कर लाकर मिट्टी के अंदर मिलाते हैं उसको जो हम एक्सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है मिट्टी की जो ओवरऑल सोयल की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम मैं ये कह सकता हूँ हमारे परीक्षण के आधार पर जो पिछले हम करीब 15-16 साल से जो है ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं पूसा संस्थान में बासमती धान गेहूं के अंदर, तो मिट्टी की जो है भौतिक संरचना में और इसके साथ साथ जो हमारे रासायनिक गुण है उन गुण धर्म है मिट्टी के उनमें भी सुधार हुआ है और साथ साथ जो है बायोलॉजी

0: इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उनमें भी सुधार हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है पहले 0.5 के आसपास था जो 0.9 और 1% के आसपास ऑर्गेनिक के अंदर आ गया है और जो हमारा जीवांश पदार्थ है यही जो है सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट का रिसोर्स माना जाता है मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से यदि खेती करते हैं किसान भाई तो उसमें 2-3 फायदे और भी हो सकते हैं। पानी कम देने की जरूरत पड़ती है।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: और जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता घटती चली जा रही है, पहला फायदा तो ये है मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। दूसरा फायदा ये है कि जो भी हम उत्पाद लेते हैं खेती करके जैविक विधि से, तो वो उत्पाद जो है उसमें किसी भी तरीके का जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, कोई भी ऐसा केमिकल का रेजिड्यू नहीं रहता है। और तीसरी बात यह है वातावरण जो हमारा शुद्ध होता है वातावरण में, क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे जो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है या हमारा जो है अमोनिया गैस बहुत रिलीज होती है, क्योंकि एकदम फर्टिलाइजर डाला हमने और हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी है और मिट्टी भी इतनी सही नहीं है, तो अमोनिया गैस बनकर उड़ जाती है, वो भी जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो वातावरण के साथ साथ सबसे बड़ा आज का जो सवाल है किसानों की आमदनी बढ़ाना, तो आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा शुरू में तो ज्यादा आता है लेकिन बाद में जब हम 3-4 साल के बाद में करना शुरू करते हैं फिर खर्चा इतना ज्यादा नहीं आता है। तो उस तरीके से जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने से मिट्टी में जो डालते हैं उससे हमारा उत्पादन लागत बढ़ जाती है और जो हमारा रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो है डिमांड मार्केट में बढ़ रही है और इसका जो है प्रीमियम प्राइस भी मिलता है, क्योंकि यदि हम सामान्य विधि से कोई भी क्रॉप को उगाते हैं उसका मार्केट में उत्पाद लेकर जाते हैं तो उसका उतनी कीमत नहीं मिलती है जितनी जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मिलती है। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो हमारा नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है वो इसमें ही ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा आता है, अर्थात यदि हम 1 रुपया लगाते हैं तो उसमें करीब 2-2.5 रुपया मिल जाता है जबकि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में इतना नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की आय भी बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और पर्यावरण भी अच्छा होता है, शुद्ध पर्यावरण रहता है। तो ये सारे फायदे हैं मिट्टी की।
2: डॉक्टर शिवे, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कृषि लागत की तुलना की जाए तो रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती में कितनी लागत आती है?
0: हाँ देखिए, जैविक खेती में लागत इससे शुरू में थोड़ी यूँ ज्यादा आती है क्योंकि हम ज्यादा जो है FYM डालते हैं, जो गोबर की गली छड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो थोड़ी ज्यादा डालने की जरूरत पड़ती है शुरू में। बाद में थोड़ा कम हो जाती है क्योंकि बाद में हम क्रॉप रेजिड्यू भी रिसाइकिल करते हैं और फिर इंटरक्रॉपिंग भी अपनाते हैं, जो सह फसली खेती है उसको भी करते हैं और उसमें ऐसा भी हम प्रोविजन करते हैं कि जो हरी खाद की फसलें हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और कोई भी हम रेजिड्यू बाहर नहीं लेकर जाते, वहीं रिसाइकिल करते हैं अपने फार्म। तो इस तरीके से जो है शुरू में थोड़ी 20 से करीब 25% जो है उत्पादन लागत बढ़ जाती है लेकिन आगे आने वाले समय में 4-5 साल के बाद में जो है उत्पादन लागत इतनी ज्यादा नहीं रहती बल्कि उत्पादन लागत घट जाती है। और उसका कारण यही है कि हम हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं और जो कोई भी क्रॉप रेजिड्यू है उसको हम बाहर नहीं लेकर जाते, वहीं पे उसको रिसाइकिल करते हैं और जो पशु पालते हैं उनका भी जो है हमारा गौमूत्र होता है या हमारा गोबर की खाद होती है उसका रिसाइकिल करते हैं। और हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर ज्यादा बढ़ती है, न कि हम बाहर से ला के फर्टिलाइजर डालें या इंसेक्टिसाइड डालें या पेस्टिसाइड डालें। और दूसरे हम बीज भी जो है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट करते हैं अपने घर पे ही उगाते हैं या किसान उगाते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं, हम बाजार से बार बार जो है बीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से शुरू में थोड़ी लागत 20-25% ज्यादा आती है लेकिन 3-4 साल के बाद में 5 साल के बाद में लागत में कोई ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन बाद में फिर जो हमारा उत्पाद का कीमत मिलती है बाजार के अंदर वो बहुत अच्छी मिलती है। और आजकल जो है जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर मार्केट है और जो हमारे बड़े शहर है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, सब देखिए आप हर एक जगह कहीं भी जाएंगे कहीं भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो अलग से ही जो जैविक उत्पाद की अलग से ही सेल बनी होती है और जो कंज्यूमर है जो उपभोक्ता खरीदता है वो कभी ये नहीं देखता कि इतनी कीमत क्यों है, वो तुरंत लेकर चल देता है, क्योंकि उसको ये एश्योरेंस है कि इसमें कोई भी इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का अवशेष नहीं बचा हुआ है या है नहीं।
2: आजकल सेहत को लेकर जागरूक होने लगे हैं जी, और ऐसे में अगर अच्छी चीज उन्हें कुछ ज्यादा कीमत पर भी मिल रही है तो वो गुरेज नहीं करते हैं लेने में, इसलिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग काफी बढ़ने लग गई है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: हमारे झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम काफी समय से रसायनों का प्रयोग हमारी भूमि में करते आ रहे हैं और अब एकदम से उसको बदल कर हम जैविक कृषि की ओर अगर हम रुख करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पोषक तत्व जो हमारी मिट्टी के लिए जरूरी होंगे, जैविक खेती के अनुसार कौन कौन से पोषक तत्व हमें उनको देना चाहिए, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: हाँ देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो 17 पोषक तत्व हैं और जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जो हमको द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं और कुछ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम, कॉपर है, आयरन है। तो इनको प्रबंधन करने के लिए जैविक खेती के अंदर सबसे अच्छा स्रोत जो है हम मानते हैं वो गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर्स है, क्रॉप का जो शेष बचा हुआ है उसको हम रिसाइकिल करके खेत के अंदर ही या तो हम जो है उसको मिट्टी के अंदर मिला भी सकते हैं और साथ साथ जो है कुछ हम ऐसे फंजाई या बैक्टीरिया डालें जिससे उसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाए तो उससे पोषक तत्व का उपलब्धि हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हम ये बताते हैं ऑर्गेनिक खेती के अंदर, जैविक खेती के अंदर, कि हम क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाएं।
1: किसान साथियों, अभी आपने पोषक प्रबंधन को जाना, अब लेते हैं हम छोटा सा विराम यहाँ पर और इस विराम के बाद हम जानेंगे फसल चक्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज
3: ले लो।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: देखिए फसल चक्र की बहुत बड़ी अहमियत है जैविक खेती में, क्योंकि हम इस तरीके से जो है फसलों को उगाते हैं हेर फेर करके, ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे और हमको जो है उससे जो आमदनी भी होती रहे। तो इस तरीके से अपनाएं हम, जैसे कि सपोज हम उदाहरण के लिए जो है दाल की फसल कर रहे हैं, तो दाल की फसल का करना बहुत जरूरी है जैविक खेती के अंदर। उसके बाद हम तिलन ले सकते हैं, उसके बाद हम सब्जी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाएं ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे, और यदि हम फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ साथ जो हमारे खरपतवार आते हैं उनकी भी जो है कमी हो जाती है। तो फसल चक्र का जो है जैविक खेती में बहुत बड़ा महत्व है। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जैविक खेती में, जहां भी आप जैविक खेती कर रहे हैं वहां पे इस तरीके का फसल चक्र अपनाएं, जहां पे जो है हमको दो दाल वाली फसलों को जरूर रखना पड़े, जैसे कि हमारी मूंग बीन है, उड़द बीन है, काउपी है, या इसके साथ साथ जो हमारा चना है, मटर है, मसूर है, अरहर है, ऐसी फसलों को जो है आप अपने जैविक खेती के फसल चक्र में जरूर रखें। तो इसके साथ साथ आप कुछ क्षेत्र में सीरियल भी उगा सकते हैं, धान गेहूं, इस तरीके का फसल चक्र अपना सकते हैं उसके साथ साथ। लेकिन हरी खाद भी आप 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, जैसे ढेंचे की है या हमारी जो सनई की है, इस तरीके की जरूर रखें। और साथ साथ जो हमारा और भी क्रॉप रेजिड्यू होता है तो उसको जो है कहीं बाहर ना लेके जाएं, मिट्टी के अंदर ही मिलाएं। तो फसल चक्र का ये सबसे बड़ा फायदा जो है मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, और हमको जो है जो हमारे अपने कंजम्पशन के लिए तो है ही है लेकिन आमदनी अच्छी दे, तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाना चाहिए। और मार्केट को पहले देख लें नजदीक कि किस फसल की जो है डिमांड ज्यादा है, कौन सी सब्जी की आपके जहां फसल जैविक खेती करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। और मैं समझता हूं कि बहुत से किसान जो है फसल चक्र को ध्यान में रख के ही।
2: किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने अभी सुना किस तरीके से फसल चक्र का होना बहुत जरूरी है, किस तरीके से ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी कृषि भूमि के लिए फायदेमंद है, और किस तरीके से हम आने वाली फसलों में इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, चर्चा को हम जारी रखेंगे, उससे पहले हम सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।

किसान साथियों, खेती किसानी कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, किस तरीके से हम जैविक खेती कर अनेकों लाभ कमा सकते हैं, साथ ही फसल चक्र के बारे में भी हमने सुना, और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आपने जाना है। आइए सुनते हैं एक और प्यारे से भिली गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से भीली गीत को। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया रूबीनाथ जी, बहुत बढ़िया स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हुए आपसे एक इंपॉर्टेंट, एक मजेदार और बहुत सिग्निफिकेंट सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप मुझे अपने जीवन के कुछ 3 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बता सकती हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो? 3 लोग।
1: 3 लोग
0: जी।
1: ओके। एक सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, जिनसे बहुत पॉजिटिविटी मुझे आई है। मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। और दूसरे हैं मेरे माताजी, उनको भी मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ।
0: जी।
1: वो भी नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है। और तीसरे हैं बहुत, जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस अभी अभी हुई हूँ, अभी मतलब कुछ दिनों से, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी।
0: क्या बात है,
1: उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ।
0: तो ऐसी क्या बात है प्रधानमंत्री मोदी साहब में जिससे आपको लगा कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं?
1: उन पॉजिटिविटी आती है, वो हमारे देश को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत पीछे थे हम। वो पॉजिटिविटी आती है उनको देखने से, उनकी सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसे लीडर ऐसे ही होने चाहिए।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने।
1: जी, एज अ पर्सन मैं उनको बहुत मान देती हूँ।
0: जी, मैं भी वही कह रहा हूं मैम कि एज अ पर्सनैलिटी, ऐसे एक व्यक्तित्व, जितना पावरफुल इंसान वो दिखाई देता है, बस उसको देख के मजा आ जाता है। इतनी बड़ी उम्र में भी कितनी पावर उनमें रहती है, कितना काम वो करते हैं,
1: बहुत ऊर्जा,
0: बहुत ऊर्जा रहती है उनके पास। वो तमाम जगहों पर जाकर वो काम करते हैं जो इतनी उम्र पर पहुंचकर, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर आदमी नहीं करना चाहता या नहीं झुकना
1: नहीं
0: चाहता, लेकिन वो बहुत प्यारे ढंग से हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत खूब कहा आपने।
1: जी। उनसे मुझे योगा के लिए भी इंस्पिरेशन उनसे भी ज्यादा मिली है।
0: क्या बात,
1: इसीलिए मैं ज्यादा उनको पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही आपने। वो हमारे देश की पुरानी संस्कृति को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रूबीना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर। रुबीना जी, आपके जीवन के कुछ सबसे सुखद, बहुत ही प्लेजेंट कुछ पल रहे होंगे, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सुखद पल, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था
0: जी,
1: मेरा बेटा जब आया था मेरी गोद में, वो तो सबसे अच्छा सुखद पल होता ही है एक माँ के लिए।
0: जी जी जी
1: और जबकि मैं एक बेटी चाहती थी पहला बच्चा
0: ओके
1: लेकिन भगवान ने ये मुराद भी मेरी पूरी कर दी। तो मेरी सेकंड चाइल्ड जब भी मेरी बेटी हुई है, उस टाइम भी मुझे बहुत ही खुशी मिली।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और दोनों बच्चे मेरे काफी बड़े हो गए हैं, दो में एक माँ के लिए वो बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हाँ वो आज बहुत अच्छा ऑनेस्ट हैं अपने जिंदगी में और बहुत आगे भी आ चुके हैं। दोनों ही जॉब करते हैं, बैंगलोर में ही रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: और एंड दे आर वेरी नाइस एंड बहुत मान रखते हैं पेरेंट्स का, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है
0: बहुत खूब,
1: दोनों को पाके मैं बहुत खुश हूँ।
0: अमेजिंग, बहुत खूब रुबीना जी। दोस्तों आपने सुना, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, कहीं पढ़ी थी मैंने, फिर उसको लेकिन मैंने अपनाने की कोशिश की। देखिए हम लोग सब एक दूसरे से सीख के ही सीखते हैं, कोई ऊपर से ज्ञान हमारे पास नहीं आ जाता। तो हुआ यूं कि एक मित्र ने मेरे से पूछा कि आपकी माँ कहाँ रहती हैं, तो मैंने उनको बताया वहां रहती हैं, जहां भी रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो माँ मतलब आपके पास रहती हैं। मैंने कहा जी नहीं, माँ मेरे पास नहीं रहती हैं, मैं माँ के पास रहता हूं। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं माँ से दूर जा सकूं या माँ को रख सकूं, मेरी माँ मुझे अभी भी रखती है।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने। और ये बात मेरे दोनों बच्चे भी यही बोलते हैं, हम अपने माँ बाप के पास रहते।
0: क्या बात है, सो क्यूट, सो क्यूट, दैट इज सो ब्यूटिफुल। दोस्तों सुनिए कितनी प्यारी बात है ये। चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रवीना जी की आवाज में, जो मैं उनके दोनों बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: रुबीना जी, आपके जीवन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सबक आपने सीखा और आप हमें बताना चाहेंगी कि वो सबक सब लोग सीखें, ऐसा कौन सा सबक होगा?
1: सबक तो जिंदगी तो बहुत सारा सबक हम लोगों को सिखाती है
0: जी।
1: हाँ, जब भी मैं छोटी थी तो मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हमेशा मेरे मन में था कि मैं कुछ करूं, लेकिन शादी थोड़ी जल्दी हो गई तो उसके बाद मैं हाउसवाइफ बन के रह गई। फिर बच्चों को बड़ा किया तो, लेकिन मन में था कि मैं कुछ करूं, मेरे अंदर वो वुमेन एम्पावरमेंट का भाव था, लेकिन नहीं कर पाई। जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी। और योगा, उस टाइम मैं थोड़ी लेटर एज में योगा में योगा को सीखी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी और मैं उसी में आगे बढ़ती गई। योगा का ट्रेनिंग लिया, इंस्ट्रक्टर बनी। और अभी मैं वही चाहती हूँ, सारे लेडीज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होना सीख लीजिए। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम कितना भी, हम घर भी संभाल सकते हैं और बाहर भी संभाल सकते हैं। तो ये सबक मैं अपनी जिंदगी से सीखी कि हाँ, हम लेटर एज में भी हम चाहें तो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, बिल्कुल ठीक कहा रुबीना मैम आपने। ये बहुत बहुत जरूरी बात है दोस्तों। एक बहुत ही प्यारी सी किताब अभी पीछे कुछ दिनों काफी पॉपुलर हुई थी, जिसका नाम है इकीगाई। जैपनीज कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है। उसमें बात यह है कि अगर हमारी जिंदगी का कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है और उसकी तरफ हम चलते रहते हैं, कुछ स्किल डेवलप करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, जैसे रुबीना जी ने योगा सीखा, उसी तरीके से अगर हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो गाना गाना ही क्यों ना हो, हमारी जिंदगी को एक उद्देश्य मिल जाता है और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और जाहिर सी बात है,
1: खूबसूरत हो जाती है। सही में ये आपने सही बोला, वो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।
0: और जाहिर
1: ये लाइन मुझे बहुत पसंद है।
0: जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है मैम, आपने एम्पावरमेंट की बात की। जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं तो हम अपने अंदर से एम्पावर्ड होते हैं, अपने अंदर से इतने ताकतवर बन जाते हैं कि दूसरे लोग फिर हमारी तरफ सहायता के लिए, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए देखते हैं। और बस यही तो उद्देश्य है एक मानव जीवन का। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने मैम। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत रुबीना जी की इस प्रतिभा की तरफ।

0: बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर। चलिए मैम, कुछ पुरानी यादों में चलते हैं। आपकी कोई पुरानी सी याद है जो आपको बड़ी खूबसूरत लगती हो, आपको अक्सर याद आ जाती हो, क्या वो हमें आप बताना चाहेंगे?
1: पुरानी सी यादें, पुरानी यादें तो किसको पसंद नहीं है, है तो बहुत सारी खजाने ही हैं।
0: जी
1: हाँ, लेकिन कॉलेज के टाइम के जो दोस्तों के साथ जो हम लोग जो टाइम बिताते हैं वो बहुत ही ज्यादा यादगार बनी रहती है। और ये भी मैं बोल सकती हूँ, एक बहुत अच्छी बात है, जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे गाना सिखाने के लिए लेके जाती थी और मैं थोड़ा पीछे भागती थी। मुझे और मम्मी को मुझे पता था, वो चाहती थी कि मैं गाना सीखूं, जबकि मैं थोड़ा पीछे भागती थी और मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी गाना सीखने के लिए। जब मैं छुपती थी तो मम्मी क्या करती थी, मेरे टीचर को घर पे बुला लेती थी। तो और क्योंकि मेरी आवाज अच्छी थी तो सारे टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे, वो खुशी खुशी आ भी जाते थे और मैं छुप नहीं पाती थी फिर।
0: वाओ,
1: इस तरह से मम्मी ने मुझे थोड़ा, ये बचपन का कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो अभी मुझे याद आती हैं, तभी मैं मम्मी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि तभी मुझे गाना थोड़ा बहुत जो सिखाई थी और मैं छुप छुप के ना सीखने की कोशिश करते हुए भी कुछ सीख ली थी, आज इस मुकाम पर हूँ कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: क्या बात है।
1: और ये मेरी हॉबी की तरह भी है, मैं गाना सुनती भी हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। दोस्तों आपने सुना, तो अगला गीत मैं रूबीना जी की माता जी को डेडिकेट करना चाहूंगा, जिन्होंने रूबीना जी को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको गाना सिखाया, उनके लिए हमेशा मोटिवेशनल बनी रही। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अच्छा रुबीना मैम, ये बताइए आपके सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरे सबसे पसंदीदा गायक तो किशोर कुमार जी हैं।
0: ओके।
1: मैं उनके गाने को बहुत एंजॉय करती हूँ, वो जो दिल से गाते हैं। वैसे तो मुझे मुकेश जी, मोहम्मद रफी जी और सारे सिंगर्स पसंद है, लेकिन किशोर कुमार जी का जो अल्हड़पन है गाने में वो मुझे ज्यादा पसंद है। और मैं तो हमेशा लता दी को दिल से बहुत बहुत ज्यादा चाहती हूँ, और लेकिन मैं आशा जी के ज्यादा फैन हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब। आशा जी की क्यों फैन है आप?
1: आशा जी की भी वही अल्हड़पन।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने,
1: मुझ में भी वही अल्हड़पन है इसीलिए।
0: बहुत खूब।
1: वैसे तो मैं सबको पसंद करती हूँ, गाना तो सबका गाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उनकी जो जॉयफुलनेस है गाने के लिए, जो जिस जॉयफुलनेस से वो लोग गाते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है।
0: बहुत खूब कहा मैम आपने, बहुत ही प्यारा टर्म यूज किया, जॉयफुलनेस। आशा जी के गानों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी आवाज की लरज में जो जॉयफुलनेस सुनाई देती है वो बहुत अमेजिंग है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक प्यारा प्यारा सा गीत।

0: रुबीना जी, चलिए एक काम करते हैं, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं सच बताऊं, मैं बचपन में जब छोटी थी तो आसमान में उड़ना चाहती थी। तो पंछी बनकर तो नहीं, हाँ उस टाइम मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत मन था।
0: क्या बात है।
1: और मुझे लगता था वो लोग बहुत सुंदर होते हैं और उड़ते भी हैं और डिफरेंट जगह भी जाते हैं।
0: ओके।
1: मुझे डिफरेंट प्लेसेस घूमने का भी बहुत शौक था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं एयर होस्टेस बन जाऊं तो एक तो आसमान पे उड़ भी सकती हूं और दूसरे जगह देख भी सकती हूं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात। तो दोस्तों, आपने सुना कि रुबीना जी बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तो अगला गीत रुबीना जी की उसी चाहत के नाम, जब वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत बढ़िया। रुबीना जी, बचपन की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर्स आपके रहे होंगे, आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: हाँ, वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट टीचर्स थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे मैथ्स टीचर मेरे बहुत फेवरेट थे, और उनके वजह से मेरा मैथ्स बहुत सुधर गया था और मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आती थी, और मेरे मैथ्स टीचर भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। फिर जब भी मैं कॉलेज में गई तो मेरे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मुझे बहुत पसंद थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत पसंद किया क्योंकि मेरा अच्छा होता था इकोनॉमिक्स में। और फिर मैं ये भी जानती हूँ और ये भी मेरा जीवन का फंडा है कि हम बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, सबसे बहुत कुछ सीखते हैं, सभी टीचर हैं एक दूसरे के। तो मैं अपने बच्चों को भी अपना टीचर मानती हूँ, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत बात तो, कही आपने।
1: हाँ, लेकिन हाँ, ये दो टीचर स्कूल के, एक मेरे मैथ्स टीचर और कॉलेज के जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, ये मेरे अभी भी मुझे बहुत पसंद है। दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं बहुत याद करती हूँ दोनों को, और उनके वजह से आज मैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो उनको मैं सोचती हूँ उनके वजह से ही हुआ है।
0: बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात है। दोस्तों, चलिए अगला गीत रुबीना जी के ही इन दो टीचर्स को डेडिकेट करते हुए सुनते हैं।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी गायकी। तो रुबीना जी मुझे बताएं ना कि कौन से ऐसे तीन शब्द हैं, कौन से ऐसे तीन वर्ड्स हैं जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं?
1: जी जी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ।
0: ऑलराइट,
1: मैं लाइफ के हर डिसीजन को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करती हूँ। दूसरी चीज है, मैं बहुत आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो मैं ऑनेस्टी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ।
0: ओके,
1: और तीसरी है, मैं बहुत डिटर्मिंड हूँ। जो चीज मैं सोचती हूँ उसको मैं करके ही रहती हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगी तो पहले से बता देती हूँ,
0: क्या बात,
1: लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि वो करके ही रहूं।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात कही है, मुझे आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई मैम, जो आप डिटर्मिनेशन की कह रहे हैं। डिटर्मिनेशन वैसे भी किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत ही पावरफुल स्किल होता है, हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं और ये हमारे अंदर से इनबिल्ट भी होता है। बहुत खूब
1: जी, थैंक यू।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं रुबीना जी के डिटर्मिनेशन के ऊपर एक प्यारा सा गीत।

0: और रुबीना जी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए और नए जो गायक आ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: जी, जरूर देना चाहूंगी। और प्रोग्राम सुनने वालों को तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आपने मेरा गाना सुना और सराहा, इसके लिए भी दिल से बहुत शुक्रिया है। और जैसे मैं बोली, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा मोटो है हेल्थ इज वेल्थ। तो आप अपने शरीर को, शरीर के प्रति सजग रहिए एंड आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा अगर आप योगा, प्राणायाम या कोई किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करते रहें। वो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा है। शरीर और मन को बैलेंस करता है योगा। तो मैं तो हमेशा बोलूंगी योगा, क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो

0: योगा के लिए ही बोलूंगी, लेकिन हाँ अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। गाना गाते रहे जो मन के लिए बहुत ही अच्छा है, और गाते रहे जो आपको शांति भी देती है, मन को शांति भी देती है, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहिए।
1: बड़ी ही प्यारी बात रुबीना जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्थ जो होती है वो पहली वेल्थ होती है। अगर हमने उसे संभाला तो बाकी की सारी वेल्थ फिर अपने आप पीछे आ ही जाती हैं।
0: आगे जाएगी
1: बड़ी खूबसूरत
0: जरूर।
1: बात कही रबीना जी आपने, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।
0: नमस्ते, थैंक यू।
1: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आज के कलाकार में आज जो मेहमान हमारे साथ है, जब आप उनको जानेंगे, उनके गायकी सुनेंगे, उनके म्यूजिक को सुनेंगे, उनके पैशन को जानेंगे, तो दोस्तों अपने ऊपर भी आपको घमंड हो आएगा कि किन से मुलाकात हुई आज। जिंदगी ने एक और एहसान कर दिया हम पर, राजेश्वरी जी से मिलाकर। तो आज हमारी मेहमान है राजेश्वरी जी। मैं राजेश्वरी जी का वेलकम करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश्वरी जी, हमारे सब सुनने वालों को जो आज आपको सुन रहे हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, आप कौन हैं और कहाँ हैं आप?
1: नमस्कार समीर जी, मेरा नाम राजेश्वरी दोडमनी है। मैं कर्नाटका बैंगलोर से हूँ। मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है। पहले तो मैं सबसे पहले रेडियो SN के समीर जी और नितिन जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे नॉन सिंगिंग सिंगर्स को भी आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने गानों को सुनाने के लिए और हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, मैं सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारे कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए, और मैं जैसे भी गाती हूँ, हमारे गानों को सुनने के लिए आप लोग टाइम निकाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट। मैं अपने बारे में, मैं एक मूलतः एक शिक्षिका हूँ। पिछले 22 साल से मैं शिक्षण क्षेत्र में ही हूँ।
0: एक मिनट रुकना राजेश्वरी जी, अभी तो आपने कहा था कि आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, कितनी बढ़िया तो हिंदी बोल रहे हो यार आप, अमेजिंगली ब्यूटीफुल शिक्षिका और मूलता, क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। प्लीज गो ऑन।
1: थैंक यू सो मच फॉर बूस्टिंग माय कॉन्फिडेंस। तो इसी क्षेत्र में हूँ मैं पिछले 22 साल से, और भगवान की कृपा और मेरी माता पिता के आशीर्वाद से मैंने खुद के एक पाठशाला भी खोली है बैंगलोर में ही। अभी इस साल वो 18वां साल शुरू करेगा, एकेडमिक ईयर शुरू करने वाला है। और तो बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की व्यक्तित्व विकसन के लिए एक शिक्षक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं मरते दम तक एक इस फील्ड से ही जुड़ी रहना चाहूंगी। तो ये है मेरे बारे में। और दूसरी बात, मैं दूरदर्शन में न्यूज रीडर हुआ करती थी, और अब भी जब भी वक्त मिलता है तो मैं चाहती हूँ, और पहले इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों न्यूज पढ़ती थी यहाँ बैंगलोर में, और अब जब टाइम मिलता है, जब वक्त निकाल सकती हूँ, तब मैं न्यूज या लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का रिव्यू जो होता है वो पढ़ने के लिए जाती हूँ। सो ये है मेरे बारे में।
0: ओके, सो जैसा राजेश्वरी जी अभी आपने बताया कि आप एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, अब इस बात को सुनकर, इस आपके इंट्रोडक्शन को सुनकर मेरे दिमाग में तो बीसियों सवाल आ रहे हैं, विच आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल दीज विद यू, बिकॉज हमारे सुनने वालों में से भी बहुत लोग टीचर होंगे। बट चलिए अभी आपके संगीत को सुनने के लिए पहले आपके इन गीतों का लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड देन आई विल कम बैक ऑन दोस क्वेश्चंस। आपने जो सवाल उठाए, आपने जो मतलब बात कही कि आप शिक्षिका हैं, वहां पर हम लोग वापस आएंगे।

0: बहुत खूब।
1: तो दोस्तों, आपने राजेश्वरी जी के गीतों को सुन लिया, अब चलो उनके बारे में जानते हुए उनके विचारों को समझते हैं। 18 साल, 18 years, she had been having this school out there in Bangalore, so that is very very serious. 18 सालों से बच्चों को पढ़ाना कोई एक passionate इंसान ही कर सकता है। So she is a teacher. I am sure teacher नहीं, आप तो शायद principal या director होंगे ना वहाँ।
2: हाँ, बट मैं खुद को टीचर ही बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मैं टीचर ही आइडेंटिफाई करती हूँ खुद को।
1: That's damn
2: it. प्रिंसिपल वो सब बाद में आ गया, लेकिन मैं फ्रॉम द हार्ट आई एम अ टीचर।
1: That's quite damn it. तो मुझे सबसे पहले ये बताओ मैम कि बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, बच्चों को पढ़ाना एक शिक्षक का काम होता है, यानी कि उसको रास्ता दिखाना। डू यू एग्री ऑन दिस?
2: Absolutely.
1: अब आजकल कुछ अजीबोगरीब सा होते मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जिसका बेसिकली विक्टिम मैं भी हूं। यस, myself. आई एम टीचिंग इन अ कम्युनिटी कॉलेज, जहां पर मैं बच्चों को एम्प्लॉयबल होने की कोशिश करने के लिए पढ़ा रहा हूं। नाउ द कॉलेज इज एक्चुअली प्रेशराइजिंग मी कि उन बच्चों की
2: सिलेबस
1: नहीं, सिलेबस इज ओके, उनकी नौकरी लगवाऊं। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये टीचर्स कब से प्लेसमेंट ऑफिसर्स कब से हो गए हैं। तो चारों तरफ देख रहा हूं, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये झूठा दिलासा दे रहे हैं कि आप हमारे यहां आओ, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगी राजेश्वरी जी?
2: सी, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज जो फैक्ट्स हैं, हम बच्चों को पहले से फैक्ट्स को सिखाएं और फैक्ट्स को दिखाएं, वही बेहतर होगा। जब झूठ का सहारा लेते हैं तो सच्चाई नहीं होगी, और बच्चों को चीटिंग करना होता है वो। सो वेयर इज द होल प्रिंसिपल एंड एथिक्स ऑफ द फील्ड इटसेल्फ, ऑफ द एजुकेशन फील्ड इटसेल्फ? बीइंग अ टीचर इज व्हेन यू टीच द रियलिटी, यू टीच द फैक्ट्स एंड ऑल्सो यू टीच द एथिक्स। एक होलसम रहना चाहिए जब हम पढ़ाते हैं तो वही ना, वो बिजनेस बन चुका है एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन पैशन कम और बिजनेस ज्यादा है। सो जब बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और नंबर्स आते हैं, तब झूठ का सहारा लेना पड़ता है और पड़ रहा है, विच इज अनफॉर्चुनेट।
1: ऑलराइट, ऑफकोर्स ये टॉपिक जो है राजेश्वरी जी बहुत लंबा है, बहुत डिबेटेबल है, लोगों की अलग अलग विचार होंगे इसमें। ए नंबर ऑफ पेरेंट्स माइट बी सपोर्टिंग दिस थॉट प्रोसेस कि जी ठीक है, हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, नाउ इट्स द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द करियर ऑल्सो, एंड हमारा तो सिर्फ कर्तव्य था उसको पैदा करना, बड़ा कर देना, बाकी अब टीचर जाने, उसका काम जाने। सो आई एम वेरी सैड अबाउट दैट, प्रीटी सैड, बिकॉज चारों तरफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सारे यही कर रहे हैं। साल में 3 बार तो वो किसी सेलिब्रिटी को बुला के डांस परफॉर्मेंस रखते हैं, रात भर वो डांस कराते हैं बच्चों को, है ना, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम आपका करियर बना देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो पुरानी जो प्रथा थी कि जंगल में जाके स्टूडेंट्स मेहनत करते थे, वो सब तो खत्म हो गया है। एनीवेज,
2: अभी कॉम्पिटिशन है इतना ज्यादा और हमारा पॉपुलेशन भी इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन इन सब को इन सब से कंपीट करने के लिए झूठ क्यों बोले ना? आई डू नॉट अग्री विद इट, एंड पेरेंट्स आल्सो, इट्स हाई टाइम दे अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द चाइल्ड एंड टेक द चाइल्ड इन द राइट डायरेक्शन।
1: ऑलराइट, चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए पहले इस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, बात करते हैं राजेश्वरी जी से कुछ और विषयों के बारे में, उनके बारे में जानते हुए, लेकिन पहले उनके इन गीतों का तो लुत्फ उठाइए जो उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किए हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने इतनी मेहनत करी, सीखा, आई अंडरस्टैंड। चलिए, लेट्स एंजॉय दीज सॉन्ग्स फर्स्ट।

0: बहुत खूब राजेश्वरी जी, अब थोड़ा सा आपको जानने की कोशिश करते हैं, आपकी म्यूजिक को जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं आप?
1: मैं इंडियन म्यूजिक पसंद करती हूँ, लाइक रेट्रो हिंदी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना, और सॉन्ग्स के साथ साथ गाना जब, सॉरी टू
0: इंटरप्ट, प्लीज प्लीज प्लीज,
1: जब हम बचपन में तो म्यूजिक हमारा बैकग्राउंड में हमेशा रहता था, जब स्कूल के लिए तैयार होते थे तो घड़ी नहीं देखते थे, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत या कुछ और प्रोग्राम के जरिए हमको टाइम पता चलता था, तो ऐसे म्यूजिक तब से लेके अब तक साथ ही है, तो हिंदी म्यूजिक ही ज्यादा पसंद है, हिंदी और ऑफ कोर्स माय मदर टंग कन्नड़ा म्यूजिक भी पसंद है।
0: श्योर, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अब मुझे ये बताओ मैम, जैसे आपने, आप बुरा ना मानना, मैं बार बार आपको उधर ही लेके जा रहा हूँ, दैट यू आर अ शिक्षिका, यू आर अ टीचर, एकेडमिशियन आई मस्ट से, तो आपको आज की डेट में बच्चों के लिए म्यूजिक का रेलेवेंस लगता है? डज इट हैव इट?
1: सी, म्यूजिक तो हमेशा ही रेलेवेंट रहा है और रहेगा, इट इज अ ह्यूज स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। अभी जो जब बच्चे प्रेशराइज फील करते हैं तो म्यूजिक इज अ वे टू रिलैक्स देमसेल्व्स, रिलैक्स देयर माइंड। म्यूजिक ऑफ कोर्स काम रखता है हमारे मन को और स्टेट ऑफ माइंड को, तो म्यूजिक विल ऑलवेज बी रिलेवेंट, म्यूजिक इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ कामिंग फैक्टर ऑन एवरीबॉडी, बच्चे हो या बूढ़े हो या यू नो अपने डेथ बेड पे हो, जैसे प्लांट्स भी म्यूजिक एंजॉय करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने सुना है कि दो प्लांट्स जब म्यूजिक सुना हुआ प्लांट जैसे बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, और द प्लांट विच इज डिप्राइव्ड ऑफ म्यूजिक कैसे बढ़ता है, तो म्यूजिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर एवरीवन।
0: ऑलराइट, सो जस्ट इन केस आई एम नॉट टीजिंग यू मैम, डू यू यूज म्यूजिक इन योर स्कूल?
1: Oh yes, absolutely, absolutely.
0: And how do you do that?
1: We do it day in, day out, in every class, especially in the pre-primary sections, music ka ek magic hota hai class mein.
0: Mm-hmm.
1: Jaise hum ek group ki attention ko grab karna hai chote bachcho mein, hum instructions de straight face mein, to wo nahi sunte, unko lagta hai ki yaar kuch bhi bol rahi hai ma'am. लेकिन वही बात अगर आप थोड़ा म्यूजिक डालते हो उसमें,

0: फॉर एग्जाम्पल हमारे हमारे क्लासेस में ऐसा होता है कि हम सर्कल टाइम बनाते हैं, सारे बच्चे सर्कल में आके सर्कल में प्रेयर करते हैं, सर्कल में बैठते हैं, पढ़ते हैं सब. तो उनको स्ट्रेट अवे इंस्टेड ऑफ सेइंग कम लेट्स मेक अ सर्कल, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या बोलते हैं हमारे सारे टीचर्स, लेट्स मेक अ बिग सर्कल. जब वो म्यूजिकली आता है इंस्ट्रक्शन तब उनका रेस्पॉन्स इमीडिएट होता है.
1: Wow.
0: उनका अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब होता है, तो ज्यादा एनर्जी लगाना नहीं पड़ता. तो हमारे स्कूल में म्यूजिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एज वेल एज लर्निंग. प्राइमरी के बच्चों में कुछ ग्रामर का कुछ सिखाना है, तो जैसे एक वॉवल्स सिखाने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन में जब वॉवल्स सिखाते हैं या कुछ ग्रामर रिलेटेड वर्ब्स के बारे में कुछ सिखाते हैं, तब एक सॉन्ग्स बनाया है तो उन सॉन्ग्स को सिखाते हुए इवन आफ्टर दे गो टू द हायर क्लासेस व्हेन वी रिकॉल व्हेन वी आस्क देम आप डू यू रिमेंबर दैट सॉन्ग एंड देन इमीडिएटली दे नो द सॉन्ग एंड when they know the song they know the lyrics when they know the lyrics they know the content
1: correct of the correct beautiful
0: so yeah so music is a-